एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 12वीं तिथि, तदनुसार 2 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा मंगल ध्वनि के साथ आरंभ होती है।

FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 6 बजने को है। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और 6:05 से विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम वंदनवार। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा करें, बस चंद पल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची कल शाम भारत की 3 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में सहायता मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि पिंस प्रक्रिया खराब मौसम और जमीनी नेविगेशन सहायता उपलब्ध न होने की स्थिति में विशेष रूप से उपयोगी है। इसका विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है। झारखंड ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। सरकार ने सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार

0: सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच और मरीजों के समय पर इलाज के निर्देश जारी किए हैं। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा आज से शुरू हो रही है। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और डूरंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। ये पहला मौका है जब डूरंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। इसके अलावा फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने DR कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। अंतिम 16 में इंग्लैंड का मुकाबला 6 जुलाई को सह मेजबान मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

वंदन वार सुनिए आज का चिंतन। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है, स्वयं को तलाशने का सबसे अच्छा तरीका स्वयं को दूसरों की सेवा में खो देना है। आइए अब सुनते हैं भक्ति रचनाएं।

ये समस्त संसार ईश्वर की देन है। सुख दुख हानि लाभ क्रोध मोह लोभ जैसी माया भी उसी ईश्वर की देन है। भक्ति प्रेम स्नेह जैसे भाव भी तो ईश्वर की रचना है। ये प्रत्येक जीव पर निर्भर है कि वो माया चुनता है या ज्ञान।

जब ईश्वर को सखा भाव में आत्मसात किया जाता है तो भक्ति रस कुछ अलग ही रंग देता है। मित्र से हंसी ठटोली न हो तो भला किससे होगी।

आज के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण झरोखा के अंतर्गत सुबह 6:35 से श्री रामचरितमानस सुन सकेंगे। आज सुनिए 237वां भाग। संगीत सरिता में श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। दूसरी कड़ी सुनेगा आज, कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। 7 बजे से भूले बिसरे गीत, सुबह 7:30 से हम है राही प्यार के। 8 बजे से समाचार प्रभात, सुबह 8:15 से त्रिवेणी के अंतर्गत कार्यक्रम त्रिवेणी सुनिएगा। 8:30 से चित्रलोक। 5 के फनकार ये कार्यक्रम सुन सकते हैं सुबह 9:30 से। केंद्रित है पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। पिटारा में आज के मेहमान कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आज सुन सकते हैं 10 बजे से। और इस कार्यक्रम में सुनिए वरिष्ठ साहित्यकार, कथाकार, कवि, व्यंगकार, निबंधकार, आलोचक, अनुवादक, संपादक, समीक्षक, लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी। सुबह 11 बजे से रंग तरंग, 12 बजे से हिंदी में समाचार, 12:05 से यादों की महफिल और दोपहर 1 बजे का समय है कार्यक्रम सुरीला सफर का। दोपहर 2 बजे से त्रिवेणी, 2:15 से दोपहर समाचार, 2:30 से सुनिए सदाबहार नगमे। दोपहर 3 बजे से सखी सहेली कार्यक्रम और 4 बजे होंगी आपकी फोन इन फरमाइशें पूरी कार्यक्रम हेलो फरमाइश के साथ। शाम 5 बजे छाया गीत का पुनः प्रसारण। शाम 5:30 से तराने नए पुराने, 6 बजे से सुनिए हिंदी में समाचार और 6:05 से जारी रहेगा कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35 से संध्या रंजन सुन सकते हैं कार्यक्रम और 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। दूसरी कड़ी सुनिएगा, कलाकार है बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। 7 बजे से जय माला, 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत आज इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में निर्देशक फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की दूसरी कड़ी सुन सकते हैं, प्रस्तुति जुबैर खान की। 7 बहानों का ये प्रहसन सुनिए रात 8 बजे से हवा महल में, लेखन सुरेंद्र कौशिक।

का निर्देशन सुशील बैनर्जी का। रात 8:15 से चित्रलोक। 8:45 से सुन सकते हैं समाचार संध्या। 9 बजे से सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। रात 10 बजे से छाया गीत। से ढलती जाए रात और 11 बजे से रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। ये थे आज के मुख्य कार्यक्रम जिनका विवरण आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस आज 237वीं कड़ी।

अयोध्या वासियों सहित राजा जनक के चित्रकूट से प्रस्थान करने की वेला आ पहुंची है। भरत के भक्ति तथा समर्पण भरे वचन सुनकर श्री राम गदगद हो गए। विदा करते हुए वो भरत को पावरी देना चाहते हैं, किंतु संकोच होता है। क्षणिक सोच विचार के पश्चात गुरुजन तथा बड़ों की उपस्थिति का संकोच त्याग कर उन्होंने भरत को अपनी चरण पादुका दे दी। भरत ने खड़ाओं की जोड़ी को सिर पर धारण किया।

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम वंदनवार। अब समय है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा का। आइए जानते हैं हमारी आज की सभा में क्या है खास। सुबह 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से, और 7 बजे समय रहेगा राष्ट्रीय हिंदी समाचारों का आकाशवाणी दिल्ली से। सात बजकर 5 मिनट पर आनंद लीजिएगा हरियाणवी गीतों का कार्यक्रम लोक रंग में, और 7:40 पर हम आप सभी के साथ होंगे कार्यक्रम सुप्रभात लेकर।

सुबह 8 बजे समय रहेगा समाचार प्रभात का और 8:15 से आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित रंगारंग कार्यक्रम। सुबह 9 बजे सुनेंगे भारत की गूंज कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित और 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आज की फनकार विविध भारती मुंबई से ही अनुप्रसारित कार्यक्रम। दस बजे समय रहेगा आप सभी के चहेते कार्यक्रम नमस्ते हिसार का और नमस्ते हिसार में हम रोज की तरह आप सभी से बातें करेंगे हिसार के बारे में कुछ ज्वलंत विषयों पर खबरों के बारे में और साथ ही साथ आपसे पूछेंगे दो सामान्य ज्ञान के प्रश्न। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9729253272 9729253272। जी हाँ दोस्तों, इसी नंबर पर अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपकी पसंद का खूबसूरत सा गीत आप तक पहुंचाया जाएगा हवाओं के जरिए और उसके बाद बात करेंगे हिसार की एक शख्सियत या फिर जगह के बारे में। ग्यारह बजे से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी एपिसोड 1319। ग्यारह बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित और 12 बजे से यादों की महफिल कार्यक्रम का समय रहेगा विविध भारती से ही अनुप्रसारित कार्यक्रम। दोपहर 1:05 पर सुनेगा प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़। 1:10 पर सुनेगा विविध भारती की गीत माला। दोपहर 2:15 पर राष्ट्रीय हिंदी समाचारों का समय रहेगा आकाशवाणी दिल्ली से और 2:30 से सुनिएगा कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती मुंबई से ही अनुप्रसारित कार्यक्रम। शाम 3 बजे समय रहेगा कार्यक्रम सखी सहेली का विविध भारती मुंबई से ही अनुप्रसारित कार्यक्रम और शाम 4 बजे

आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के नाम संदेश। शाम 5 बजे हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम थारी मारी पसंद सुनवाया जाएगा और 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। शाम 6:10 पर प्रादेशिक समाचार आप तक पहुंचाए जाएंगे आकाशवाणी चंडीगढ़ से और 6:20 पर आनंद लीजिएगा खूबसूरत से भजनों का कार्यक्रम भक्ति संगीत में।

शाम 6:30 पर आप सभी के चहेते कार्यक्रम युवा उमंग का समय रहेगा। चर्चा का विषय रहेगा सोशल मीडिया और स्क्रीन एडिक्शन से कैसे बचें, और साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स की राय भी आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी हिसार के जरिए कि इस बारे में हमारे हिसार के छात्रों की क्या राय है। सात बजे आप सुनेंगे किसान भाइयों के लिए जानकारी और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम किसान वाणी। किसान वाणी में आज फोन इन कार्यक्रम रहेगा, विषय रहेगा कपास की फसल में कीट प्रबंधन, और विशेषज्ञ रहेंगे राम कुमार सैनी जी। 7:30 पर सुनिएगा गांव की सौंधी मिट्टी की खुशबू लिए कार्यक्रम म्हारे गांव। रात्रि 8 आप सुनेंगे कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित खूबसूरत से गाने आप तक पहुंचाएंगे आपकी फरमाइशों के साथ। और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा वही रहेगा 9729253272972। रात्रि 8:45 पर राष्ट्रीय हिंदी समाचारों का समय रहेगा आकाशवाणी दिल्ली से, और 9 विविध भारती से आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 10 ईमेल्स पर आधारित कार्यक्रम रहेगा ई फरमाइश, और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाइए ईमेल के जरिए। पता रहेगा radiohisar@gmail.com radiohisar।

0: वर्मा जी को चाहिए सुबह सुबह ताजा खबरें।
1: और मिसेज वर्मा को सिर्फ संगीत।
2: मैं अलबेली घूमू अकेली।
0: दादा दादी को मिल जाए कोई ऐसा जो उनके साथ उनके समय की बातें करे।
3: अभी न जाऊं छोड़ कर।
1: और बच्चों के लिए जरूरी है ज्ञान।
0: कैसा हो यदि सब कुछ मिले एक ही जगह एक ही समय पर?
1: सुनिए संपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम नमस्ते हिसार
0: रोज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर। बच्चों की एक अलग दुनिया होती है।
4: चकरका चीचा चो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम।
1: और यदि आपको चाहिए इस दुनिया में एंट्री तो ढूंढिए अपने भीतर छुपे बच्चे को।
5: Aeroplane, aeroplane, up in the sky. Where are you going? Flying so high, over the mountain, over the sea. Aeroplane, aeroplane, please take me.
0: बचपन की मुस्कुराहटों और गुदगुदाहटों से भरा कार्यक्रम बाल सभा
1: हर रविवार सुबह 10:30 पर
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM।

0: पर।
1: एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार के प्रसारण। श्रोताओं, इन संदेशों से पहले आपने सुने हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आपसे कुछ ही पलों के इंतजार के बाद आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से, 7 बजे राष्ट्रीय हिंदी समाचार। आकाशवाणी दिल्ली से ही कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा करें, बस चंद पल।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदिल्ल्यां स्वीयसमकक्षया सानेताकाई शीत्यनया सह वार्षिक शिखरसम्मेलनस्तरीयां वार्तां करिष्यति। शिखरसम्मेलनमिदं उभाभ्यां पक्षाभ्यां द्वैपाक्षिकसहयोगं समीक्षितुं सुदृढीकर्तुं सहैव पारस्परिकहिताय क्षेत्रीयवैश्विकविषयेषु विचाराणाम् आदानप्रदानं कर्तुं अवसरं प्रदास्यति। द्वयोः प्रधानमन्त्रिणोः मध्ये संवादानन्तरं नैकेषां सन्धिपत्राणाम् आदानप्रदानं भविष्यति। जापानस्य प्रधानमन्त्री भारतस्य त्रिदिवसीययात्रायै ह्यः सायं नवदिल्ल्यां सम्प्राप्ता। प्रधानमन्त्री ताकाइची इत्येतस्याः इयं भारतस्य प्रथमा आधिकारिकयात्रा वर्तते। विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् इयं यात्रा भारत जापानयोः मध्ये विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् अग्रे वर्धनदिशि महत्वपूर्णा वर्तते। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् सन्देशे श्रीमोदिना लिखितं यत् असौ जापानस्य प्रधानमन्त्रिणा सह व्यापक चर्चायाः आशां करोति, यया भारत जापानयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिम् इतोऽपि गहनं भविष्यति। दिल्ल्यां वसन्तकुञ्ज क्षेत्रस्य नेल्सन् मण्डेला मार्गेण सह द्वारका द्रुतमार्गं संयोजयन् दिल्ली नगरे 48.1 AE राष्ट्रिय राजमार्गस्य कृते 6-मार्गीय सुरंगस्य निर्माणाय ह्यः प्रशासनेन अनुमतिः प्रदत्ता। राष्ट्रिय राजधान्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् उत्तरप्रदेशे राष्ट्रिय राजमार्ग चतुस्त्रिंशत् इत्यस्य 17.7 किलोमीटर मितस्य सुदीर्घस्य कानपुर कबराई खण्डस्य चतुर्मार्गीय अभिगमन नियंत्रित मार्गस्य निर्माणमपि प्रशासनेन अनुमोदितम् अस्ति, यत्र संरचनाः 6 मार्गाणि यावत् सुलभतया विस्तारयितुं परिकल्पिताः सन्ति।
1: पहला प्रोजेक्ट 6-लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: विकसित भारत जी रामजी अधिनियमस्य 25.2 अंतर्गतं वर्धितानि पारिश्रमिक मूल्यानि ह्यः आरभ्य समग्र देशे कार्यान्वितानि। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रसारितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं सर्वेषु राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च पारिश्रमिक अनुपातेषु श्लाघनीया वृद्धिः कृता। मन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् प्रथमवारं प्रतिदिनं 300 रूप्यकाणां कश्चन पारिश्रमिकानुपातः निर्धारितः। अनेन सुनिश्चितं भविष्यति यत् देशस्य कस्मिन्नपि भागे अधिसूचितः न्यूनतम पारिश्रमिकः अस्मात् स्तरात् अल्पं न भवेत्। ग्रामीण विकास मन्त्रालयेन प्रतिपादित

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की। 12वीं उप समिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पेंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। अभियान में हर तहसील में भूमि सीमांकन और मापन से जुड़े मामलों का समाधान नई तकनीक से किया जाएगा। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में अब तक 32,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटीकरण किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक करीब 9,99,000 प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री

0: अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जत्थे को रवाना किया। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला गया T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 0-0 से बराबरी पर हैं। डूरंड कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलोंग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। अटलांटा में खेले गए मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने मैच के अंतिम 15 मिनट में 2 गोल दागकर इंग्लैंड को रोमांचक जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। दोस्तों अभी आपने सुने हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
2: मैं परेशान।
1: क्या आप खुश हैं?
3: आज मैं ऊपर।
4: क्या आप डांस करना चाहते हैं?
1: क्या आपका दिल टूटा हुआ है?
5: दिल के टुकड़े टुकड़े करके।
4: या आप प्यार में हैं?
6: पहला पहला प्यार है।
1: क्या आप अपने पुराने दिनों में लौटना चाहते हैं?
5: कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
4: तो मैसेज कीजिए 9729253272 पर,
1: क्योंकि हमारे पास है हर गाना आपके मूड और सिचुएशन के हिसाब से।
4: कार्यक्रम संदेश आपके, गीत हमारे, हर मंगलवार और शुक्रवार रात 10 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 एफएम पर। नया बेहतर है
7: क्योंकि तुम ही हो,
4: किंतु पुराना बेहतरीन।
1: नया श्रेष्ठ है
7: केसरिया तेरा,
4: किंतु पुराना श्रेष्ठतम।
1: नया उत्कृष्ट है
7: तेरी गलियां,
4: किंतु पुराना अनमोल।
8: चुरलिया है तुमने जो दिल को।
1: नया अनूठा है
4: किंतु पुराना अनुपम।
1: सुनिए 80 और 90 के दशक के बेहतरीन नगमे,
4: कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड में
1: हर बुधवार शाम 5 बजे
4: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 एफएम पर।
1: एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हिसार के प्रसारण। आइए श्रोताओं अब सुनते हैं कार्यक्रम लोक रंग और लेते हैं हरियाणवी गीतों का आनंद।

नई सुबह, नए सवेरे की शुरुआत, आकाशवाणी सार कार्यक्रम लोक रंग के साथ। लोक रंग, लोक विधाएं हमारे रग रग में बसी है। धरती, पानी, आबो हवा साफ सुथरी रहे, इसके लिए हमने बहुत अच्छे प्रयास करने चाहिए ताकि अच्छा जीवन बसर हम कर सकें। आपने विशेष कार्यक्रम सुनवाऊंगे पानी की आत्मकथा, मैं पानी हूं।

मैं पानी हूं, हर कोई जीव जंतु मनुष्य मेरे द्वारा ही अपनी प्यास बुझाया करे। मैं कुछ समय तक इन सभी को ना मिलूं तो लोग तसाए हो जाएं। मन बहुत अच्छा लगे कि मैं दूसरों के लिए काफी महत्वपूर्ण हूं।

होने के कारण ईश्वर को दोष देते हैं। वास्तव में मनुष्य ने पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है, जिस वजह से पर्यावरण चक्र काफी प्रभावित हो रहे। आज हम देखें तो कई जगह मैं अधिक मात्रा में गिरता हूँ, जिससे गांव से तबाह हो जाए हैं। लेकिन कई जगह लोग मुझे पाने के लिए तरस जाते हैं और मुझे पाने के लिए कई तरह के हवन, यज्ञ और कीर्तन भी कर रहे हैं। जब भी मेरी कोई समस्या नहीं होती तो इंसान मुझे लेकर एक तरह से लापरवाह हो जाए, व्यर्थ में ही मुझे खर्च करता है। ऐसे लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि कृपया आप मुझे व्यर्थ ना बहाएं, आप जरूरत पड़ने पर ही मेरा उपयोग करें। जरूरत ना पड़ने पर अपने घरों की टोंटी बंद कर दें। कई लोग ऐसे होते हैं जो पानी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, मुझे व्यर्थ बहाते हैं, मुझे इस पर रोना आता है। मैं पानी हूं, थोड़ा सोचिए, मेरी इस कमी से समस्या होने लगी है, मेरे बिना लोगों को बड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए आप सभी लोगों को अभी से सावधान हो जाना चाहिए कि आप मुझे व्यर्थ ना बहाएं। कई लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि जो मेरे को संचय करते हैं। जब मैं वर्षा के पानी के रूप में बरसता हूं तो उस पानी को इकट्ठा कर ले हैं और अपने घर के कार्यों में मेरा उपयोग कर रहे हैं। ऐसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपके जीवन में हूँ। लोग रोजाना सुबह सुबह मुझे अपने घर में बर्तनों में भरकर रखते हैं और दिन भर अपनी प्यास बुझाते हैं। कई अच्छे लोग जानवरों, पशु पक्षियों को भी अपने घर के द्वार पर, घर की छतों पर मुझे रख देते हैं। वो जानवर और पशु पक्षी मेरा उपयोग करके बड़े खुश होते हैं। मैं आपके जीवन की रक्षा करता हूँ, मैं अनमोल हूँ। लोग मुझे जल देवता भी कहकर पुकारते हैं। मैं कई महान नदियों, तालाबों में भी पाया जाता हूँ। वास्तव में मेरी अपनी पहचान है। बरसात के मौसम में जब लोग बरसात का इंतजार करते हैं तब वे बादलों से आशा करते हैं कि मेघा बादल कब मुझे बरसाएंगे। उस किसान को पता है कि पानी की क्या कीमत है। मैं बरस जाऊंगा तो वो फसल सोने में परिवर्तित हो जाएगी। उस फसल को बाजारों में बेचकर किसान मुनाफा कमाते हैं। किसी वर्ष जब मेरी कमी हो जाती है तो वहां पर अकाल पड़ जाता है और वहां के किसान परेशानी में दुखी हो जाते हैं। जहां पर मैं ज्यादा मात्रा में मिलता हूं वहां की फसलें दुगनी हो जाती हैं। इसलिए हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि आप मुझे बर्बाद ना करें, मुझे बचाएं। मैं पानी हूं। जो व्यक्ति मुझे बर्बाद कर रहा है उस व्यक्ति को हमें समझाना होगा। आज हम इकट्ठा करके बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को मैं मिल पाऊंगा। पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीवों को जीवित रखने वाले प्रमुख तत्वों में से मैं एक हूं, क्योंकि धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंगे, पेड़ पौधे मानव जीवन के लिए मुझे अमृत के समान मानते हैं। मेरे बिना सजीव जगत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज के लोग इसकी महत्ता को समझते हुए भी मुझे दूषित करते जा रहे हैं, जिसके कारण आज हमारे देश में लगभग आधे से अधिक क्षेत्रों में मेरा संकट हो आया है। लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आदमी की अवहेलना से पनपी इस समस्या का सामना न सिर्फ मानव जाति को बल्कि अन्य सभी जीव प्रजातियों को भी नुकसान झेलना पड़ता है। आज लगभग सभी नदियां, तालाब, पोखर दूषित हो गए हैं, जिसके कारण पीने योग्य पानी की कमी होगी है। फिर भी लोग इसे दूषित करने से बाज नहीं आ रहे। ऐसी स्थिति बनी रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा संकट संपूर्ण पृथ्वी को तबाह करके रख देगा। मैं पानी हूँ। आज आवश्यकता है कि हम समय रहते सभी लोगों को मुझे प्रदूषित होने से बचाना चाहिए।

कहे लोकेश से वक्त शेष, हेरे कहे लोकेश से वक्त शेष, संभलो इब बीतम नारे नारी, जू पानी बन मछली तड़फे न्यू तड़फेगी।

मेरे प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है कल कारखाने, उनसे निकलने वाला दूषित पदार्थ बड़ी बड़ी नदियों में छोड़ दिए जाते हैं, जिससे नदियों का पानी विषैला और दूषित हो जाए। आज लोग ये नहीं समझते कि जिस प्रकार धरती पर पाए जाने वाले अन्य संसाधन हमारे लिए सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, मैं भी सीमित मात्रा में हूँ, उसी प्रकार मैं भी हमारी पृथ्वी पर बहुत थोड़ा हूँ। लोग इस बात को समझ नहीं रहे कि मुझे प्रदूषित करने की स्थिति अगर ऐसी ही चलती रही तो शायद कुछ वर्षों में आने वाली पीढ़ियों के लोगों को पीने योग्य पानी का संकट आ जाएगा। आज प्रदूषित जल पीने से न जाने कितनी बीमारी

बीमारियां पनप रही हैं। इन बातों पर गौर फरमाना होगा। आज हमें वृक्षों की हो रही अंधाधुंध कटाई को रोकना होगा। लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना होगा, क्योंकि पेड़ पौधे वर्षा कराने में मदद करते हैं। लोगों द्वारा कल कारखानों से निकलने वाले दूषित जल को नदियों में बहने से रोकना होगा। हमें अपनी जरूरत के हिसाब से ही मेरा उपयोग करना होगा। वर्षा जल का भी संग्रहण करना होगा।

आप सभी जानते हैं कि जल का संपूर्ण सजीव जगत के लिए कितना महत्व है। आज स्थिति ऐसी है, लोग इसकी महत्ता को समझते हुए भी इसे प्रदूषित कर रहे हैं। जरूरत इस बात की कि हमें जल को प्रदूषित होने से बचाना होगा। मेरा प्रयोग प्रत्येक फसल के हिसाब से निर्धारित करना होगा। सिंचाई की योजना बनाई जानी चाहिए। स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई, फवारा सिंचाई का प्रयोग करना होगा। अनेक तरह की फसलों में मेरी खपत कम करनी होगी। ऐसी फसलों की बिजाई करनी होगी जिसमें मेरा प्रयोग कम से कम हो। जहाँ तक संभव ऐसे खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें मेरा प्रयोग कम होता है। खाद्य पदार्थों की अनावश्यक बर्बादी में भी कमी लानी होगी। इनके उत्पादन में बढ़ावा मेरा प्रयोग व्यर्थ ही चला जाता है, इसलिए इन खाद्य पदार्थों में मेरी बर्बादी को रोक कर आज इसकी जरूरत को पूरा किया जा सके है। मैं पूरे जीव जगत के प्राणियों को जीवन प्रदान करता हूँ। जल भगवान द्वारा दिया गया हम मानव को और अन्य प्राणियों के लिए उपहार है। मेरे बिना पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए मेरी बचत आज समय की जरूरत है। मैं हूँ तो जीवन है, मैं हूँ तो कल है, और मैं हूँ तो आज है।

मैं पानी हूँ, मैं स्रोत भी हूँ, मैं सार भी हूँ, सच मानो तो मैं ही संसार हूँ। मैं सागर का गर्व हूँ, सूखे खेतों का हर्ष हूँ, मैं पानी हूँ। मुझे अभी अगर तुम ना सहेजोगे, मुझे अगर अभी तुम ना बचाओगे, बूंद बूंद को सभी तरस जाओगे, सूखेगा हर पल कंठ तुम्हारा और प्यासे ही सब मर जाओगे, प्यासे ही सब मर जाओगे। मैं पानी हूँ, जल ही जीवन है जितना उसके, आज बूंद बूंद बचाएं, ऐसा ना हो कि कल हम सब पछताएं। मैं पानी हूँ, मैं पानी हूँ।

ये सुना भाइयों आपने आज विशेष कार्यक्रम में पानी हूँ। इसी के साथ आज का हरियाणवी लोकरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। सारे भैया ने राम राम।

0: हिंदुस्तान जमीन है सितारों की।
1: अगर तुम्हारी आरजू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा।
2: एक से बढ़कर एक उम्दा फनकारों की।
0: कोई साहित्य में सर्वश्रेष्ठ है?
3: न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता।
2: तो कोई विज्ञान में अद्वितीय है?
4: Will you be remembered as a great scientist, said La Thomas Alva Edison।
0: कोई कला में उत्कृष्ट है?
2: तो कोई संगीत का शिरोमणि।
0: किंतु कोई है जो इन सब को ले आया है आपके लिए, आपके घर में, आपके बेहद करीब।
2: कार्यक्रम एक शख्सियत,
0: हर सोमवार शाम 5 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
5: अर्ज किया है, रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे रांझे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने रांझे को समझाया।
0: अरे बुद्धू, मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया?
2: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर।
0: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में,
2: हर मंगलवार शाम 5 बजे
0: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
6: FM बैंड 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। इस समय सुबह के 7:40 हुए हैं और अब समय है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात का। सुप्रभात कार्यक्रम में आज मैं आपके साथ हूँ, आपका अपना रेडियो हम सफर गुंजन ढिंडोरिया, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ।

इस गर्मी के मौसम में दिन की शुरुआत धीमी धीमी बारिश से हो रही है, तो बहुत सुकून भरा दिन लग रहा है। रात से बारिश हो रही है और हिसार के आसपास भी शायद बारिश होगी, नहीं होगी तो ये शीतल हवाएं जरूर पहुंच गई होंगी। और इन्हीं के साथ झूमते मुस्कुराते गीत हम आप तक पहुंचा ही देते हैं। तो दिन की शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। दोस्तों, आज आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। प्रातः 9:37 तक रहेगी और इसके बाद तृतीय तिथि प्रारंभ होगी। सूर्योदय प्रातः 5:31 पर हुआ और सूर्यास्त होगा शाम 7:30 पर। राहु काल रहेगा दोपहर 2:10 से 3:54 तक। तो इस अवधि में थोड़ा सा शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचा जाए तो अच्छा है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हल्की से मध्यम वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की लगभग संभावना है और रात से बारिश हो ही रही है, तो अपना ध्यान रखें। मौसम का आनंद जरूर लें, लेकिन अगर कहीं जा रहे हैं, व्हीकल से जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें गड्ढों का, या फिर कहीं मिट्टी है तो उससे थोड़ा सा बचकर निकलें, क्योंकि बारिश के मौसम में कई जगह पानी भर जाता है। तो उस जगह पर हमें ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अनहोनी पूछकर नहीं आती। दोस्तों, हर नई सुबह हमें एक नया अवसर देती है। सकारात्मक सोच, परिश्रम और विश्वास के साथ किया गया हर काम सफलता की ओर एक मजबूत कदम होता है। यही हमारी मंगल कामना है। परिश्रम करते रहिए और जो अपना लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उसे छोड़िए मत, क्योंकि अगर हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे या फर्ज करते रहेंगे तो एक ना एक दिन उस लक्ष्य को जरूर पा लेंगे, और जब पा लेंगे तो सारा प्रयास, सारी मेहनत आपकी सफल हो जाएगी और उस दिन आप खुद को शाबाशी देंगे कि हाँ, मैंने कर दिखाया, मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटा। तो आइए इस खूबसूरत से दिन की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ करते हैं।

साईं की नगरिया जाना है रे बंदे, बहुत ही खूबसूरत सा भजन। और इस सुहावने मौसम में दिन की शुरुआत गीतों के साथ की जाए तो सारा दिन अच्छा बीतता है। इस समय हमारे कुछ श्रोता साथी चाय पी रहे होंगे, कहीं रसोई में चाय की खुशबू आ रही होगी और कुछ अपने काम पे, ऑफिस में या दुकान पे जाने के लिए गाड़ी में बैठे होंगे और साथ ही साथ गीतों का आनंद भी ले रहे होंगे। तो इस सुहावने मौसम में जब धीमा धीमा जो ये संगीत सुनने को मिल जाता है तो मौसम का मज़ा दोगुना हो जाता है। और चुन चुन कर जो प्लेलिस्ट हम आप सभी तक लेके आते हैं उसमें मज़ा और दोगुना हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर हमें ढूँढना पड़ता है कि इस मौसम में क्या गीत सुने। तो हम उन चुनिंदा गीतों को आकाशवाणी हिसार के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। और अगर सुबह सुबह घर में रेडियो सेट ऑन करके इन खूबसूरत गीतों को चला दिया जाए तो घर का माहौल ही खिल उठता है। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की ओर, आपके अपने रेडियो दोस्त गुंजन निंडोरिया के साथ श्री रामचरितमानस के कुछ श्लोक, आइए सुनते हैं। भूपति त्रिषित बिलोकी तेही सर्बरुदीन देखाई मज्जन पान समेत हय कीन निरपति हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसके सरोवर दिखला दिया, हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ निज आश्रम तापस लय गयऊ। आसन दीन अस्त रवि जानी पुनि तापस बोलेऊ मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरहूं अकेले सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लागियति मोरे। तुम कौन हो सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो। तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भनु

अवनीश तासु सचीव मैं सुनहु मुनीसा, फिरत अहेरे परेऊं भुलाई, बड़े भाग देखऊं पद आई। हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नामक एक राजा है, मैं उनका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं।

इसी खूबसूरत से भजन के साथ कार्यक्रम सुप्रभात समेटने की अपने रेडियो दोस्त गुंजन ढिंडोरिया को दीजिए इजाजत। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ आज नई दिल्ली में वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच बारिश के कारण रद्द। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाची के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। ये वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा तथा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है।
1: नवंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित पहले आर्थिक सुरक्षा संवाद के दौरान भारत और जापान ने रणनीतिक सहयोग के लिए 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की थी। इनमें सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, फार्मास्यूटिकल्स, स्वच्छ ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। वर्ष 2025 में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान जापान भारत मानव संसाधन आदान प्रदान एवं सहयोग कार्य योजना शुरू की गई। इसके तहत अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5,00,000 लोगों के दो तरफा आदान प्रदान का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भारत से जापान जाने वाले 50,000 कुशल और अर्ध कुशल कर्मी भी शामिल हैं। दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ स्तरों पर भी नियमित रूप से बैठकें और उच्च स्तरीय आदान प्रदान होते रहते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री तकाईची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। ये भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान के प्रधानमंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत और मलेशिया ने कल नई दिल्ली में आपसी सैन्य सहयोग की समीक्षा की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बैठक में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और मुक्त आवाजाही को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई। 12वीं उपसमिति की बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा पहलू, सैन्य संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बढ़ाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर जोर दिया गया है। देश में पहली बार आंध्र प्रदेश के उंडवल्ली हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उड़ान के लिए पहली निजी पॉइंट इन स्पेस यानी पिंस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इस व्यवस्था में उन्नत उपग्रह तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।

0: इससे उन हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर के सुरक्षित संचालन में मदद मिलेगी जहां लैंडिंग के लिए पारंपरिक व्यवस्था नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर की शुरुआत करने के मामले में मेटा को नोटिस जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने विस्तृत जानकारी 3 दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है। एक रिपोर्ट।
1: सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने मेटा को यह भी निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। मंत्रालय ने व्हाट्सएप द्वारा की गई एक सार्वजनिक घोषणा पर संज्ञान लिया है। इस घोषणा में व्हाट्सएप ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से अपने यूजर नेम फीचर को लागू करने की बात कही थी। व्हाट्सएप ने बताया कि एक बार ये फीचर सक्रिय हो जाने पर पहली बार संपर्क करने वाले व्यक्ति को प्राप्तकर्ता का फोन नंबर दिखाई नहीं देगा और एक वैकल्पिक यूजर नेम को अतिरिक्त नियंत्रण के रूप में लगाया जा सकता है। ऐसी आशंकाएं हैं कि इस फीचर से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख रहे एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कल नए वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने अवकाश प्राप्त एयर मार्शल नागेश कपूर का स्थान लिया है। श्री नागेश कपूर 4 दशक से वायुसेना में हैं। उनके पास 3,500 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव है। उधर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने थल सेना उप प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के बढ़ा दिया है। श्री मिश्री 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान अधिसूचित किया है। यह हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस अधिसूचना में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित दिशा निर्देश और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के अंतर्गत केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी पंपों से ईंधन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS6 से निचले स्तर के सभी मोटर वाहनों के राजधानी में प्रवेश और संचालन पर रोक रहेगी। वहीं सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन और पर्यावरण विभाग द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सर्दियों के दौरान अधिकृत पार्किंग स्थलों पर शुल्क दोगुना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण गतिविधियों, धूल प्रदूषण और खुले में कचरा या पत्तियां जलाने पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी विशेष भूमि मापन अभियान डीजी रोवर की शुरुआत की है। ये अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में इस अभियान की शुरुआत की। झारखंड सरकार ने पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मृत्यु के बाद राज्य में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। सरकार ने रक्त संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी उपायुक्तों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल दिल्ली में डेंगू की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और नगर निकाय डेंगू के मामलों में संभावित वृद्धि से निपटने के लिए तैयार हैं। जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों के वितरण के लिए समाप्त होगा। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा ई गवर्नेंस संबंधी उत्कृष्ट पहलों के लिए प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की ये वार्षिक तीर्थयात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा अनंतनाग जिले के नुनवान पहलगाम मार्ग और गांधरबल जिले के बालतल से होकर गुजरती है। तीर्थयात्रियों को केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर ही यात्रा करनी होगी। मुगल रोड और धार रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों पर तीर्थयात्रा का आवागमन वर्जित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकरण जारी है और यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थयात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। खेलों में फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से

हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलीमेंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान

0: में भारत इंग्लैंड के बीच टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच कल बारिश के कारण रद्द हो गया। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 0-0 से बराबरी पर हैं। बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी शुरू नहीं कर सका। श्रृंखला का दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में खेला जाएगा। वहीं ड्यूरेंट कप फुटबॉल का 135वां संस्करण 25 जुलाई से कोलकाता में शुरू होगा। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। मैच रांची, इम्फाल, शिलांग और गुवाहाटी में खेले जाएंगे। 2 क्वार्टर फाइनल, 1 सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कोलकाता में होंगे। ये पहला मौका है जब ड्यूरेंट कप के मैच झारखंड की राजधानी रांची में भी रखे गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सामाजिक न्याय के अग्रदूत डॉक्टर सोनूलाल पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनूलाल ने असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का सशक्त संदेश दिया। केंद्र सरकार ने असम में हाल ही में बाढ़ से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सबसे ज्यादा प्रभावित धेमाजी जिले सहित पूरे राज्य में बाढ़ से हुए आरंभिक नुकसान का जायजा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पहुंचने की संभावना है। कर्नाटक के तटीय भाग, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सुबह बारिश के साथ हुई। शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई, इससे दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। कमर्शियल गैस ATF में राहत, पेट्रोल, डीजल और LPG पर इंतजार। जुलाई के पहले सप्ताह ही जेब पर पड़ेगा अच्छा असर, राजस्थान पत्रिका की खबर है। प्रदूषण हो या ना हो, 1 नवंबर से वर्क फ्रॉम होम, दिल्ली में ग्रैब की पाबंदियां 4 महीने तक स्वतः लागू रहेंगी। हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की आज सुर्खी बनी है। मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का कार्यकाल बढ़ा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई तक बढ़ाई समय सीमा, वीर अर्जुन की खबर है। दोहा में मध्यस्थों के जरिए अमरीका और ईरान में बातचीत, देश बंधु की सुर्खी है। भारत पहुंची जापान की PM, रणनीतिक संबंधों पर जोर, PM मोदी के साथ शिखर वार्ता आज, दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की खबर है। आयात के दम पर GST संग्रह 14% बढ़ा, वृद्धि की रफ्तार 13 माह में सबसे तेज। चुनौतियों के बावजूद विदेशी उत्पादों के बंपर आयात में जून में भरी सरकार की झोली, अमर उजाला के कारोबार पन्ने की ये खबर ध्यान खींचती है। आज और कल भी कभी भी NCR में दस्तक दे सकता है मानसून, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रवेश के बाद अगली मंजिल NCR, हरियाणा और पंजाब, दैनिक जागरण ने यह खबर सचित्र दी है। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ हेली सेवा स्थगित, उड़ाने डायवर्ट, चारधाम यात्रा में कुछ ही दिनों में अंतर दिखने का समाचार दैनिक भास्कर ने आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 20 दिन में बदली तस्वीर दर्शनार्थियों की दौड़ में, केदारनाथ से आगे निकला बद्रीनाथ। छोटे शहरों में ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज, कंपनियां बढ़ा रही हैं निवेश, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। वीर अर्जुन ने ग्राम सभा पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, गांव की लोकतांत्रिक आत्मा क्या कागजों पर सिमट रही है, ग्राम सभाएं। लेख में कहा गया है कि ग्राम सभा को विकास कार्यों के सोशल ऑडिट का वास्तविक अधिकार मिलना चाहिए। जब लोगों को दिखेगा कि उनके द्वारा किए गए ऑडिट से भ्रष्टाचार पर रोक लग रही है तो उनकी भागीदारी स्वतः बढ़ेगी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची के साथ आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ब्याज दर 8.25% रखने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप पर नए यूजर नेम फीचर को लेकर मेटा को नोटिस जारी किया, 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक स्थायी शीतकालीन प्रदूषण मास्टर प्लान की अधिसूचना जारी की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को 3-2 से हराया। और पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मैच बारिश के कारण रद्द। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

नमस्कार दोस्तों, मान सम्मान आदर किसी भी व्यक्ति संस्था या वस्तु के प्रति सकारात्मक भावना या सम्मानपूर्ण व्यवहार होता है। ये किसी के अच्छे गुणों, योग्यताओं या उपलब्धियों के लिए प्रशंसा की भावना को व्यक्त करता है। हर एक मानव स्वभाव के लिए ये एक सार्वभौमिक या सर्वमान्य सच्चाई है कि हर व्यक्ति अपने लिए सम्मान और आदर की अपेक्षा रखता है। सम्मान पाने की ये लालसा किसी भी उम्र, लिंग या पद से परे होती है। सम्मान किसी स्वार्थ या मजबूरी से प्राप्त किया गया है तो ज्यादा नहीं टिक पाता, कभी ना कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है। इसीलिए ये जान लें कि सच्चा सम्मान आपसी विश्वास और प्रेम से ही उपजता है। इस बुनियादी मानवीय मूल्य को समझने की बहुत आवश्यकता है। यदि सम्मान किसी भी व्यक्ति की उम्र, जाति, धर्म, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक या आर्थिक स्थिति की वजह से किया जा रहा है तो बस ये एक झूठ है या फिर छलावाई से समझ सकते हैं, क्योंकि सम्मान तो ऐसी हर स्थिति से परे मानवीय गरिमा की निशानी है।

दोस्तों, सम्मान कोई खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं, बल्कि इंसान के कर्मों, विचारों और व्यवहार से कमाई गई सबसे बड़ी पूंजी है। ये ऐसा अनमोल उपहार है

जो हम दूसरों को दे सकते हैं और बदले में हमें वही वापस भी मिलता है। विनम्रता और आदर के बिना सच्चा सम्मान कभी पाया नहीं जा सकता। हर व्यक्ति अपनी गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहता है और ये एक शाश्वत सत्य है। सम्मान एक दो तरफा प्रक्रिया है। वो इस तरह कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों से आदर की अपेक्षा करता है तो उसे खुद भी अन्य लोगों के विचारों, भावनाओं और सीमाओं को सम्मान देना होता है। बाहरी सम्मान की प्राप्ति के लिए हमें खुद की नजर में सम्मानित और आत्मविश्वासी होना जरूरी है। जो व्यक्ति खुद का मूल्य समझता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। अपने व्यक्तिगत जीवन या कार्य क्षेत्र में सम्मान पाने के लिए दूसरों को सम्मान देने की हमारी भावना बेहद जरूरी है।

0: करती है।
1: सम्मान की चाह मानव स्वभाव का एक अंतर्निहित हिस्सा है। हम दूसरों से सम्मान पाना तो चाहते हैं, तो सबसे पहले दूसरों के विचारों, सीमाओं और भावना को सम्मान करना सीखना होगा। किसी भी व्यक्ति से सम्मान की अपेक्षा रखने से पहले आत्मसम्मान करना और अपने मूल्यों पर अडिग रहना बहुत ही जरूरी है। जो व्यक्ति खुद की कद्र करता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। अपनों से बड़ों का सम्मान करना हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्यों की मजबूत नींव है। अपने अनुभव हमें सही मार्गदर्शन देते हैं और बड़ों का आशीर्वाद हमारे जीवन में सुरक्षा कवच की तरह काम करता है।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे भुज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म का गीत। मनोज मुंतशिर ने इसे लिखा, आरकू प्रावो मुखर्जी का संगीत। भाई हम तो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपका हाल कैसा है, क्या आज आपकी नींद पूरी हुई?

दलेर मेहंदी, डीएमसी और शाश्वत सचदेव की आवाज में आप सुन रहे थे उरी फिल्म से ये गीत, और इसे लिखा डीएमसी ने और संगीत से सजाया शाश्वत सचदेव ने। तो हमने आपसे पूछा था कि क्या आपकी नींद आज हुई है पूरी, और कुछ इसी तरह से सूरमा बनकर हम करते हैं ये काम कि अपनी नींद को कर देते हैं बिल्कुल नजरअंदाज और कभी भी पूरी नहीं होती हमारी नींद। और ऐसी शिकायत भी अक्सर बनी रहती है कि भाई जिंदगी में सब चीजें पूरी होती हैं लेकिन नींद पूरी नहीं होती, जबकि नींद शरीर की सबसे जरूरी आवश्यकता है। और जब हम 7-8 घंटे की नींद लेते हैं तो हमारा शरीर स्वयं को मरम्मत करता है खुद की, या कहें कि जो थकान होती है अंगों में, कहीं तकलीफ होती है, वो सब दूर करने के लिए शरीर को भी इतना वक्त चाहिए आराम का। लेकिन हम तो बने रहते हैं सूरमा और हमें ऐसा लगता है कि हमें तो कुछ ना कुछ काम करते रहना है। खासतौर से इन दिनों जो हम काम करते हैं वो ये है कि देर तक जागते हैं फिर देर तक सोते हैं, लेकिन एक समय निश्चित है जिसमें शरीर मरम्मत का काम करता है। उस ज्यादा देर अगर आप सोते रहते हैं तो उसका ज्यादा फायदा नहीं होता, ऐसा तो वैज्ञानिक तत्व भी कहते हैं कि जो एक वक्त निर्धारित है नींद का, कह सकते हैं रात का जो समय है, उस समय अगर आप सो जाते हैं, देर रात तक अगर आप जागते हैं तो आपके शरीर को उससे नुकसान ही है। और उसके बाद भले ही आप घड़ी देखकर 7-8 घंटे की नींद ले लें लेकिन उसका उतना फायदा तो नहीं होता। तो इसके बारे में क्या किया जा सकता है,

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और हम आपको याद दिला दें कि सुबह 10 बजे आप सुन सकते हैं आज के मेहमान कार्यक्रम का पुनः प्रसारण, जिसके अंतर्गत आज सुनिए वरिष्ठ साहित्यकार, कथाकार, कवि, व्यंगकार, निबंधकार, आलोचक, अनुवादक, संपादक और समीक्षक के साथ ही लेखक हरिशंकर राढ़ी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत की पहली कड़ी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। और आपको ये भी याद दिला दें कि दोपहर 1 बजे से रोजाना आप सुनते हैं सुरीला सफर कार्यक्रम, जिसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए www.facebook.com/vbsmumbai। इस पते पर जाकर आपको मिलेगा विविध भारती का पेज।

सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे सुई धागा फिल्म का ये गीत, वरुण ग्रोवर ने इसे लिखा, अनु मलिक का संगीत। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं नींद की, क्योंकि बाकी सब तो जिंदगी में बढ़िया है लेकिन नींद का क्या करें जो पूरी नहीं हो रही, जिसके लिए हम देर तक जागते हैं और देर तक सोते भी हैं। कुछ लोग, सबको तो सोने का नहीं मिलता देर तक, तो फिर नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो अगर कोई भी काम हमने किया हो और उसका श्रेय किसी को मिले तो हमें बुरा लगता है। वैसे किसी और ने कुछ गलती की हो और उसकी वजह से अगर हमें सजा मिले तो भी बुरा लगता है। तो अक्सर जो नींद हमारी पूरी नहीं हो पाती उसका दोष मिलता है मोबाइल को, और साथ ही जब हम जाग रहे हैं लेकिन सारा दोष मिल रहा है मोबाइल को, कोई सीरीज को कि भाई इतनी अच्छी थी कि हम देखते रह गए, या फिर दोस्तों को कि भाई उनका फोन आ गया था या हमारे दोस्त आ गए थे हमें बुलाकर ले गए। तो ये क्या तरीका है, क्योंकि ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या करने वाले हैं, निर्णय तो हमारे ऊपर ही है ना। चलिए ठीक है, दोस्तों पर आपका काबू ना चल पाए लेकिन मोबाइल पर और किसी सीरीज को देखने पर तो आपका बिल्कुल काबू रहता है। मोबाइल का भी आपके हाथ में ही पूरा कंट्रोल है, और साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं, जहां टीवी पर कुछ भी चीजें देख रहे हैं, उसके लिए भी रिमोट भी आपके हाथ में ही है। तो जरा याद कीजिए वो दिन जब आप समय से सोते थे, समय से जागते थे, और उन दिनों को अगर आप याद करेंगे तो आप खुद कह उठेंगे कि भाई वो दिन क्या दिन थे।

और किसी सीरीज को देखने पर तो आपका बिल्कुल काबू रहता है, मोबाइल का भी आपके हाथ में ही पूरा कंट्रोल है, और साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं, जहां टीवी पर कुछ भी चीजें देख रहे हैं, उसके लिए भी रिमोट भी आपके हाथ में ही है। तो जरा याद कीजिए वो दिन जब आप समय से सोते थे, समय से जागते थे, और उन दिनों को अगर आप याद करेंगे तो आप खुद कह उठेंगे कि भाई वो दिन क्या दिन थे।

दोस्तों यहाँ ये भी जिक्र करना जरूरी होगा कि मोहम्मद अजीज ने हिंदी फिल्म जगत के तमाम बड़े सितारों के लिए पार्श्व गायन किया है, जैसे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और गोविंदा के साथ साथ और भी कई कलाकार हैं। ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद अजीज का गाया फिल्म नगीना का ये गीत बेहद मकबूल रहा है।

बहुमुखी गायन प्रतिभा के मालिक मोहम्मद अजीज ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में लगभग 20,000 गीत गाए हैं। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, नौशाद, ओपी नैयर, राजेश रोशन, राम लक्ष्मण और रविंद्र जैन से लेकर उषा खन्ना, आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, आनंद राज आनंद और आदेश श्रीवास्तव तक तमाम संगीतकारों के निर्देशन में मोहम्मद अजीज ने गीत गाकर सभी को लुभाया है, बहलाया है। अनुराधा पौडवाल के साथ मोहम्मद अजीज का गाया ये गीत आज भी 90 के दशक के फिल्म संगीत की यादों को ताजा कर देता है।

मोहम्मद अजीज ने हमारे देश के अलावा विदेशों में भी जाकर मंच पर अपने कई प्राइवेट कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। उड़िया और बांग्ला भाषाओं में कई फिल्मी गाने उन्होंने अनुराधा पौडवाल के साथ भी गाए और तमाम कई फीमेल सिंगर के साथ भी उनके गाए गीत मकबूल हुए हैं। और जहां तक भजन का सवाल है तो आपको हम ये बता दें कि उड़िया भाषा में उनके कई भजन मशहूर रहे हैं और कई अवसरों पर गाए जाते हैं।

27 नवंबर 2018 को अचानक हुए हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की वजह से मोहम्मद अजीज हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों कहते हैं ना, जिस्मानी तौर पर भले ही कलाकार हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी विधा के बल पर वो अपने चाहने वालों के दिलों में बसा करते हैं। इसी तरह पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज भी अपनी आवाज के जरिए हमेशा हमेशा अपने चाहने वालों के मन में जीवित रहेंगे।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था पार्श्व गायक मोहम्मद अजीज पर। तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम, और इस समय सुबह के 10 बज चुके हैं और अब समय है आप

में जा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी से चलिए और खूबसूरत से गीतों का आनंद लेते रहिए हमारे साथ। कार्यक्रम में हम आप सभी से पहले बातें करेंगे हिसार के बारे में और फिर आपसे पूछेंगे दो सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उसके बाद कुछ सक्सेस स्टोरीज आपसे शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9729253272972।

और खबर यह है कि हिसार नगर निगम की नव नियुक्त निगमायुक्त सी जया श्रद्धा जी ने पदभार ग्रहण करते ही सारे कामकाज का जायजा लिया और निगम कार्यालय का निरीक्षण भी किया। और एक और बात, हिसार में जगह जगह कहीं सीवरेज का, कहीं पानी की पाइपलाइन का काम चल रहा है, तो उस वजह से थोड़ा सा मिट्टी है, इधर उधर खड्डे हैं, तो इस बारिश के मौसम में खासकर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी सावधानी हम नहीं बरतते तो अनहोनी हो सकती है। और बच्चों को भी थोड़ा सा सतर्क रखें, अगर बाहर निकलते हैं तो ध्यान से निकलें, और अगर बच्चे ट्यूशंस या कहीं जाते हैं तो इस मौसम में आप खुद ही छोड़ के आएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे खुद कई बार साइकिल वगैरह से या पैदल जाते हैं, तो उस सिचुएशन में ये बारिश का मौसम थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। प्रशासन का काम धीरे धीरे चल रहा है, हमें बाद में कुछ ना कुछ अच्छा मिलने वाला है, तो हमारा ये नाता बनता है कि हम सावधान रहें, सतर्क रहें और साथ ही साथ प्रशासन का साथ दें इस काम में। और साथ ही साथ शहर में हर चौराहे पर हमारे पुलिस प्रशासन जो हैं वो सतर्क खड़े मिलते हैं, तो हमें उनका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ट्रैफिक नियमों का पालन हमें खुद से ही करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी ही सावधानी है। अगर हम टू व्हीलर पर चल रहे हैं तो हेलमेट लगाना ज़रूरी है, और गाड़ी में चल रहे हैं तो सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं सीट बेल्ट लगाने में, लेकिन जब अनहोनी होती है तो बाद में हम यही बात कहते हैं, तो हेलमेट था जो बचाव हो गया, सीट बेल्ट लगाई हुई थी तभी बचाव हुआ। तो क्यों ना हम इन चीज़ों को अपनी डेली रूटीन में शामिल ही कर लें, क्योंकि अगर हम एक बार इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू करेंगे तो अपने आप जब भी हम गाड़ी चलाएंगे तो जो नियम है वो हमें ध्यान रहेंगे। और ख़ास करके रेड लाइट पे हमारे बहुत सारे युवा साथी हमने देखा है निकल जाते हैं इधर उधर से, तो आपको कोई नहीं देख रहा, आप खुद को ही देख सकते हैं, आप खुद का ध्यान खुद ही रख सकते हैं, हमारी ही सावधानी के लिए ये सब जो नियम है बनाए गए हैं। और अगर मार्केट में भीड़ भाड़ है तो अपनी लेन में चलें। खास चीज़ है दोस्तों, हम सोचते हैं जल्दी के चक्कर में इधर उधर से निकल जाएंगे, लेकिन अगर हम लेन छोड़ते हैं तो उस समय दोगुना समय लग जाता है, क्योंकि इधर उधर का ट्रैफिक फंस जाता है, आमने सामने से गाड़ियां आ जाती हैं, तो जितना समय हमें जाने में लगना होता है उससे दोगुना लग जाता है जल्दी के चक्कर में। तो एक ही लेन में चलते रहेंगे तो हम जल्दी अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे और परेशानी भी नहीं होगी, और ख़ास करके एक ही जगह पे बहुत सारा ट्रैफिक रुकता है तो पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। आपने कई बार देखा होगा इस गर्मी के मौसम में अगर हम ट्रैफिक में रुक जाते हैं तो टू व्हीलर पे अगर होते हैं तो कितनी गर्मी लगती है, कितना फ़र्क रहता है। आप यूनिवर्सिटी में या फिर यूनिवर्सिटी से बाहर का भी टेम्परेचर देख सकते हैं, एक बार पेड़ पौधों के बीच में हम घुस जाते हैं तो टेम्परेचर अपने आप डाउन आता है, हमें खुद फील होता है, वो होता है नेचुरल एसी, जिसकी हमें आज के समय पर खास ज़रूरत है। तो आइए इस खूबसूरत सी ठंडी मीठी सी सुबह में ये प्यारे से गाने का आनंद लेते हैं आकाशवाणी हिसार के साथ।

लिखा है आपने, तो वो चोरी चोरी जो चीज़ें आप करते हैं हमारे जो साथी हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ ही जाती हैं। तो अपनी पढ़ाई पर और अपने काम पर अच्छे से ध्यान दीजिए। और कार्यक्रम के अगले हिस्से की ओर चलते हैं। आपसे पूछते हैं दो सामान्य ज्ञान के प्रश्न, और आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9729253272 पर जवाब देना है। नंबर एक बार फिर से बता दूं, 9729253272।

दोस्तों, दोनों सवालों का अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपकी पसंद का खूबसूरत सा गाना हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारा पहला सवाल है, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं? एक बार फिर से आपको सवाल बताएं, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं? दूसरा सवाल हमारा है, ग्रीष्मकाल 2013 में किस राज्य में भारी वर्षा और बादल फटने से लगभग 2000 गांव, 1500 सड़कें और 150 पुल तबाह हो गए थे? एक बार फिर से दूसरा सवाल आपको बता दें, ग्रीष्मकाल 2013 में किस राज्य में भारी वर्षा और बादल फटने से लगभग 2000 गांव, 1500 सड़कें और 150 पुल तबाह हो गए थे? तो जल्दी से हमारे व्हाट्सएप नंबर 9729253272 पर जवाब लिख भेजिए हमारे दोनों सवालों का, और सुनिए अपनी पसंद का गाना आपके नाम के साथ आकाशवाणी हिसार के साथ। आइए जब तक सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई

0: आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बदलो बदलो आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दोस्तों अभी संदेशों से पहले एक खूबसूरत सा गाना आप सभी के साथ इस सुहाने मौसम में, हमने भी आनंद लिया। और गीतों की प्लेलिस्ट जब चुनी चुनाई मिल जाती है तो एक मज़ा दोगुना हो जाता है। हमारे सवाल थे, ग्रीष्मकाल 2013 में किस राज्य में भारी वर्षा और बादल फटने से लगभग 2000 गांव, 1500 सड़कें और 150 पुल तबाह हो गए थे? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड। और दूसरा हमारा सवाल था, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं? इसका जवाब है उत्तरी पश्चिम भारत में कम वायु दाब के होने से। और सबसे पहले जिन्होंने सवाल दिया है, पहले उनका नाम आपको बता दें, तस्वीर सिंह शुरान जी ग्लोबल स्पेस हिसार से। और ये बहुत ही प्यारा सा बचपन फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं। पहले इनकी पसंद का गीत आपको सुनवाएंगे और उसके बाद हम बताएंगे हमारे और किन साथियों ने सवालों के सही उत्तर दिए हैं।

0: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: बहुत ही खूबसूरत सा गीत तस्वीर सिंह शोरान जी की पसंद पर, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले सही उत्तर दिया था। हमारे और साथी जिन्होंने सही उत्तर दिया है उनके नाम है सुंदर नगर हिसार से मोनिका खरलवा, पंकज शिवम, नैन्सी सुलेख, सुरेश खरलवा, गांव ढाणी गुतुपुर जिला हांसी से रामधारी अवाना, अवनी प्रियांशी, रियांशी ओजस, अनाया गुरदीप, बेबी कीरतवाना।

दोस्तों बहुत ही मजा आता है जब आप लोग कार्यक्रम में शामिल होते हैं और अपनी पसंद के खूब प्यारे प्यारे से गाने हम तक पहुंचाते हैं, और इस सुहावने मौसम में तो गाने सुनने का मजा दोगुना हो जाता है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं कार्यक्रम नमस्ते हिसार में। आपका अपना रेडियो दोस्त गुंजन ढिंडोरिया, और आप कार्यक्रम में बात करेंगे एक सक्सेस स्टोरी के बारे में। ये कहानी है मुंबई में रहने वाले केमिकल इंजीनियर अनुज शाह की। उन्होंने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को एक बिजनेस आइडिया में तब्दील कर दिया, और इसका जादू ऐसे चला कि शुरुआत में हर महीने सिर्फ 50 ऑर्डर से अब ये इनका जो ब्रांड है 500 ऑर्डर रोज डिलीवर करता है। क्या है अनुज शाह के बिजनेस की कहानी, कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया और कैसे कामयाब बनाया अपने बिजनेस आइडिया को, बातें करेंगे आप सभी से। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में रहने वाले अनुज शाह ने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को बड़े बिजनेस आइडिया में तब्दील कर दिया। उन्होंने साल

2002 में अपने मामा दीपक शाह के साथ मिलकर प्रीमियम मेंसवेयर डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड की शुरुआत करी, यानी कपड़ों का ब्रांड शुरू किया, और इसका नाम उन्होंने बहुत ऊंचा बढ़ाया। यह ब्रांड भारतीय पुरुषों के शरीर की बनावट को ध्यान में रखकर टी शर्ट बनाता है, और इसका जादू ऐसे चला कि शुरुआती दिनों में महीनों में सिर्फ 50 ऑर्डर से यह स्टार्टअप आज रोजाना 500 से अधिक ऑर्डर डिलीवर करता है। तो जानेंगे इनकी सफलता के बारे में और क्या खासियत इन्होंने जो समस्या थी उसको सोल्व किया लोगों की और इस बिजनेस को इतना बड़ा बनाया उसके बारे में। पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: दोस्तों, सिलसिला फिल्म का ये गाना आज भी हमारे दिलों में बसता है और गाने ऐसे ही होने चाहिए जो लोगों के दिलों में एक छाप छोड़ जाए और कभी पुराने ना हो। इन गानों की बात ही कुछ और होती है। इन्हें बारिश के मौसम में सुन लो, ठंड में सुन लो, गर्मी में सुन लो, गाड़ी में चलते हुए सुनो या फिर फोन में स्क्रॉल करते करते कहीं ये गाना आ गया तो हम एक बार रुक ही जाते हैं, इस गाने में खो जाते हैं और साथ ही साथ गुनगुनाने लगते हैं। तो हम बात कर रहे थे अनुज शाह जी की। मुंबई के अनुज शाह ने थडुमल शाहानी इंजीनियर कॉलेज से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और कॉलेज के दिनों में उनका वज़न थोड़ा ज़्यादा था। उन्होंने बाज़ार में एवरेज जो इंडियन मेल्स हैं उनके शरीर के हिसाब से सही फिटिंग वाले कपड़े ढूंढने में काफ़ी मशक्कत की। स्टैंडर्ड साइज की टी शर्ट उन पर सही नहीं दिखती थी। इस समस्या से निपटने के लिए अनुज ने एक अनोखा तरीका निकाला। वह प्रीमियम ब्रांड की टी शर्ट खरीदते, फिर अपनी माँ से उसे अपने हिसाब से ऑल्टर करवाते और इस बदलाव के बाद कॉलेज में लोगों ने उनके लुक को फिजिक की तारीफ करने लगी और यहीं से अनुज को समझ आया कि भारत में एवरेज मेल बॉडी टाइप के लिए कपड़ों का कोई ख़ास ब्रांड मौजूद नहीं है। उन्होंने इसी गैप को भरने के लिए ये फैसला लिया। अनुज ने ये आइडिया अपने मामा दीपक शाह से शेयर किया। दीपक खुद एक्सल साइज के थे और वो कपड़ों को बिजनेस समझ रखते थे, कपड़े के बिजनेस की उन्हें नॉलेज थी और समस्या को समझते हुए उन्होंने भी तुरंत काम करने को तैयार हो गए और वो स्टार्टअप के बतौर को फाउंडर शामिल हुए और साल 2021 में दोनों ने अपनी बचत से 25 लाख रुपए निकाले और इस ब्रांड की रूपरेखा तैयार की। 29 मार्च 2022 को आधिकारिक तौर पर इसे मार्केट में लॉन्च किया। स्टार्टअप का पूरा ध्यान फिट फर्स्ट अप्रोच पर था। मामा भांजे की जोड़ी ने बाजार में मौजूद टी शर्ट को अल्टर करके प्रोटोटाइप बनाए। उन्होंने अलग अलग बॉडी टाइप के कई लोगों पर टेस्ट किया। चेस्ट, पेट, चौड़ाई की ओपनिंग और कुल लंबाई के एक एक इंच को मापा गया ताकि यह पेट को सही तरीके से कवर करे और बाजुओं पर फिट दिखे। फैब्रिक के लिए उन्होंने मर्सराइज कॉटन, विस्कोस और पफ कॉटन जैसे प्रीमियम ब्लेंड को चुना। फिर 2023 में आया उनका टर्निंग पॉइंट, उसके बारे में भी जानेंगे। पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गाना क्योंकि सुहाने मौसम में अगर कार्यक्रम में गाने ना हो, गीत ना हो, तो मजा थोड़ा अधूरा रह जाता है।

0: बच्चों की एक अलग दुनिया होती है।
1: चकरक चीचा चो चकलो रम गंडो वंडो लकरकटम।
0: और यदि आपको चाहिए इस दुनिया में एंट्री तो ढूंढिए अपने भीतर छुपे बच्चे को।
2: एरोप्लेन एरोप्लेन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग? फ्लाइंग सो हाई, ओवर द माउंटेन, ओवर द सी।
3: बचपन की मुस्कुराहटों और गुदगुदाहटों से भरा कार्यक्रम बाल सभा
0: हर रविवार सुबह 10:30 पर
3: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
4: अर्ज किया है, रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे रांझे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने रांझे को समझाया,
5: अरे बुद्धू, मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया?
6: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
5: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
6: हर मंगलवार शाम 5 PM
5: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
7: दोस्तों, अनुज ने 2023 में उनके बिजनेस में एक टर्निंग पॉइंट आया। शुरुआती महीने में डिजिटल एड और कंटेंट की सीमित समझ के कारण बिजनेस बहुत धीमा चल रहा था। पहले 2022 में उन्हें हर महीने सिर्फ 50 ऑर्डर के करीब आ रहे थे और ये ज़्यादातर परिवार और दोस्तों के ही थे। इस कम स्केल के साथ भी अनुज कंफर्टेबल हो गए और इससे बिजनेस में ठहराव आ गया। हालांकि साल 2023 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, तब एक मशहूर पॉडकास्टर उद्यमी ने उनकी टी शर्ट पहनी और उसकी फिटिंग जो इंडियन मेल्स के अकॉर्डिंग बनाई गई थी कि ज़्यादातर मेल्स की जो बॉडी है उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट फिट बनाई गई थी, इस तरीके से उसे स्टिच किया गया था कि हर किसी पर वो टी शर्ट अच्छी लगे। जब उस पॉडकास्टर ने वो टी शर्ट पहनी, उसकी जो स्टिचिंग थी, उसकी फिटिंग थी, उसके बारे में बताया, तो इस ऑर्गेनिक एंडोर्समेंट का असर यह हुआ कि उनका ब्रांड महीने में 1,00,000 रुपए कमाता था और उसने एक ही दिन में 1,00,000 रुपए का रेवेन्यू हासिल कर लिया उस वीडियो के बाद। और इसे अनुज को कंटेंट मार्केटिंग की असली ताकत का एहसास कराया। रोज 500 से ज़्यादा ऑर्डर। इस सफलता के बाद अनुज ने खुद कैमरा संभाला, फाउंडर लीड कंटेंट बनाना शुरू किया और उन्होंने खुद स्क्रीन पर आकर कपड़ों की खासियत समझाई शुरू की और स्ट्रीट इंटरव्यूज लोगों को, आम लोगों को अपनी टी शर्ट पहनाकर उनसे लाइव रिएक्शंस रिकॉर्ड किए उनके, उनसे पूछा फिटिंग और कम्फर्ट के बारे में। और यह कॉम्प्लीमेंट और वीडियोज विजुअल स्टाइल जो रॉ वीडियोज थी उनको लोगों को बेहद पसंद आई और नतीजा ये हुआ कि 2023 में हर महीने 200 ऑर्डर और 2024 में 500 ऑर्डर हर महीने पूरे करने वाला यह ब्रांड 2025 में 500 से अधिक, करीब 15,000 टी शर्ट प्रति महीना बना रहा।

था। आज उनके ग्राहक बहुत ज्यादा हैं और कुछ नामचीन हस्तियां और फिल्मी हस्तियां भी उनकी कस्टमर हैं। तो दोस्तों, इसी चीज़ से हमें, जो हमारे युवा साथी हैं जो सक्सेस ढूंढ रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, तो समझना चाहिए, अगर लोगों की, आमजन की समस्या को अच्छे से समझ के उसका सॉल्यूशन किया जाए तो उसी का नाम बिजनेस है। अगर जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी पूरे दिलो जान से समय दिया जाए तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। और अगर आप बिजनेस की सोच रहे हैं तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी हैं जो आपको सपोर्ट करेंगी और साथ ही साथ आप लोगों की समस्याओं को समझिए और उन्हें हल करना ही एक बिजनेस है। एक समय था जब चिट्ठियां लिखते थे, लोगों को कनेक्ट करना, एक दूसरे से बात करना मुश्किल होता था। तब फोन आए और फोन ने उस समस्या को सुलझाया, तो वो भी एक बिजनेस बन गया। आप सब्जियां पहले के ज़माने में खेत से तोड़कर लाते थे, लेकिन आज के ज़माने में जब सब्जियां घर पर मिल जाती हैं, दुकान पर मिल जाती हैं, एक फ़ोन पर क्लिक करके ही मिल जाती हैं, तो ये भी एक बिजनेस ही है। तो लोगों की समस्याओं को सोल्व कीजिए और जिस काम में आप लगते हैं उसमें पूरे दिल से, पूरे दिमाग से लग जाइए। सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी।

0: क्या आप परेशान हैं?
1: मैं परेशान, परेशान, परेशान, परेशान।
2: क्या आप खुश हैं?
3: आज मैं ऊपर।
0: क्या आप डांस करना चाहते हैं?
2: क्या आपका दिल टूटा हुआ है?
4: दिल के टुकड़े टुकड़े करके।
0: या आप प्यार में हैं?
5: पहला पहला प्यार है।
2: क्या आप अपने पुराने दिनों में लौटना चाहते हैं?
6: कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
0: तो मैसेज कीजिए 9729253272 पर,
2: क्योंकि हमारे पास है हर गाना आपके मूड और सिचुएशन के हिसाब से।
0: कार्यक्रम संदेश आपके, गीत हमारे, हर मंगलवार और शुक्रवार रात 10 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
7: दोस्तों, इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम नमस्ते हिसार समेटने की आपके अपने रेडियो दोस्त गुंजन डिंडोरिया को दीजिए इजाजत। रोज इसी समय हम आप सभी के लिए खूबसूरत सा कार्यक्रम लेकर आते हैं और सुबह 5:51 पर आपसे जुड़ते हैं और रात्रि 11:10 तक कार्यक्रमों का आनंद लेते रहिए। और अब दीजिए इजाजत, FM बैंड 102.3 MHz पर, ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अभी आपने सुना कार्यक्रम नमस्ते हिसार, आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT एपिसोड 1319।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं।
0: और मैं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता एवं रिश्तेदारी परस्पर सम्मान पर टिकी होती है।
0: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवनी प्रियांशी रियांशी ओजस अनाया गुरदीप और बेबी किरत अवाना ने लिखा है,
0: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। कार्यक्रम उमंग के तहत 3 जून 2026 को प्रस्तुत गोबी शीत मरुस्थल की भौगोलिक सांस्कृतिक एवं सामाजिक

0: जानकारी हमारे लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। साथ ही प्रेरणादायी कहानी दोस्त की पहचान ने सच्ची मित्रता के गुणों को समझने की महत्वपूर्ण सीख हमें दी। ऐसे रोचक शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कार्यक्रमों की भविष्य में भी आपसे अपेक्षा है। आपके उत्कृष्ट प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद।
1: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी लिखते हैं।
0: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। समावेशी शिक्षा पर प्रोफेसर भारती जी द्वारा दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी महत्वपूर्ण थी। साथ ही गुजरे सप्ताह शीत मरुस्थल पर बेहद शानदार जानकारी दी गई। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी को हमारे बच्चों ने छुट्टियों में बड़े ध्यान और लगन से सुना और वे इस पर अमल भी कर रहे हैं, इसलिए हम उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम का हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: हम भी आपका हृदय से शुक्रिया अदा करते हैं संदेश भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा जी का।
1: ग्राम बंगला माटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
0: आप सभी श्रोताओं को हमारी ओर से आभार खूबसूरत संदेशों को भेजने के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी बहुमूल्य खनिज सोने के बारे में
1: और अब चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं एक और खनिज के बारे में। तो अजीत जी, जरा उस खनिज का नाम तो बताइए।
0: जी विमलेश जी, वो तो बताऊंगा लेकिन इस बार कुछ हिंट के साथ।
1: तो दीजिए हिंट।
0: हिंट है, ये खनिज सोने से भी अधिक मूल्यवान माना जाता है। इसकी चमक अत्यंत आकर्षक है
1: जी।
0: इसे तराशा जाता है और हाँ, ये कांच काटने के काम भी आता है।
1: जी जी जी, मैं समझ गई, ये कहीं हीरा तो नहीं?
0: बिल्कुल सही जवाब। जी हाँ श्रोताओ, ये हीरा है। ये खनिज पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी प्राकृतिक पदार्थ से अधिक कठोर है। हीरे के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि कितने लोग ये जानते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आइए देते हैं इस रोचक चर्चा को विस्तार।
1: श्रोताओ, हीरे का निर्माण होता है पृथ्वी की गहराइयों में। अगर आप पूछें कि कितनी गहराइयों में, तो हम आपको बता दें कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर नीचे पृथ्वी की परत मेंटल में बनता है।
0: आपको हम ये भी बता दें कि कोयला और हीरा दोनों ही मुख्य रूप से कार्बन से बने होते हैं
1: जी,
0: लेकिन हीरा बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
1: श्रोताओ, जैसा कि अभी हमने सुना था कि पृथ्वी की सतह से लगभग 150 किलोमीटर से भी अधिक गहराई में बनता है, आइए जानते हैं क्या होता है उन गहराइयों में।
0: श्रोताओ, पृथ्वी की गहराइयों में लगभग तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और वहाँ का
1: एक चमत्कार है
0: जी। तो श्रोताओ, ये थी जानकारी हीरे की। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, डायमंड सीड किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डायमंड सीड किसे कहते हैं?
0: आप हमारे प्रश्नों के उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा पशु पक्षियों के प्रति दया और प्रेम भाव रखने का संदेश दिया गया है।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो उस पेड़ पर, कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो, उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं।

0: और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
1: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
0: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है?
2: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
0: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारे ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
1: हाँ मित्र, अभी जाता हूँ।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
4: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ,
5: कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है।
4: तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है।
5: ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
0: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
4: तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।
0: क्यों दे दो?
4: क्यों दे दो, ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है। भाई इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
0: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
4: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
3: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
6: महाराज की जय हो,
7: महाराज की जय हो,
8: महाराज की जय हो।
3: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त

0: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
1: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
0: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
0: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
2: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
1: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
2: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
0: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
3: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
0: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे आज्ञा है?
3: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
4: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
5: ये हंस कैसे बताएगा?
6: सिद्धार्थ को मिलना चाहिए।
3: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
7: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
4: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
3: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
2: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
4: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।
0: स्वयं इस पक्षी ने अपना निर्णय बता दिया है। हमने सुना था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज साक्षात देख भी लिया। मैं हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि ये हंस युवराज सिद्धार्थ का ही है।
8: महाराज की जय हो।
9: महाराज की जय हो।
10: महाराज की जय हो।
11: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम न्याय। साथियों, इस कार्यक्रम में आपने दो शब्द सुने। पहला शब्द था नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला।

0: और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय।
1: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलड़ू मैं, चंचलू मैं, जल्दी सीख भी जाती।

0: तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हमारा आदित्य।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें भारत के सौर मिशन की विस्तार से जानकारी दी गई है।
3: 5 4 3 2 1 0

0: दिन था 2 सितंबर 2023, स्थान इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, समय भारतीय समय अनुसार ठीक 11:50, जब अंतरिक्ष यान आदित्य L1 की गगनभेदी गर्जना से आकाश गूंज उठा। लाखों करोड़ों लोगों ने सारी दुनिया में इस दृश्य को टेलीविजन पर देखा।
1: श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 इसरो के पहले सूर्य मिशन को लॉन्च कर दिया गया।
0: रेडियो पर समाचार प्रसारित हुए और दूसरे दिन के सभी अखबारों ने इसे अपने मुख पृष्ठ पर प्रमुखता से छापा। शीर्षक था, आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत विश्व की चौथी महाशक्ति बना। आज कक्षा में बड़े उत्साह का वातावरण।

0: आमंत्रण है, क्योंकि विद्यालय के विशेष निमंत्रण पर आज जाने माने स्पेस जर्नलिस्ट श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं, जो सौर्य यान आदित्य के बारे में बातचीत करेंगे।
1: क्या तुम्हें पता है कि श्री विनीत चरण जी आने वाले हैं?
2: क्या वो चंद्रयान के बारे में बात करेंगे?
1: मुझे लगता है वो आदित्य यान के बारे में बात करेंगे।
2: चलो देखते हैं वो किस यान के बारे में बात करेंगे।
3: हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब?
4: हम अच्छे हैं।
3: तो बच्चों, शुरू करते हैं बातचीत। आप तैयार हैं?
4: जी हम तैयार हैं।
3: तो आज हम बातचीत करने जा रहे हैं भारत के सौर्य यान आदित्य L1 के बारे में।
4: आदित्य L1 के बारे में?
5: बच्चों शांत हो जाओ, आप बारी बारी सर से सवाल पूछ सकते हैं।
2: सर, इसका नाम आदित्य क्यों पड़ा?
3: बहुत अच्छा सवाल। देखो, आदित्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है सूरज यानी सूर्य। अच्छा चलो बताओ, सूर्य के लिए और कौन कौन से शब्द हैं?
1: सर, टीचर ने बताया था कि सूर्य को रवि और भास्कर भी कहते हैं।
3: बहुत अच्छे। चलो अब मेरी ओर से एक खास सवाल। अच्छा तो अब ये बताओ कि क्या तुमने किसी वैज्ञानिक का नाम सुना है जिनके नाम में भास्कर शब्द जुड़ा है?
2: जी सर, उनका नाम है भास्कराचार्य।
3: अरे वाह, तुम्हारा क्या नाम है बेटी?
2: जी, मेरा नाम श्रुति है।
3: शाबाश श्रुति। तुम्हें बता दूं कि भास्कराचार्य प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। हाँ तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की। क्या आप जानते हैं कि सूर्य क्या है? मेरा मतलब है कि सूर्य ग्रह है या तारा है?
6: सूर्य ग्रह है या तारा?
3: अरे सोचो सोचो, जो जवाब देगा या प्रश्न पूछेगा वो सबसे पहले अपना नाम बताएगा।
2: सर, मेरा नाम सुमित है। सूर्य एक ग्रह है।
3: सुमित, तुमसे जरा सी भूल हो गई। सूर्य असल में एक तारा है।
4: अच्छा सर।
1: सर, मेरा नाम सोहम है। मेरा प्रश्न यह है कि सूर्य इतनी गर्मी कैसे देता है? क्या वहाँ आग जलती है?
2: और अगर जलती है तो वहाँ आग किसने लगाई होगी?
3: बच्चों, दरअसल सूर्य में गर्मी आग जलने से नहीं होती। सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन।
1: हीलियम और हाइड्रोजन सर?
3: हाँ, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है।
1: विशाल गैसों का गोला? अब समझ आया कि सूर्य इतना गर्म कैसे होता है।
3: शाबाश, समझ गए ना?
4: जी सर।
2: सर, जिस तरह से चंद्रमा पर जाया जा सकता है, क्या उसी प्रकार सूर्य पर भी जाया जा सकता है?
3: बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, सूर्य का तापमान इतना अधिक है कि वहाँ चंद्रमा की तरह नहीं जाया जा सकता। हाँ, एक निश्चित दूरी से सूर्य का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए तो हमारे देश ने सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 को अंतरिक्ष में भेजा।
1: सर, आदित्य अंतरिक्ष यान के बारे में हमें विस्तार से बताइए ना।
3: जरूर बच्चों। देखो, आदित्य L1 चंद्रयान की तरह ही एक यान है जिसका कार्य है सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना।
4: जी सर।
3: जैसे ये किस समय कैसा होता है, इसका तापमान स्थिर रहता है या घटता बढ़ता है, और इसका क्या प्रभाव हमारी पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य ग्रहों पर पड़ता है।
2: सर, हमने आपके लेख में ही पढ़ा है कि आदित्य यान ने सूर्य के कई फोटोज पृथ्वी पर भेजे हैं।
3: हाँ सही कहा, आदित्य यान का मुख्य उद्देश्य सूर्य की बाहरी परतों का अध्ययन करना है। इन तस्वीरों से हमें तूफानों और अंतरिक्ष के मौसम की बेहतर जानकारी मिलेगी, जिससे भविष्य में संचार और उपग्रह सेवाओं को सुरक्षित रखने में हमें बड़ी मदद मिलेगी।
1: सर, मेरा नाम दिवाकर है।
3: भाई वाह, दिवाकर का मतलब भी तो सूर्य ही।

0: होता है ना?
1: जी सर।
0: जी दिवाकर, आपका प्रश्न क्या है?
2: सर, मेरा प्रश्न है, यदि सूर्य इतना गर्म है तो आदित्य यान उसके पास जाकर तस्वीरें कैसे भेज रहा है? क्या वो जल नहीं जाएगा?
3: अरे भला जलेगा कैसे, आदित्य यान सूर्य से एक सुरक्षित दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूर, समझे?
4: जी सर। सर, आदित्य यान का पूरा नाम आदित्य L1 क्यों है? L1 का क्या मतलब है?
0: देखो बेटी, L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। ये बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। इस स्थान से सूर्य को लगातार बिना किसी रुकावट के देखा जा सकता है, और ये देखा गया है कि अंतरिक्ष यान लगभग स्थिर रहता है। लैग्रेंज बिंदु 1 से 5 तक होते हैं।
2: सर, एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा था तो हमें विशेष प्रकार की किट दी गई थी और कहा गया था कि इसी किट के द्वारा सूर्य को देखें। ऐसा क्यों?
0: बेटा सोहम, सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही नहीं, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष आंखों से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन आदित्य यान ने जो तस्वीरें हमें भेजी हैं, उन्हें देखकर हमें पता चलता है कि सचमुच कितना अद्भुत है हमारा सूर्य।
4: सर, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी बड़े होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी, चंद्रमा और दूर दूर के तारों के बारे में पढ़ूंगी और अंतरिक्ष यान भी भेजूंगी।
0: शाबाश बच्चों, शाबाश। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, और देश का नाम हमेशा रोशन करो।
5: तो साथियों, अभी आपने सुनी जानकारी L1 यानी आदित्य यान के बारे में। कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ये भी पता लगाइए कि और कौन कौन से यान अंतरिक्ष में भारत द्वारा भेजे गए हैं।
6: हमारा आदित्य, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग।
9: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
10: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
9: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
10: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
9: डायल कीजिए 8700014242।
10: नंबर एक बार फिर नोट करें, 8700014242।
11: FM बैंड 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। दोस्तों, अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम NCERT एपिसोड 1319। आइए अब सुनते हैं विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम रंग तरंग।

जुबिन नौटियाल की आवाज में आपने सुना ये गाना। गुरप्रीत सैनी के बोल थे, रोचक कोहली का संगीत था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दिलराज कौर की आवाज, मोहसिन नकवी का कलाम।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

समाचार के साथ मैं कनकलता।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री ताकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। श्री हरीश ने कहा कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार होता रहा है और इसलिए मानता है कि आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने

0: कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस से भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलमैंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

अभी आपने सुना यादव की बारात फिल्म का गाना किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और राहुल देव बर्मन का संगीत। और अब सुनते हैं फिल्म उमर कैद का ये गाना, लता मंगेशकर मुकेश का गाया हुआ, गुलशन बाबरा का गीत, सोनी ओमी का संगीत।

0: फिल्म सावन का ये गाना सुन रहे थे जिसे लिखा था असद भोपाली ने, धुन बनाई थी हंसराज बहल ने, आवाज थी लता मंगेशकर की।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45

0: मिनट सिर्फ विविध भारती पर।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। गीत लिखा है गुलजार ने, धुन बनाई है खयाम ने।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आप सुन रहे थे वारिस फिल्म का ये गाना। वर्मा मलिक के बोल, उत्तम जगदीश का संगीत था। और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म सौदागर का ये गाना।

0: के हर पल।
1: आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में फिल्म फांसी का ये गाना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

योगेश की शब्द रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत, किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना फिल्म मिली का ये गाना। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म राजपूत का गीत, किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

जावेद अख्तर के बोल हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत, फिल्म मशाल का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। ये थी आज की यादों के महफिल की अंतिम प्रस्तुति। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध।

आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में जो इबारत हमने फेसबुक पर पोस्ट की है वो आपने पढ़ी और बहुत सारे संदेश भेजे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ी है उनके लिए हम एक बार यहाँ पढ़ देते हैं। खिलते नगमों की कलियां चुनने वाली दिलकश बहार का मौसम, 100 सालों से बंधन अनजाना बांध के चलने का मौसम। ये कहता है दिल थाम लोगर, रंग साथ अभी खिल जाएंगे, बन सुगंध सुमन मिल जाओ तो सब एक ताल बंध जाएंगे। रजनी गंधा संग खिलता मन, बांधे अनजाना सा बंधन, ये मौसम धीरे धीरे से जीवन में घुल मिल जाता है, पर जाता है तो बीते लम्हों की कसक छोड़ कर जाता है। तो ये है आज की इबारत, और इस इबारत को लेकर बहुत सारे गानों के बारे में भी आपने कहा है, तो बस ये देखना है कि आज जो गाने प्ले

0: होने वाले हैं उनसे आपकी लिस्ट कितनी मैच कर रही है हमें जरूर बताइएगा। हो सकता है कि आपने अभी अभी जो गाना सोचा हो वो हमारी इस लिस्ट में हो, तो अगर अभी भी कोई दिमाग में गाना आ रहा हो तो जल्दी से हमें बताएं। बहरहाल आज मौसम को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं और हमारे श्रोताओं ने भी मौसम के बारे में कई संदेश भेजे हैं। एक संदेश में कहा है कि एक हम है जो उदास होकर चुपचाप अपने काम कर रहे हैं और आप कितनी प्यारी सी इबारत लेकर आई हैं, जबकि हम जानते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। कितना प्यारा मौसम और प्यारा सा विविध भारती का साथ, फिर भी ना जाने क्यों ये दिल बार बार उदास हो जाता है, पर हमने अपने दिल से कह दिया कि हमें मुस्कुराना है और हमें उदासी दूर होती नजर आई और हम हो गए शामिल सुरीरा सफर में। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे लिखती है कि आपकी इबारत में हमें फूल और कलियां नजर आई, तो हमने अपने गमले में एक बात नोटिस की, 3 दिन से एक हिबिस्कस यानी गुड़हल के एक पौधे में 3 दिन से 3-3 फूल खिल रहे हैं। आज तीसरा दिन है और कल चौथे दिन के लिए भी उसमें 3 कलियां हैं। इन छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान नहीं जाता, पर कभी कभी ये सब देखना भी अच्छा होता है क्योंकि इस बहाने हम प्रकृति से जुड़ते हैं और फिर ये पौधे तो कितनी खुशियां देते हैं हमको। बहुत सुंदर बात कही आपने और संदेशों में बहुत सारी बातों के साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस कार्यक्रम में विविध भारती और उसके श्रोता साथ साथ मिलकर चलते हैं, तो मौसम के साथ सजन का लुत्फ ही कुछ और है। न जाने कितनी गीत कविताएं इनके सानिध्य में परवान चढ़ी हैं। कवि और गीतकारों की कलम का जादू जब कोरे कागज पर उतरता है तो सावन भादो बरखा पतझड़ हर मौसम के गीत बन जाते हैं। मौसम जीवन में वो सब अनुभूतियां देता है जिसे हम खुशी का नाम दे सकते हैं। शायर बशीर बद्र के माध्यम से कहें तो, अजब मौसम है मेरे हर कदम पर फूल रखता है, मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है। बहुत सुंदर। तो मौसम की इतनी बातें हो गई हैं, तो क्यों ना उन सभी गीतों पर एक नजर डालते चलें जो कि आपकी पसंद है। एक एक कर उनकी एक झलक सुनते जाते हैं।
1: झूमता मौसम मस्त महीना। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम यादों की महफिल। अब से चंद लम्हों के बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा करें, बस चंद पल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। यह योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। योजना में आंशिक निकासी के नियमों को भी अद्यतन किया गया है। योजना में पारदर्शिता में सुधार और भविष्य निधि प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, ऑनलाइन दावों, ई पासबुक और यूनिवर्सल खाता संख्या से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

0: ए श्रीनिवास ने सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने संबंधी खबर को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करना व किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल होने से रोकना है। उन्होंने बताया कि 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक चल रहे गणना चरण के दौरान प्रत्येक वर्तमान मतदाता को बूथ लेवल अधिकारी द्वारा गणना प्रपत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान मतदाता हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र जमा करेंगे और उनका नाम बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज की मांग किए प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं होंगे उनके संबंध में बीएलओ स्थानीय जांच के आधार पर अनुपस्थिति, स्थानांतरण, मृत्यु जैसे संभावित कारण अनुसार डुप्लीकेट सूची तैयार करेगा। इस सूची पर बूथ लेवल अधिकारियों एवं राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट की बैठक आयोजित की जाएगी तथा सूची को संबंधित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड एवं विभागीय वेबसाइट पर भी जारी किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित एचटेट की परीक्षा संयुक्त योग्यता परीक्षा की तर्ज पर पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एचटेट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की गई है और अधिकारियों को परीक्षा के लिए केंद्रों पर सभी पुख्ता प्रबंध करने को कहा गया है ताकि किसी भी परीक्षार्थी को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि यदि किसी परीक्षार्थी को केंद्र में निर्धारित समय पर पहुंचने में कोई दिक्कत आती है तो वह डायल 112 पर कॉल कर सूचित करें, पुलिस उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहेगी। सुचारू ढंग से परीक्षा संपन्न करवाने के लिए बोर्ड मुख्यालय पर नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। इसके अलावा जिला एवं मुख्यालय स्तर पर भी उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लगाने और परीक्षा प्रारंभ होने से 3 घंटे पूर्व आसपास फोटोस्टेट की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रखे जाने की हिदायत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों के परीक्षार्थियों के केंद्र दूसरे जिलों में बने हैं उनके लिए परिवहन विभाग को निर्धारित रूट पर चलने वाली बसों के अलावा परीक्षा के समय अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहादुरगढ़ तथा महेंद्रगढ़ में ही उपमंडल स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। गौरतलब है कि बोर्ड द्वारा यह परीक्षा 4 व 5 जुलाई को 3 चरणों में ली जाएगी। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 2 दिनों में दक्षिण और पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में पहुंचने की संभावना है। इस बीच चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में रात और आज सुबह कई जगह पर बारिश हुई है। मौसम विभाग के चंडीगढ़ केंद्र के अनुसार 7 जुलाई तक दोनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। आज जीएसटी दिवस के अवसर पर फरीदाबाद में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर सीजीएसटी आयुक्तालय द्वारा एक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कर अनुपालन, समय पर कर भुगतान तथा राजस्व संवर्धन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले करदाताओं को सम्मानित किया गया। सीजीएसटी फरीदाबाद के आयुक्त रियाज अहमद ने व्यापार एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए विभाग पारदर्शी, सरल और करदाता अनुकूल प्रशासन के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से। आइए अब आपको ले चलते हैं विविध भारती के मुंबई केंद्र।
2: आज जो है वो कल नहीं रहेगा और जो कल है वो परसों नहीं रहेगा, यानी निरंतर बदलाव की ओर भी संकेत करता है मौसम और ये भी बताता है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। तो चलिए अब अगले गाने की तरफ बढ़े, लेकिन उससे पहले ये संदेश है। एक श्रोता ने कहा है कि आज की ये कविता में इबारत जीवन के उस सुखद दौर का उत्सव है जो आते ही चारों तरफ सकारात्मकता बिखेर देता है लेकिन जाते जाते हमें यादों के साए में छोड़ जाता है। ये पद हमें याद दिलाता है कि जीवन में अच्छे दिन या खूबसूरत लम्हे हमेशा नहीं ठहरते। उनका आना जितना सुखद होता है उनका जाना उतना ही भावुक कर देने वाला होता है। कविता में प्रकृति के मौसम को मानवीय भावनाओं, विशेषकर प्रेम और विरह से बेहद खूबसूरती से जोड़ा गया है। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम अपने साथ बहुत से परिवर्तन लेकर आता है जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा देता है। जब चारों तरफ फूलों की सुगंध और हरियाली बिखरी होती है, तब हम भी मन से इसमें घुल मिल जाते हैं। पर प्रकृति हमें समय समय पर अपने नए नए रूप से अवगत कराती रहती है और हमें ये संदेश देती है कि हर मौसम कुछ समय के लिए आता है, इसके बाद फिर परिवर्तन है और इसमें हमें अपने आप को ढालना है। हर मौसम हमें कुछ देकर जाता है, इसकी यादें हमारे मन मस्तिष्क पर छा जाती हैं। बहुत सुंदर।

का ये सम्मिलित स्पर्श जीवन के उन अनमोल क्षणों का स्मरण कराता है जहां सुख किसी बड़े उत्सव में नहीं बल्कि प्रकृति की सहज छटा में छिपा होता है। जब चारों ओर सृष्टि अपने सौंदर्य का संगीत बिखेरती है तब मन भी अनायास ही भावों के सुर छेड़ देता है और जीवन एक मधुर गीत सा प्रतीत होने लगता है। बहुत सुंदर बात कही। तो चलिए इसी बात पर एक सुंदर सा गीत आपको बताना है कि फिल्म का संगीत किन्होंने दिया था और प्रमुख भूमिकाएं किन्होंने निभाई थी।

देवानंद और आशा पारेख ने जब प्यार किसी से होता है फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद जवाब के लिए। लेकिन हमने संगीतकार का नाम भी पूछा था, शंकर जयकिशन का संगीत था इस फिल्म में। और हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम बादलों बयारों और बौछारों का है, भीगने का है, यादों की रिमझिम बूंदों की जुगलगंदी में जुगलबंदी में कुछ गुनगुनाने का है। जिस तरह पावस के बादल धरती का मैल धोकर उसे उजला कर देते हैं, उसी तरह हमारे मन की परतों पर ठहरा आपाधापी अशांति और बेचैनी का गुबार भी बौछारों से धुलकर उज्जवल हो सकता है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि भाई मौसम की बहुत बातें हो रही हैं और बारिश डर डर कर आ रही है। तो यकीन मानिए कि बारिश को हम बुला रहे हैं, बल्कि डर नहीं रही है बल्कि आने के लिए मजबूर होती जा रही है, और बारिश जल्द ही आ जाए हम तो यही दुआ करेंगे। एक और श्रोता ने बताया है कि वो आज शिमला में मौसम बहुत अच्छा हो गया है और मेलोडियस सॉन्ग सुनते

हुए, बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे श्रोताओं के इन संदेशों के साथ ही साथ मौसम की जो बातें चलती जा रही हैं, उनमें बहुत सुंदर तरीके से गीतों की इबारत पिरोई है हमारे एक श्रोता ने। लिखते हैं कि हे विविध भारती, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, सालों पुराना, मैंने नहीं जाना, तुमने नहीं जाना। 100 साल पहले तो नहीं, 66 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो आओ मिल जाएं हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाएं चलो हवा के संग, प्रसारण तरंगों की तरह। क्या बात है, पिछले 3 दिनों से मौसम ने भी करवट ली है। भीगा भीगा दिनों, भीगा भीगा प्यार का समय है, सुहाना सुहाना बरसात के नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। बीते हुए लम्हों की कसक याद करते हुए तड़प ये दिन रात की, कसक ये जिन बिन बात की। हे विविध भारती, तुझे सुनने का भला ये रोग है कैसा, आप तो बता दे। भाई रोग तो नहीं है, तो आपकी बातों से लगता है कि किसी मर्ज का इलाज है। विविध भारती सुनना, हमने सही कहा ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मौसम का मिजाज समय अनुसार बदलता जाता है और इसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेता है। बहारों का मौसम रंग बिरंगे फूल और सुगंध मन मस्तिष्क में घुल जाता है, धीरे धीरे ये बंधन दूर चला जाता है और उन लम्हों को याद करते रह जाते हैं। तो याद की बात हुई है, अब इस गीत को जरा सुनते हैं। आप हमें ये बताइए कि इस फिल्म में जो प्रमुख कलाकार हैं उनके नाम क्या थे?

जवाब मिला वासु की भूमिका कमल हासन ने निभाई थी और सपना बनी थी रति अग्निहोत्री। फिल्म एक दूजे के लिए का ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत। कितनी खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं आनंद बख्शी साहब ने, दुनिया में प्यार की एक ही बोली। तो बताइए कि इस एक ही बोली के साथ साथ कितने सारे गीत बनते चले जाते हैं, और वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज्यादा मन को लुभाता है? बताइए हमें कि इस भाव के साथ लिखा गया वो कौन सा गीत है जो आपको सबसे ज्यादा लुभाता है। हमारे श्रोताओं के कुछ संदेश हैं। मन किसी गीत नगमे की तरह खिल रहा है और किसी खास इंसान, अनजाना रिश्ते की तरफ, अपने भीतर छिपे किसी एहसास की तरफ आकर्षित हो रहा है। ये मौसम की नायत भी हो सकती है और प्यार का एहसास भी। हमारे एक श्रोता ने बताया कि सुरीला सफर शुरू होते ही बनारस में बारिश शुरू हो गई। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई बारिश की, ये मौसम की पहली बारिश, बहुत बहुत मुबारक। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज तो सुरीला सफर में शायद विवाह की बात होगी। एक ऐसा रिश्ता अनजान होते हुए भी एक दूसरे को सब कुछ सौंप देना, प्यार की असीम खुशी के साथ जीवन जीने की इच्छा और सात जन्म तक साथ निभाने का वादा करना ही जीवन है। एक और श्रोता ने कहा है कि कहा जाता है कि बंधनों के कई रूप होते हैं, सात फेरों का बंधन, सात जन्मों का बंधन, जन्म जन्मांतर का बंधन, परंतु एक बंधन और हो भी होता है, मन से मन का। बहुत सुंदर। रेशम सा कोमल, बहते हुए नीर सा पवित्र, हवाओं में खुली हुई चंदन और फूलों की महक सा, जो मन से मन की डोर को बांध कर रखता है। जब ये बंधन बनता है तो एक चुप सा मौन सा बन जाता है। यहाँ दिव्य प्रेम की अनुभूति होने लगती है, जिसमें किसी अग्नि साक्षी, किसी हवन, यहाँ तक कि किसी सात वचन की भी कोई भूमिका नहीं है। यहाँ जो प्रेम डोर में बंधन होता है, उसे आपस में केवल मन से मन को एक मौन ने स्वीकार किया है। न बांधने की चाहत, न छूटने का डर, क्योंकि ये है मन से मन का बंधन। बहुत सुंदर बात कही आपने। और अब अगला गीत सुन रहे हैं, सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के संगीतकार कौन है। और हाँ, मौसम को लेकर जो प्यार की बोली की बात है, उसमें आपको सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, मन के करीब गाना कौन सा लगता है?

धरती पे वहाँ एक अब्र जवां, देखो तो जरा क्यों झुकने लगा, ओ हो, और देख के ये क्यों दिल अपना कुछ घटने लगा, कुछ रुकने लगा। मौसम की शरारत का मंजर कोई देखे, कोई देखे, दिल थाम चले हम

इकबाल कुरैशी का संगीत था इस फिल्म में लव इन शिमला का। ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। और हमने जो गानों के का जिक्र किया था कि ऐसे दिल के बोल, दिल की प्यार की बोली बोलने वाले कौन से गाने आपको पसंद हैं, तो हमारे श्रोताओं ने कई गाने, बड़े सुंदर सुंदर गाने लिख भेजे हैं। मीठे बोल बोले बोले पायलिया, और पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, रफी जी सुमन जी शगुन फिल्म का गाना, और एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आना तो आके कभी अब जाना नहीं। एक श्रोता लिख रही है कि बाहर बरसात हो रही है और रेडियो सेट पर गानों की क्या बात है। एक और श्रोता ने बताया नजरों से कह दो प्यार में मिलने का मौसम आ गया। एक श्रोता पूछ रहे हैं कि रुम्बा कहाँ की भाषा है, इसका क्या मतलब है जी। तो अच्छा होगा कि हमारे जो कोई दक्षिण भारतीय साथी इस समय हो फेसबुक पर वो बताएं। एक बड़ा खूबसूरत सा गाना हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है, अरे ओ शोक कलियों मुस्कुरा देना, जो वो जब आए सुनो फूलों महक अपनी लुटा देना, वो जब आए। फिल्म जब याद किसी की आती है का ये बड़ा ही सुंदर सा गीत इन्होंने हमारे साथ साझा किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता बता रहे हैं कि फिल्म एक दूजे के लिए मैंने 1982 में पहला मैटनी शो देखा था, उस समय मैं फोर्थ ईयर कॉलेज में था। इस फिल्म ने सभी को पागल बना दिया था। और बहुत सारे संदेश और भी हैं। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मौसम अंगड़ाई में गदराई वसुधा के रूप सौंदर्य से बौराए आशिक मिजाजी दीवानगी को और भी दहनशील बनाती इबारत है, सुमन सुगंध व्याप्त कुसुम दल के मधुरस पान कराती और प्रेम रस बिखेरती इबारत में दीवानगी की हदें पार हो जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक और श्रोता ने कहा है कि प्रकृति का सौंदर्य फूलों की मुस्कान एवं भीनी खुशबू और मौसम का मनमोहक मिजाज आपस में मिलकर एक ऐसी जीवंत कविता रचते हैं जो तन और मन को गहराई से भिगो देती है। ये वो त्रिवेणी है जहां हर एक तत्व दूसरे का पूरक बनकर इस धरा को स्वर्ग जैसा अनुभव कराता है। सौंदर्य सुगंध और मौसम के संगम का सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्या बात कही है, बदलते मौसम के साथ प्रकृति का मिजाज भी बदलता है। आसमान में तैरते बादलों की लुका छिपी कभी रिमझिम फुहारें और क्षितिज पर बिखरती सूर्य की किरणें ऐसा समा बांधती हैं कि प्रकृति का हर कण जीवंत होता है, जो आसमान के साथ जीवन में भी सतरंगी इंद्रधनुष रच देता है। तो बताइए कि ये जो इंद्रधनुष रचता है सतरंगी आसमान में बारिश के दिनों में, उस इंद्रधनुष के साथ रंगों का प्रयोग इस गाने में तो हो ही रहा है जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, और कहां कहां पर होता है, और क्या आज भी आप वैसे ही ललक कर इंद्रधनुष देखने छत पर जाते हैं या बाहर निकलते हैं जैसे बचपन में जाया करते थे?

सलील चौधरी का संगीतबद्ध किया हुआ ये सुरीला सा गाना आनंद फिल्म से मुकेश की आवाज में आपने सुना और बहुत सारे श्रोताओं ने बताया वो गाना जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, ये भी मुझे पसंद है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि इस मौसम का सबसे बेहतरीन सुंदर गीत जो मेरा और विविध भारती का पेटेंट परमानेंट गीत है, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन। इस गीत का फिल्म का नाम मैंने विविध भारती रखा है, वैसे इस फिल्म का नाम है मंजिल। क्या बात है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रफी साहब की आवाज है ये तो पहचाने, इन्होंने शायद लव इन शिमला फिल्म के उस गाने की बात की है। कहा बात इसी गाने के लिए हमारे एक और श्रोता ने बताया है कि इस गाने में इलेक्ट्रिकल हवाईयन गिटार स्वर्गीय सरदार हजारा सिंह जी द्वारा बजाया गया है और बड़ा प्यारा गीत।

दिल थाम चले हाँ, जब भी बारिश होती है तो पहले ये गाना होठों पर तैर जाता है, बरखा रानी जरा जम के बरसो। और ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का समा, ये गाना बहुत पसंद है हमारे एक और श्रोता को। मौसम आधारित गीतों में सबसे ज्यादा पसंद है ये गाना हमारे एक और श्रोता को, मौसम मौसम ये लवली मौसम। और दूसरा लोफर का आज मौसम बड़ा बेईमान है। और हमारे कुछ श्रोताओं ने दिल थाम चले गीत के बारे में बताया है कि बहुत ही रोमांटिक गाना है। एक श्रोता बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा लुभाने वाला फिल्म गीत है तीसरी कसम का, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। और ये एक और श्रोता ने कहा है कि इस गीत के बारे में केवल ये पता है कि रफी साहब गा रहे हैं। तो चलिए, हमारे जिन श्रोताओं को पता है कि इस फिल्म में रफी साहब की गीत के इस आवाज को पर्दे पर कौन अपने होठ हिला रहे हैं, तो अगर आपको पता हो तो हमें जरूर लिख भेजें। एक और श्रोता ने केदारनाथ फिल्म के गाने का जिक्र किया है, काफिराना सा है इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, बहुत सुंदर गाना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, ये इनका गाना बहुत इन्हें प्रिय है। तमिल भाषा का शब्द है रुम्बा, हमारे एक श्रोता ने बताया है। और एक और श्रोता कह रही है कि आपकी दुआ का असर हुआ है, कल बनारस में रात को एक घंटा रिमझिम बारिश हुई थी, हमारे सभी पेड़ पौधे बारिश के पानी से भीग गया था, जैसे खिल गया सब पेड़ पौधे, बनारस में मौसम सहनीय हो गया है, आपको ढेर सारा शुभेच्छा। आप नहीं वर्षा के बाशिंदों को दुआ भेजिए जी, जरूर वहां बारिश होगा। क्या बात है भाई, हम तो बिल्कुल भेज रहे हैं अपने उन सभी श्रोताओं के लिए, ठंडे ठंडे बादल वहां तक पहुंचे। और अब ये गाना आप सबके लिए, जरा इस गीत को सुनिए, फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम बताइए।

इंद्रधनुष को लेकर हमने जो सवाल पूछा था उसके जवाब कई देखने को मिले। इंद्रधनुष को देखना अच्छा लगता है बचपन में भी और अब भी, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और एक और श्रोता ने बताया कि मैं अमेरिका के नियाग्रा फॉल देखने गई थी, वहां मैंने एक ही जगह पर ही छोटे छोटे बहुत से इंद्रधनुष हर थोड़ी थोड़ी दूर पर देखे जो बहुत अजूबे से लगे। वाकई हम तो सोच रहे हैं कि क्या नजारा होगा वो। एक और श्रोता ने कहा है कि असल जिंदगी में मुंबई में इंद्रधनुष नहीं दिखता। आज का प्रोग्राम मुझे प्रोत्साहित कर रहा है कि मुंबई से बाहर जाके इंद्रधनुष देखूं। क्या बात है। एक और श्रोता ने कहा है कि इंद्रधनुष जब भी बादलों से झांकता था हम रंग गिनने लग जाते थे, शहरों में कम दिखाई देता है, मिस यू। सच में इंद्रधनुष जब भी दिखता है तो लगता है वाह वो दिन लौट आए। एक और श्रोता ने कहा है कि हम तो अभी भी इंद्रधनुष उतनी ही ललक के साथ देखते हैं, और एक बार तो दो एक साथ इंद्रधनुष निकले थे तो इच्छा भी मांग ली। हाँ ये टोटका तो बहुत ही ज्यादा कारगर होता था, और कितना इसको जो सबसे पक्की सहेलियां होती थी वो तुरंत दौड़कर बुला ले जाती थी कि चलो चलो दो इंद्रधनुष निकले हैं, जो मांगना है मांग लो। और बहुत बार मांगा जाता था कि भाई गणित का पर्चा बड़ा खराब होने वाला है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो वो उसमें अच्छे नंबर आ जाए, या कि हमें ये ड्रेस मिल जाए, कुछ इस तरह की ख्वाहिशें होती थी। आपने क्या कभी ऐसी कोई ख्वाहिश की है हमें जरूर बताइएगा। एक और श्रोता कह रहे हैं कि रुम्बा ये तमिल शब्द है, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत या बहुत ज्यादा। एक और श्रोता ने कहा है रंग तो जीवन शैली का अभिन्न अंग है, शिक्षा हो, सजावट हो, प्रकृति हो, विज्ञान हो या जीवन ही क्यों ना हो, ये सात रंग ही असली हैं, बाकी सब नकली है। बरसातों में दूर पहाड़ पर ये इंद्रधनुष मनमोहक होता है। और ये भी तो बताइए कि इन सात रंगों का, इन सात की ये गिनती जो है वो सुरों में भी इस्तेमाल होती है, सात सतरंगी सपने भी होते हैं और इंद्रधनुष तो होता ही होता है। एक श्रोता ने कहा है कि हमारी सगाई के बाद जब पारिवारिक फंक्शन में होने वाली धर्मपत्नी से मुलाकात हुई थी तो मौका देखकर अकेले में ये गीत गाकर सुनाया था, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, ये सुनकर वो मुस्कुराई, ये प्यार आज तक कायम है और अंतिम सांस तक रहेगा। वाह बहुत सुंदर बात। एक और श्रोता कह रहे हैं वाह बहुत सुंदर, मैंने तेरे लिए सात रंग के सपने, सुरीले सपने चुने, हर अंतरे में कई भावों को बांध कर दिल की बातें करता हुआ प्रतीत होता है, मुकेश जी की आवाज। और ये हमारे श्रोताओं ने कुछ संदेश में कहा है रजनीगंधा की बात। रजनीगंधा संग खिलता मन अक्सर किसी अनजाने से बंधन की महक से सराबोर हो जाता है। जिंदगी की आपाधापी में जब कोई खास करीब आता है तो भावनाएं धीरे धीरे से दिल में अपनी जगह बनाने लगती हैं। शुरुआत भले ही खामोश हो लेकिन जैसे ही दिलों के तार जुड़ते हैं जीवन के सारे सुर सुरमयी हो जाते हैं और बिखरे हुए जज्बात सिमट कर एक मुकम्मल ताल में बन जाते हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने। तो चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। इस गाने को सुनकर बताइए कि इस फिल्म में प्रमुख भूमिका में अभिनेत्री कौन थी। और साथ ही आपको ये भी बताना है कि ये जो फूल है रजनीगंधा, ये गुलदानों में बहुत लोकप्रिय होता है, या कभी हम जब किसी को बुके गिफ्ट करते हैं, आपको अपने फ्लावर वेज में कौन सा फूल सबसे सुंदर लगेगा? अगर आप किसी को देना चाहें या घर में सजाना चाहें, कौन सा फूल सबसे सुंदर लगता है?

पिछले गीत के सवाल का जवाब नजर आया। हमारे श्रोताओं ने बताया कि प्रेम गीत फिल्म के का जो गाना हमने सुनवाया था और पूछा था कि प्रमुख कलाकार कौन से हैं, राज बब्बर और अनीता राज पर फिल्माया गया है ये गाना और इनकी लिस्ट का ये पांचवा गीत शामिल हुआ, बहुत बहुत बधाई। और एक और श्रोता ने बताया कि जबलपुर का मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है, बरखा रानियां सुबह से ही बरस रही हैं, सुबह सुबह छत पर जाकर सूर्य नमस्कार करने की आदत है, आज जब छत पर गए तो रिमझिम फुहारों और फुहारों के साथ फूलों का झूमना, पंछी की मधुर आवाज दिल को अजीब सुकून दे रही थी, ये मंजर हमने वीडियो में कैद कर लिया है। आज की बारिश शायद ये कहना चाह रही है, रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, ये पल हमें याद आएंगे, मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना। अच्छा, इन्होंने कुछ और गीत भी बताए हैं, क्या मौसम है चल कहीं दूर निकल जाएं, हाँ ये भी बहुत सुंदर ही सा गीत है। एक श्रोता ने बताया कि बचपन में जब इंद्रधनुष दिख जाता था तो हम कुछ विश मांगते थे, और एक श्रोता ने कहा है कि वाह क्या सुंदर प्रश्न पूछा आपने, हम तो जब भी वर्षा ऋतु में मेघों का आगमन होता है तो मोबाइल लेकर छत पर चढ़ जाते हैं रूई जैसे सुंदर सुंदर मेघों की क्लिक्स लेने के लिए, खूब सारी क्लिक्स लेते हैं लेकिन फिर वापस भागना पड़ता है भीगने के डर से, स्वयं नहीं मोबाइल के, सच में मोबाइल बचाना बहुत जरूरी है इस मौसम में। एक और श्रोता कह रहे हैं जो हमने छोटे छोटे इंद्रधनुषों वाला एक संदेश पढ़ा था उसी से संबंधित है ये संदेश हमारी एक और श्रोता का, ये कहा है ये तो हमने भी देखा क्योंकि कनाडा और अमेरिका दोनों के बीच का नजारा ही है नियाग्रा फॉल्स पर, बड़ा ही प्यारा नजारा हम कभी नहीं भूल सकते, वो इतना प्यारा समा वो पल मानो हमारे दिल में सदा के लिए बस गया है। एक और श्रोता ने कहा है कि मौसम की बातें हो रही हैं तो आज सभी को गरजते बरसते बादलों का इंतजार है लेकिन कुदरत भी और इंतजार करा रही है, इंतजार के इस वक्त के लिए इनको गीत याद आया है कहां से आए बदरा, फिल्म चश्मे बदूर का गाना। और एक श्रोता कह रहे हैं कि भाई इंद्रधनुष प्रेमी इंद्रधनुष को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भली भांति देख सकते हैं और अपने अपने दुनिया को मुट्ठी में भरकर खुश हो सकते हैं। भाई ये कुछ मतलब ठीक है देख सकते हैं लेकिन देखने के साथ जो उसको एक

0: उल्लास जुड़ा रहता है, वो कैसे महसूस होगा। ये हमारी एक श्रोता ने मैसेज भेजा है कि आज कालिख वक्त एहसास और यादों के खूबसूरत ताने बाने को बुनता है। ये महज एक कुछ पंक्तियां नहीं बल्कि जिंदगी के सुरीले सफर का एक जीवंत दस्तावेज है। इसमें एक ऐसे रूमानी मौसम का जिक्र है जो अपने साथ सतरंगी ख्वाब लेकर आया है, जहां अनजाने रिश्ते भी सदियों पुराने लगते हैं। जैसे जैसे ही रजनी गंधा की भीमी खुशबू हवाओं में घुलती है, जिंदगी का हर बिखरा सुर एक मुकम्मल ताल बन जाता है। ये लम्हा भले ही हमेशा न ठहरे, पर जाते जाते दिल में ताउम्र मुस्कुराने वाली एक मीठी कसक छोड़ जाता है। सच में एक और श्रोता ने कहा है कि पुष्प बहार का सुहाना मौसम, सुगंधित फूलों की महक जीवन को खुशियां प्रदान कर रही है। सृष्टि देवता खिलकर प्रसन्नता से हंस रही है, मन भावन गीत तन्मयता से गुनगुना रही है। बिल्कुल बादल, बिजली, चंदन, पानी और सुमन सुगंध की तरह धीरे धीरे यह मस्ताना मौसम एक मीठी मीठी सी चुभन और ठंडी ठंडी सी अगन हमें अर्पित कर रहा है। सुरीले सफर में आज ऐसे ही कुछ मधुर गीत, और इन्होंने कुछ गीतों का भी जिक्र किया है। और बड़ी खुशी की बात है कि शुरुआत में भेजा हुआ संदेश, इसमें से कई गाने हमारी लिस्ट से मैच हो गए। एक और श्रोता ने कहा है कि कलियां और बहारों की तो बातें हैं, और रजनीगंधा फूल तुम्हारे यूं ही महके जीवन में, आओ मिल जाए हम सुमन और सुगंध की तरह, ये कुछ इन्होंने गीत लिखे हैं, तो चलिए ये गीत भी शामिल हो गए। और एक और श्रोता ने कहा है कि फूल और कलियों की बातों पर इन्होंने अपने चारों तरफ उन्हें खिलते हुए महसूस किया है। अब ये कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए, इस गीत को सुनिए, बताइए फिल्म का नाम और प्रमुख कलाकारों के नाम।
1: अभी अलविदा मत कहो।

रात होगी लेकिन यादों के ये चिराग जलते रहेंगे। हमारे श्रोताओं ने बताया निकाह फिल्म का ये गाना आपने सुना। महेंद्र कपूर की आवाज, हसन कमाल के बोल, रवि का संगीत, राज बब्बर और सलमा आगा की ये फिल्म। और बहुत सारे संदेश भेजे हैं उन फूलों के बारे में। हमारे एक श्रोता ने कहा है, रजनीगंधा तो सच में दिल से दिल की आवाज पहुंचाने का जरिया है। मानो हमारी गुरु स्वरूपा दीदी ने जब इतने प्यार से हमारे सत्संगी सखी के लिए रजनीगंधा फूलों का गुलदस्ता भेजा तो नेत्रहीन हो चुकी और डायलिसिस पर चल रही सखी फूलों को पाकर खुशी से झूम उठी और रजनीगंधा फूल तुम्हारे गीत गुनगुनाने लगी। उनकी खुशी देखकर हम सब भी खुशी से सारे दर्द भूल कर उनके साथ झूमने लगे। ये बदलाव पर व्यंग है जिसकी गिरफ्त में हम सभी प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का दंश झेल रहे हैं। हमारे एक और श्रोता ने कहा है, जो उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर देख सकते हैं और कर सकते हैं। और हमारे और श्रोताओं के भी संदेश हैं, लेकिन अब कार्यक्रम का वक्त हो रहा है। एक श्रोता कह रही है कि फ्लावर वास से ज्यादा हमको ये जो पेड़ों पर फूल अच्छे लगते हैं, पेड़ों पौधों पर अच्छे लगते हैं, क्योंकि फ्लावर वाज में ये जल्दी से मुरझा जाते हैं। हाँ, सच में मुरझा जाते हैं, लेकिन यादों की खुशबू कभी कम नहीं होती और कभी नहीं मुरझाते वो फूल जो मीठी मीठी बातों के साथ हमारे मन में यादों के रूप में सुरक्षित रहते हैं। इन्हीं बातों के साथ अब दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार दोस्तों, मान सम्मान, आदर किसी भी व्यक्ति, संस्था या वस्तु के प्रति सकारात्मक भावना या सम्मानपूर्ण व्यवहार होता है। ये किसी के अच्छे गुणों, योग्यताओं या उपलब्धियों के लिए प्रशंसा की भावना को व्यक्त करता है। हर एक मानव स्वभाव के लिए ये एक सार्वभौमिक या सर्वमान्य सच्चाई है कि हर व्यक्ति अपने लिए सम्मान और आदर की अपेक्षा रखता है। सम्मान पाने की ये लालसा किसी भी उम्र, लिंग या पद से परे होती है। सम्मान किसी स्वार्थ या मजबूरी से प्राप्त किया गया है तो ज्यादा नहीं टिक पाता, कभी ना कभी सच्चाई सामने आ ही जाती है। इसीलिए ये जान लें कि सच्चा सम्मान आपसी विश्वास और प्रेम से ही उपजता है। इस बुनियादी मानवीय मूल्य को समझने की बहुत आवश्यकता है। यदि सम्मान किसी भी व्यक्ति की उम्र, जाति, धर्म, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक या आर्थिक स्थिति की वजह से किया जा रहा है तो बस ये एक झूठ है या फिर छलावाई से समझ सकते हैं, क्योंकि सम्मान तो ऐसी हर स्थिति से परे मानवीय गरिमा की निशानी है।

सम्मान कोई खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं, बल्कि इंसान के कर्मों, विचारों और व्यवहार से कमाई गई सबसे बड़ी पूंजी है। ये ऐसा अनमोल उपहार है जो हम दूसरों को दे सकते हैं और बदले में हमें वही वापस भी मिलता है। विनम्रता और आदर के बिना सच्चा सम्मान कभी पाया नहीं जा सकता। हर व्यक्ति अपनी गरिमा और आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहता है और ये एक शाश्वत सत्य है। सम्मान एक दो तरफा प्रक्रिया है। वो इस तरह कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों से आदर की अपेक्षा करता है तो उसे खुद भी अन्य लोगों के विचारों, भावनाओं और सीमाओं को सम्मान देना होता है। बाहरी सम्मान की प्राप्ति के लिए हमें खुद की नजर में सम्मानित और आत्मविश्वासी होना जरूरी है। जो व्यक्ति खुद का मूल्य समझता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। अपने व्यक्तिगत जीवन या कार्य क्षेत्र में सम्मान पाने के लिए दूसरों को सम्मान देने की हमारी भावना बेहद जरूरी है।

0: करती है।
1: सम्मान की चाह मानव स्वभाव का एक अंतर्निहित हिस्सा है। हम दूसरों से सम्मान पाना तो चाहते हैं, तो सबसे पहले दूसरों के विचारों, सीमाओं और भावना को सम्मान करना सीखना होगा। किसी भी व्यक्ति से सम्मान की अपेक्षा रखने से पहले आत्मसम्मान करना और अपने मूल्यों पर अडिग रहना बहुत ही जरूरी है। जो व्यक्ति खुद की कद्र करता है, दुनिया भी उसकी कद्र करती है। अपनों से बड़ों का सम्मान करना हमारी संस्कृति और नैतिक मूल्यों की मजबूत नींव है। अपने अनुभव हमें सही मार्गदर्शन देते हैं और बड़ों का आशीर्वाद हमारे जीवन में सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। बड़ों के प्रति आदर भाव रखने से सकारात्मकता बढ़ती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। भला

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। फीफा विश्व कप में अमेरिका ने बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान ने आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा तथा एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की वार्ता की। सम्मेलन में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए भारत और जापान ने एआई के क्षेत्र में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा।
1: प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जापान जैव गैस पहल के माध्यम से भारत में 1000 जैव गैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे भारत के गांवों में स्थिरता, समृद्धि और ग्रामीण आजीविका को नई शक्ति मिलेगी।
1: भारत और जापान दोनों इकोनॉमिक सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी का महत्व अच्छी तरह समझते हैं। इसी दिशा में आज हमने इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए एक ज्वाइंट रोडमैप तैयार किया है। इसके माध्यम से हम सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एडवांस मटेरियल जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में सप्लाई चेन रेजिलियंस को मजबूत करेंगे। एनर्जी सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी इंडिया जापान बायोगैस इनिशिएटिव के माध्यम से हमें भारत में 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स लगाने में सहायता मिलेगी।
0: इससे पहले आज प्रधानमंत्री ताकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत

0: दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लिए भारत के लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर से समर्थन मिला है। 140 सदस्यों द्वारा अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकरोधी रणनीति की नौवीं समीक्षा में सदस्य देशों से आग्रह किया गया है कि वे भारत द्वारा तीन दशक पहले प्रस्तावित सम्मेलन को अंतिम रूप देने के लिए हर संभव प्रयास करें। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सर्वमान्य कानूनी ढांचे का अभाव वैश्विक आतंकरोधी प्रयासों को कमजोर करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड न अपनाने पर बल देते हुए अपराधियों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया।
1: India has been a victim of cross-border terrorism for decades.
2: भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद को झेल रहा है। हमने इसकी भारी कीमत चुकाई है। इसी अनुभव के चलते भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों की निंदा की जानी चाहिए। भारत ने आतंकवाद के लिए फंडिंग को रोकने पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है। भारत का मानना है कि आतंकवाद विरोधी प्रयासों को राजनीति से प्रेरित बयानों से कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।
0: अमेरिका, इसराइल और अर्जेंटीना ने प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। 4,822 श्रद्धालुओं का पहला जत्था, जिसमें बारताल रूट के लिए 2,312 और पहलगाम रास्ते के लिए 2,510 लोग शामिल थे, 147 गाड़ियों के काफिले में रवाना हुए। ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ आज तिरुपति जिले के मुक्कावलीपल्ले गांव में विकसित भारत जयरामजी अधिनियम 2025 का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
3: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जयराम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जयराम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा दिया है वो है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा, तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
0: श्री चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आंध्र प्रदेश के लिए 70,000 से अधिक आवासों की मंजूरी दी। उन्होंने ग्रामीण संपर्क और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से 422 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि से 146 ग्रामीण सड़कों और 19 पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र भी सौंपे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक से दूसरी तकनीक की जगह नहीं ले रहा है, बल्कि इससे टिकाऊ औद्योगिक इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित भारत के लिए देश को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब बनाने पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ तथा संतुलित विकास के साथ जीवन को सुगम बनाने के प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मॉनसून के मौसम में 21 लाख पौधे लगाए जाएंगे। जिले में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के लोकभवन में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत

0: जनगणना प्रपत्र भरकर संबंधित मुख्य चुनाव अधिकारी रवि कुमार और जिला चुनाव अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री को सौंपा। उपराज्यपाल ने देश के सभी योग्य पात्रों को जनगणना प्रपत्र सही समय पर भरने की अपील की। बंगलुरु दक्षिण तालुक में एक चट्टान के गिरने से 7 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब मदपटना गांव स्थित कावेरी क्रशर पत्थर खदान में एक विशाल चट्टान नीचे खदान में गिर गया, जहां मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खदान के मालिकों की तलाश जारी है। मृतकों में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के निवासी थे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए खदान मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने ISI प्रायोजित अंतर्राज्यीय आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ISI हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में तथा मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर भागों में पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में बारिश से गर्मी और उमस भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में मॉनसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों के लिए तेज बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून के आगमन से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है और राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई है।
1: दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार से ही आधिकारिक तौर पर प्रदेश में दाखिल हो चुका है और ट्रफ लाइन आजमगढ़, बरेली और अयोध्या जिलों से होकर गुजर रही है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को लंबे वक्त से पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिली। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर और संभल में बहुत भारी बारिश हुई, जिससे कुछ क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि दिन के तापमान में भी गिरावट आई। ये बारिश किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, जो धान की बुआई में देरी के कारण बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है और कहा है कि राज्य भर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम के हालात बेहतर बने हुए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: महाराष्ट्र में आज लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश जारी रही।
2: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया है, यातायात धीमी पड़ गई है और उपनगरीय रेल सेवाएं कुछ मार्गों पर प्रभावित हो रही है। लगातार बारिश के चलते पवई लेक पूरी तरह भर चुका है। मुंबई विश्वविद्यालय ने पालघर जिला तथा पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र के महाविद्यालयों में आज होने वाली परीक्षाएं रद्द कर दी है। मौसम विभाग ने उत्तर महाराष्ट्र तथा दक्षिण महाराष्ट्र गोवा तट पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ की समस्या बनी हुई है। ओंटारियो, क्यूबेक, प्रेरीज और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज के कुछ हिस्सों के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, बाहरी गतिविधियों से बचने और वरिष्ठ नागरिकों तथा बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी है। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 13 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टेलेमंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमेरिका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर 2002 के बाद पहली जीत दर्ज की। अब अमेरिका का मुकाबला बेल्जियम से होगा।

0: घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के सत्र में सेंसेक्स 402 अंक के साथ 77,325 के उच्चतम स्तर पर और निफ्टी 129 अंक बढ़कर 24,135 पर आ गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन स्तर की बातचीत। दोनों देशों के बीच आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स और एआई सहित कई समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा, भारत जापान के द्विपक्षीय संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को लेकर भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से समर्थन मिला। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ ही श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दिल्ली में दस्तक, उत्तरी तथा पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आइए सुने सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं अमर फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ, शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद की धुन।

0: गया।
1: असद भोपाली का लिखा और रवि का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम अपना बना के देखो। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म चार दीवारी का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, शुरू में पिरोया है सलील चौधरी ने।

0: एक रास फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के थे और धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं हनीमून फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, धुन बनाई है सलील चौधरी ने।

लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों में ये गीत आपने सुना। सम्राट चंद्रगुप्त से हसरत जयपुरी ने लिखा था और कल्याण जी आनंद जी ने धुन बनाई थी। और अब आपको सुनवा रहे हैं न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ गीत। लिखा है शैलेंद्र ने, सुरों में पिरोया है शंकर जयकिशन ने। ये है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। दीजिए राजुल को इजाजत, सुनते हैं ये सदाबहार नगमा।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। दीपा आपको भी मेरा नमस्कार।
1: सोनाली आपको और हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
0: और क्या हालचाल है?
1: बिल्कुल अच्छे। और आशा करते हैं कि हमारी सारी सखियां हमारे सभी श्रोता अपना और अपनी सेहत का और अपने परिवार का खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि बदलता मौसम है, इस वक्त कुछ और एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है।
0: और झमाझम बारिश हो रही है, तो बारिश का हम सभी लुत्फ उठा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: जिन जगहों पर अभी बारिश नहीं आई है वे बारिश का इंतजार कर रहे हैं,
1: और उनके लिए भी ये शुभकामना है कि जल्दी से उनके शहर में भी ये जो ठंडक हम जो एहसास कर रहे हैं उन्हें भी ये एहसास हो।
0: और ये ठंडक का एहसास है ना दीपा, ये तो इस मंच पर आते से ही हमें होने लगता है। भले ही कितनी भी चिलचिलाती गर्मी हो या बहुत ठंड हो या बारिश हो, यहाँ आने के बाद में जो सुखद अनुभूति मिलती है ना, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
1: ये बात तो बिल्कुल 16 आने सही कही तुमने।
0: और जब सुखद अनुभूति कब मिलती है, जब हम अपने घर में पुराने फोटो के एल्बम लेकर बैठते हैं, कह रहे मैं पहले कैसे दिखती थी, कितनी सुंदर दिखती थी, मेरे बाल कितने लंबे थे, मैं कितनी सुंदर दिख रही थी, मेरे बच्चे कितने अच्छे दिख रहे थे, या फिर हमारा बचपन कितना खूबसूरत था। ये सब हम जब पुराने फोटो एल्बम देखते हैं, पुराने फोटो एल्बम देखना अपना एक अद्भुत अनुभव होता है।
1: बिल्कुल, और एक फिल्म से चल जाती है उस दिन को, हम फिर से लगता है जैसे
0: जी रहे हैं
1: और वो वक्त उस वक्त क्या हुआ था, कुछ बातें भी याद आ जाती हैं, और सभी लोग उस बातों को फिर याद कर करके खूब खुश होते हैं, और आनंद का जो
0: क्षण
1: होता है वो उसकी अनुभूति, उसका अनुभव ही कुछ अलग है सोनाली।
0: साथ ही कहानी पद्मश्री की इसके अंतर्गत

0: फरीदा बेगम कांथा कढ़ाई वर्क में जिन्होंने काम किया है बहुत आगे बढ़ी है, तो उनके बारे में हम जानकारी देंगे।
1: और जो आजकल एक बात चली है कि बच्चों की शादी अपनी मर्जी से होना चाहिए या उसमें बड़ों की भी मर्जी शामिल होना चाहिए, सलाह उनकी शामिल होनी चाहिए या नहीं, इस बातों पर घर घर में बहुत सारी बातों पर विचार विमर्श चलते रहते हैं। जहाँ पे शादी योग्य युवक या युवतियां हैं उनके घरों में, तो हम भी कुछ जानेंगे कि कैसा होना चाहिए, बड़ों की सहमति या बड़े दिखाएं या बच्चे ही अपनी मर्जी बता दें, क्या सही है क्या गलत है उनके लिए, इस बारे पे थोड़ी विचार और विमर्श करेंगे।
0: देखिए जो बदलता जमाना है ना, पुराने जमाने में थोड़ी छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, तो उस वक्त माता पिता जो है वे उनके बारे में अच्छा ही सोचते थे, पर अब बदलते जमाने के नजरिए जो बच्चे हैं ना थोड़ी बड़ी उम्र में शादी करते हैं, 25, 26, 27, 28 के बाद में शादी करते हैं, तो उनकी राय जान लेना उतना ही जरूरी है, क्योंकि उन्हें एक साथ जिंदगी गुजारना होता है। तो इस विषय में हमारे श्रोताओं ने, हमारी सखियों ने बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे हैं, तो उनके हम कमेंट शामिल करेंगे, क्योंकि ये श्रोताओं का ही सेगमेंट है। मुझे कुछ कहना है, बच्चों की सहमति से हो शादी, है ना,
1: बिल्कुल।
0: और साथ ही उपयोगी टिप्स अच्छी नींद के लिए, जो आजकल हम सभी को नसीब नहीं होती है। कुछ खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें बस ऐसे बिस्तर पर लेट गए और नींद लग जाती है, पर कुछ कुछ लोगों को बहुत जद्दोजहद के बाद नींद आती है
1: जी। तो इसके लिए भी बहुत जरूरी है कि भाई एक स्वस्थ नींद अगर मिलेगी तो स्वस्थ तन होगा, और उसके बाद आपका अगला दिन उसी तरह से स्वस्थ होगा, और साथ में तभी वो सकारात्मक हो सकेगा। तो आगे आने वाले दिनों के लिए या कल के लिए आज की रात सोना बहुत जरूरी है, वो भी एक गुड क्वालिटी स्लीप आपको मिलना चाहिए।
0: और आप क्या करना चाहिए,
1: गीत सुनना चाहिए,
0: तो सुनते हैं गीत।
2: सोफियों में घोला जाए खून का शबाब, उसमें फिर

0: बजने लगे शहनाई।
1: आना हो जाना हो जैसा भी जमाना हो उतने कभी ना जो कुमार।

0: जो तैयार
1: वो प्यार है झोलियों में भोला जाए फूलों का शबनम।
2: तो दीपा बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसमें हम कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे तकदीरा बेगम के बारे में।
3: जी, बंगाल की रहने वाली हैं ये। और सोनाली, आप तो जानती हैं कि बंगाल राज्य अपनी पारंपरिक और उत्कृष्ट कांथा कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें नक्शी कांथा, लेप कांथा, सुजनी कांथा, बेटन कांथा, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारी शैलियां हैं। ये कला हमारे देश की प्राचीन विरासत का एक अभिन्न अंग है और बंगाल की विशेष पहचान।
2: बिल्कुल सही कहा आपने दीपा। नक्शी कांथा में पुरानी साड़ियों और कपड़ों को एक के ऊपर एक रखकर रंगीन धागों से जटिल कढ़ाई की जाती है और इस कला में रनिंग स्टिचिंग या कंथा स्टिच का उपयोग करके सुंदर नक्शा यानी कलात्मक पैटर्न बनाया जाता है और इसका उपयोग अक्सर रजाई, बेडशीट, पर्दे और अन्य घरेलू सामानों के लिए किया जाता है। खास तौर पर इन्हें साड़ियों पर भी उतारा जाता है।
3: बिल्कुल, और तकदीरा बेगम जो है नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार है। उनका जन्म 1953 में पश्चिम बंगाल के परगना जिले में का एक छोटा इलाका है, नाम है श्री कृष्णापुर, वहाँ हुआ था। उनकी माँ घर पर बंगाल की जो पारंपरिक ये जो कांथा कढ़ाई है वो किया करती थी। अपनी माँ को काम करता देख तकदीरा को इस कला के लिए, जैसे एक होता है ना कि घर में एक कोई बड़ा आपका कर रहा है तो आपका भी प्यार उस कला की तरफ हो जाता है, तो स्वाभाविक सा हो गया कि तकदीरा का भी जो आकर्षण है इस कांथा कढ़ाई की ओर गया।
2: यानी ये कितनी अच्छी बात है ना कि जब हम कोई अच्छा काम बच्चों के इर्द गिर्द करते हैं तो बच्चों को भी उसमें अपने आप रुचि उत्पन्न हो जाती
3: है। जी,
2: और तकदीरा बेगम नक्शी कांथा कढ़ाई की माहिर कलाकार है। तो उनका जन्म तो आपने बता ही दिया कि 1953 में हुआ था और बचपन में तकदीरा अक्सर स्कूल के बाद अपनी माँ के साथ कंथा कढ़ाई करती और जिसमें वे रंगीन धागों से पारंपरिक डिजाइन बनाती। 12 या 13 साल की उम्र तक कांथा कढ़ाई की रचनात्मक दुनिया में उन्होंने प्रवेश कर लिया। देखिए 12-13 साल की उम्र कितनी छोटी उम्र होती है ना।
3: बिल्कुल, मतलब उस वक्त तो समझ ही नहीं आता है लेकिन ये कढ़ाई किया करती थी। और तकदीरा बेगम के पिता मूल रूप से श्री कृष्णपुर के निवासी ही थे लेकिन बाद में वो जय कृष्णपुर चले गए थे। उन्होंने औस ग्राम के गर्ल्स स्कूल में 10वीं तक की पढ़ाई की थी। सिलाई और कढ़ाई में उनकी रुचि बहुत थी। 5वीं कक्षा से ही उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। अपनी माँ की कांथा कढ़ाई से प्रेरित होकर वे पारंपरिक शैक्षणिक विषयों से परे, यानी उनको शायद पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगता होगा, अब जाकर के वो सीधे सुई धागे की ये जटिल कला की ओर उनका आकर्षण बढ़ने लगा।
2: पिछले 30 वर्षों से तकदीरा ने अपना जीवन कांथा कढ़ाई की कला को निपुणता प्रदान करने में समर्पित कर दिया है। बचपन के शौक के रूप में शुरू हुआ ये काम धीरे धीरे उनका जुनून

0: और पेशा बन गया। स्कूल के दिनों में उन्होंने जो सिलाई कौशल हासिल किया था उसी शिल्प ने उन्हें उनके उनके आजीवन सफर की नींव रख दिया। कितनी अच्छी बात है कि जो काम उन्होंने शौकिया तौर पे शुरू किया उस शौक ने ही उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से
1: जी
0: सम्मानित कर दिया
1: गया। जी, और पिछले कई सालों से आप महिलाओं को अपनी

0: अपना जीवन भी बदल सकती हैं और साथ ही सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में भी हम मदद कर सकते हैं।
1: और उनका ये मानना था कि मैं कभी खाली नहीं बैठ सकती थी, मुझे काम करना हरदम पसंद था और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने मुझे पद्मश्री पुरस्कार के काबिल समझा और वर्ष 2024 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
0: और कई सारे उनके इंटरव्यूज हुए तो उसमें से एक साक्षात्कार में उन्होंने ये भी किया, ये भी बताया था कि मेरी माँ ने कभी सोचा ही नहीं था कि वो अपने इस कारीगरी से, इससे बने जो भी उत्पाद थे उससे पैसे कमा पाएंगी। उस समय हमारे परिवार में इसकी इजाजत भी नहीं थी, ये वो इस तरह से बताती हैं, लेकिन वो कढ़ाई में माहिर थी और उन्होंने मुझे कई दुर्लभ और जटिल डिजाइन सिखाए। मैं इस कढ़ाई को एक बड़े मुकाम तक ले जाना चाहती थी, ये मेरा सपना हुआ करता था।
1: और उनका ये मानना था दीपा कि भले ही कई लड़कियां काम करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्सुक भी रहती हैं, लेकिन उनके घर से उनके पति उन्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं देते। पर उनका ये कहना था कि उनके पति ने, तकदीरा बेगम के पति ने उन्हें भरपूर समर्थन किया और अपने दोस्तों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे अपनी पत्नियों को काम करने दे और उन्हें आत्मनिर्भरता बनने दे, आत्मनिर्भर होने दे।
0: बिल्कुल, अपने लगन से तकदीरा बेगम देश की अनगिनत महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प और कौशल से पारंपरिक कला न केवल जीवित रह सकती है बल्कि पीढ़ियों को सशक्त भी बना सकती है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की उनकी 3 दशकों से अधिक की यात्रा चुनौतियों से तो बहुत भरी रही सोनाली, फिर भी इनके जो परिणाम है बहुत उल्लेखनीय निकले। इतनी सफलता उन्होंने हासिल की है और साथ में अपने सिर्फ खुद सफल नहीं हो रही हैं, खुद आत्मनिर्भर नहीं हुई, उन्होंने अपने साथ कई सारी महिलाओं को ये सफल राह दिखाई है।
1: यानी देखिए ना, उनकी एक कला के कारण कितनी सारी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी है, उन्हें उनकी आमदनी हो रही है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कोई भी कला है जो जो खुशियां तो देती है, पर ये खुशी उन्होंने अपने खुद तक सीमित नहीं रखी है बल्कि उनके कारण कितने सारे घरों में रोशनी आ रही है।
0: बिल्कुल, और ये जो आर्ट है काथा कढ़ाई, ये भी संरक्षित है आज भी और ये तो इसमें साड़ियों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ये इस प्रकार की कढ़ाई।
1: तो श्रोताओं ने भी इस बारे में बहुत सारे कमेंट्स लिखे, हम वो बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी क्या करें,
0: गीत सुनेंगे।
1: तो एक गाना सुनते हैं,
0: चलिए।
2: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो

0: कह डाला फिर से तो फरमाना।
1: कुछ ऐसा ही होता है ना, जब हम पुरानी एल्बम या पुराना कोई अपनी कोई पुरानी तस्वीर हमारे हाथ लग जाती है घर सफाई के समय, तो लगता है कि वही फिर से वही बात कुछ फरमा दे, वही चीज हो जाए हमारा। हम कई बार ऐसे
2: हमारा मजाक में बोलते हैं
1: वैसा ही हो जाए और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस से उतने छोटे हो जाएं, हाँ। जैसे उस वक्त थे जो हम तस्वीर में देख रहे होते हैं।
2: यानी उस वक्त मैंने थोड़ा कम लाड़ दुलार किया,
1: हाँ।
2: अब वो ऐसे होते तो मैं और प्यार करती। उस वक्त मैं इतनी उलझनों में थी, इतने कामों में व्यस्त थी कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह से खिला नहीं पाई, अच्छी तरह से उनका बचपन नहीं देख पाई। तो फिर से वो छोटे हो जाए तो मैं फिर से उन्हें खिला लूं, है ना।
1: और एक दूसरा पक्ष भी हो सकता है कि उस दिन उसने बहुत ज्यादा बदमाशी की थी, तो उसे एक तो थप्पड़ उसे दे ही देना था, तो बाद में वो जिद करता ही नहीं।
2: वैसे दीपा, पुराने एल्बम हमारे जीवन की वो अनमोल धरोहर होते हैं ना, जिनमें केवल तस्वीरें नहीं बल्कि भावनाएं, रिश्ते और बीते समय की खुशबू संजोई रहती है।
1: बिल्कुल। और सोनाली, जब हम किसी पुराने एल्बम को हाथ में लेकर उनके पन्ने पलटते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे समय हमें पीछे ले के जा रहा है और हम अपने ही पुराने दिनों को दोबारा मिल रहे हैं।
2: वैसे दीपा, एल्बम का जो हर पन्ना होता है ना, उसकी एक अलग कहानी होती है। और कहीं बचपन की शरारतें दिखाई देती हैं, तो कहीं माता पिता का स्नेह भरा चेहरा दिखाई देता है, कहीं परिवार के साथ बिताए त्योहारों के पल, कहीं दोस्तों के साथ हंसी मजाक की यादें, तो कहीं स्कूल के पिकनिक के फोटोज होते हैं। तो जो फोटोज, ये अनगिनत यादें होती है ना,
1: बहुत
2: और
1: सारी।
2: कुछ तस्वीरें तो ऐसी होती है जो हमारे चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाती है और कुछ आंखों को नम कर देती है।
1: ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने कि कभी कभी एकदम ऐसा लगता है हाय वो दिन कहाँ गए, वो दिन फिर से हमारे लौट आए। और पुराने समय की तस्वीरों में एक अलग ही अपनापन होता है। तस्वीरें कम खींचा करते थे उस वक्त, इसलिए हर फोटो खास होती है, और परिवार के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर फोटो खिंचवाते थे। ये वो जमाना था, है ना, वो इंतजार, वो उत्साह, और फिर एल्बम में तस्वीरें सजाने की खुशी आज के हजारों मोबाइल फोटो से एक अलग ही अनुभव देती है। हमारे मोबाइल में भले ही ढेर सारे फोटो हो, हजारों में होते हैं
2: जी,
1: लेकिन जब हम एल्बम उठा करके बैठते हैं तो घर के भी जो सारे सदस्य होते हैं ना, कि वो कहते हैं अरे क्या देख रहे हो, हमें भी देखना है। और फिर उस पर वापस एक डिस्कशन, एक विचार विमर्श शुरू हो जाता है, और फिर वो बातें पता नहीं कहां तक चली जाती।
2: और उस वक्त अगर कोई घटना घटी होती तो उसे भी हम याद करके बहुत हंसते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा,
2: क्योंकि ऐसे हुआ था, ये हुआ था, है ना। एक हमारी सखी ने लिखा है, सच कहा, पहले के फोटो देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। सच में पहले के फोटो और उनसे जुड़ी बातें जब याद आती है तो पल मानो उस समय में हमें वापस पहुंचा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमने पुराने फोटोज निकाले जिसमें हमारी बेटी बिल्कुल उनकी बेटी की तरह लगी। हमने तुरंत उसकी फोटो खींची और उसके साथ ही उसकी बेटी की भी अभी की फोटो डालकर बेटी को भेजा, तो इतनी खुश हो गई, सही में हम कितने सेम लग रहे थे। यानी कितनी सुंदर यादें, है ना।
1: और एक संदेश और कहता है सोनाली की, एल्बम हमें एहसास कराते हैं कि समय कभी ठहरता नहीं। जिन चेहरों पर कभी युवावस्था की चमक थी, आज उन पर अनुभव की रेखाएं हैं। कुछ लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन तस्वीरों में उनकी मुस्कान आज भी उतनी ही ताजा है। एल्बम के हर पन्ने से रिश्तों की गर्माहट, घर की खुशबू और बीते दिनों की मीठी जो एहसास है वो महसूस होते हैं। सच तो यह है कि पुराने फोटो के एल्बम केवल कागज पर छपी तस्वीरें नहीं बल्कि जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है।
2: एक साथी कहते हैं कि सच में पुराने फोटोज देखकर तो दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मुझे भी जिस दिन मन नहीं लगता उस दिन मैं भी अपने बेटे के पुराने एल्बम निकालकर देखती हूँ। क्योंकि मुझे शुरू से फोटोग्राफी का शौक रहा है तो मेरे पास अपनी या अपने बेटे के हर क्षण की फोटो है। जब मोबाइल नहीं था तब मेरे पर्स में हमेशा एक कैमरा रहता था, जहां जो अच्छा लगता था मैं फोटो ले लेती थी। यहां तक कि स्कूल में भी वहां भी बच्चों की फोटो लेती थी, जिसकी वजह से मैं अपने स्कूल में सेल्फी मैम के नाम से जानी जाती हूँ। कितनी सुंदर बात,
1: बहुत सुंदर। और एक संदेश कहता है कि एल्बम के देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है। उस समय में पीछे जाने जैसा होता है, पुरानी यादें, चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। खुशी केवल तस्वीरों को देखने तक सीमित नहीं बल्कि यह बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हे, बचपन, शादी, छुट्टियां, त्योहार, सब यादें ताजा हो जाती हैं।
2: एक साथी कहते हैं कि भाई मेरी तो 10th बोर्ड जो है ना फॉर्म में लगाने वाली पासपोर्ट साइज फोटो है, उसे देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो तब बिल्कुल लड़की जैसा दिखता था, अभी मैं यहां पर अपलोड नहीं कर सकता, वरना मैं आपको फोटो जरूर दिखाता
1: जी कभी मौका लगेगा तो जरूर हम भी देखना चाहेंगे। और अब क्या करना चाहेंगे?
2: अब गाना सुनेंगे।
1: चलिए

0: रिमझिम रिमझिम सावन की बरसात हो रही है, यानी सावन तो नहीं आया अभी, पर बरसात ऐसी है कि मानो सावन आ गया है।
1: एहसास तो वो ही करा रहा
0: और
1: है
0: वो जो है ना
1: ना।
0: सुखद अनुभूति है ना, वो एल्बम देखने जैसी ही है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि पुराने एल्बम के पन्ने पलटते ही यादों का कारवां चल पड़ता है। बचपन, परिवार, दोस्त और जीवन के अनमोल पल फिर से आंखों के सामने ताजा हो जाते हैं। और हर तस्वीर की एक कहानी होती है, जब दुनिया में नहीं उनकी यादें संजोए रहते हैं। शादी ब्याह की शरारतें, नाच गाना चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। सचमुच पुराने एल्बम को देखना बीते हुए खूबसूरत पलों को एक बार जीने जैसा सुखद अनुभव मिलता है। और अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो लेते हैं एक ब्रेक।
1: चलिए।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है। कार्यक्रम है सखी सहेली और हमारे बहुत सारे साथियों ने कमेंट्स लिखे हैं। तो एक हमारी सखी ने लिखा है कि एल्बम देखने की अनुभूति बेहद खास और भावनात्मक होती है। उस समय में पीछे जाने जैसा है जहां पुरानी यादें चेहरे और पल आंखों के सामने सजीव हो जाते हैं। ये खुशी केवल तस्वीरों तक देखने तक सीमित नहीं है बल्कि बीते हुए सुनहरे पल के एहसास को फिर से जीने का एक प्यारा माध्यम है। एल्बम पलटने से अपनों के साथ बिताए गए खास लम्हों, बचपन, शादी, छुट्टियों और त्योहारों की यादें ताजा हो जाती है। ये चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ साथ आंखों में खुशी के आंसू भी लाते हैं। मैं तो बेटे के बचपन का फोटो पोते को दिखाती हूँ और कभी कभी दोनों का फोटो लगाकर मोबाइल स्टेटस सोशल मीडिया पर लगाती हूँ। पोता फोटो को देखकर खूब खुश हो जाता है, पूछता है दादी पापा भी मेरी तरह छोटा था। कितना मासूमियत भरा सवाल है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से जब हम अपनी यादों तक वापस उस गलियारों में जब हम गुजरते हैं तो मन प्रसन्न होता है, कहीं सकारात्मक एक धारा भी प्रवाह हो जाती है हमारे अंदर, एक खुशी की जो लहर अंदर दौड़ पड़ती है, तो सब तरफ हर तरफ हमें अच्छा अच्छा और खुश खुश जैसा माहौल लगने लगता है। और एक माहौल और चल रहा है आजकल कि भाई शादी ब्याह जो है इतना जो नाजुक मसला होने लग गया है, इस पर सहमति तो परिवार की होती ही थी, पहले तो हुआ करती थी, अब बच्चों का सहमत होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है।
0: यानी पहले बताया जाता था कि सब अच्छा है और बच्चे जो होते थे उन्हें भी पूरा विश्वास होता था कि हमारे माता पिता कभी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे, वो हमारा अच्छा ही चाहेंगे और सब कुछ सोच के घर परिवार देख के पूरा उनके दादा नाना नानी सारे लोग बैठ के पूरा इन्हें पूरा परिवार ही कहते हैं कि कुंबा ही इकट्ठा हो जाया करता था और फिर इस तरह से शादियां तय होती थी। पर अब समाज जो है बदल रहा है, अब बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी भी इच्छाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किस तरह से, यानी हर किसी की अपेक्षा अलग होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा होने वाला पति ऐसा होना चाहिए जो मुझे समझे, मेरी भावनाओं की कद्र करे, मैंने जो पढ़ाई की है उसे मुझे आगे बढ़ने का मौका दे, उसे उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे। वहीं पर लड़कों को भी अपेक्षाएं होती है कि जो लड़कियां हैं बराबरी से काम में हाथ बटाए और फिर खूब आगे बढ़ने में एक दूसरे का ये मिले,
1: मदद मिले,
0: सहयोग मिले
1: कि हाँ एक की वजह से दूसरा आगे बढ़े और जो दूसरा है उसकी वजह से, मतलब पति पत्नी दोनों ही ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे का सहयोग भी काम में भी करें, घर में भी करें, ये
0: घर में भी हाथ बटाए।
1: हाँ,
0: पुराने जमाने में ऐसा होता था कि लड़के घर में काम नहीं करते थे,
1: लड़कियां
0: ही काम करते थे।
1: लेकिन अब ये है कि आप अपने जो कार्य क्षेत्र है, ऑफिस है या व्यापार है, जब घर वापस आते हैं तो दोनों मिलकर अब घर रसोई सब कुछ देखते हैं, अपना काम देखते हैं, यहाँ तक कि काम बांट भी दिया जाता है। और इससे कोई गलत या बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अगर वो शहर में नहीं है, अपने माता पिता से दूर है, तो किस तरह से अपने सब चीजों का संयोजन बनाएंगे, बैलेंस कैसे बनाएंगे अपने लाइफ में, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसी तरह से देखो बहुत सारे संदेश इस बात को लेकर आए हैं और बहुत अलग अलग विचार सामने आए हैं। तो ये पहला संदेश हम पढ़ रहे हैं। पुराने जमाने में माता पिता जो तय करें उनके साथ शादी हो जाया करती थी। उन दिनों लड़का लड़की एक दूसरे को देखे बिना छोटी उम्र में ही उनकी सगाई भी हो जाया करती थी। आज की तरह सगाई के बाद एक दूसरे से मुलाकातें भी नहीं हो सकती थी, उस वक्त साथ घूमने का तो सवाल ही नहीं होता था। आज लेकिन माहौल बहुत बदल गया है। लड़के के लिए 21 साल, लड़की के लिए 18 साल वैधानिक आयु होनी अनिवार्य हो चुकी है। माता पिता की मर्जी के बिना लड़का लड़की एक दूसरे की पसंद के अनुसार शादी कर सकते हैं। अब माता पिता का तो रोल सिर्फ आशीर्वाद देना ही रह गया है।
0: एक सखी ने लिखा है, विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो परिवारों और दो जीवनों का मिलन होता है। माता पिता का अनुभव भी अमूल्य होता है, लेकिन बच्चों की इच्छा, उनकी भावनाएं और उनकी सहमति भी महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनके लिए योग्य जीवन साथी खोजने में सहायता करें, लेकिन अंतिम निर्णय बच्चों की इच्छा का सम्मान करते हुए ले। समय बदल रहा है, बच्चों की सहमति से होने वाला विवाह न केवल रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि परिवार में प्रेम, सम्मान और खुशियों को भी स्थायी बनाता है।
1: बिल्कुल। वहीं एक और संदेश ये कहता है कि विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय है, इसलिए इसमें बच्चों की सहमति और इच्छा का सम्मान आवश्यक है। माता पिता का अनुभव और मार्गदर्शन अमूल्य होता है, लेकिन जिस व्यक्ति को जीवन भर उस रिश्ते को निभाना है उसकी राय सबसे अधिक मायने रखती है। आपसी समझ, विश्वास, सहमति पर आधारित विवाह अधिक सुखद और सफल होता है। जब परिवार और बच्चों के विचारों का सम्मान करते हुए निर्णय लिया जाता है तो रिश्तों में अपनापन, सम्मान और विश्वास भी बढ़ता है।
0: एक सखी ने लिखा है कि बच्चों की सहमति से शादी, आजकल शादी का रिवाज बदल गया है, बच्चे अपनी ही पसंद की शादी करना पसंद करते हैं, माता पिता को बस घर परिवार जिसको पसंद किया उसको देखना होता है, बस माता पिता की मोहर लग जाती है, अगर माता पिता खुद से बच्चों के लिए जीवन साथी का चयन करते हैं तब भी यही स्थिति होती है, जब तक बच्चे आपस में एक दूसरे को समझ ना ले तब तक बात आगे नहीं बढ़ती, और जब तक बच्चों की सहमति नहीं होती तब तक माता पिता को रुकना होता है। पहले के समय माता पिता खुद ही पसंद करते थे तब बच्चों की सहमति की जरूरत नहीं होती थी, पर आजकल इन बातों का ध्यान रखा जाता है।
1: एक संदेश कहता है कि आजकल जो माहौल हो रहा है और युवा पीढ़ी हाईली एजुकेटेड होने के बावजूद शादी ब्याह के पवित्र रिश्ते में कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए जरूरी है कि शादी के लायक बच्चों की सहमति लेना बहुत जरूरी है, और सोने पे सुहागा वाली शादी का निर्णय होता है जब घर के बड़ों के माता पिता के तजुर्बों का भी सम्मान होता है, यानी कि सबकी सहमति सर्वश्रेष्ठ होती है।
0: और आप क्या करेंगे?
1: अब हमारी सहमति तो ये है कि आप गीत सुनाएंगे तो हम बिल्कुल खुश भी हो जाएंगे।
0: चलिए सुनते हैं गीत।

0: बात चल रही है कि शादी हो सहमति से, यानी घर परिवार की तो सहमति हो ही, आजकल बच्चों का सहमत होना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हमेशा से ही सबका सहमत होना बहुत जरूरी है, लेकिन अब जबकि एकल परिवार होने लगे हैं और बच्चे कई बार शादी के बाद तुरंत ही दूसरे शहर जहाँ पे कि वो काम कर रहे हैं वहां चले जाते हैं, ऐसे में अब उनके पास वो शादी ब्याह वाला अनुभव तो होता नहीं है, कैसे जीवन जिया जाना चाहिए वो अनुभव तो होता नहीं है। पहले घर में बड़े साथ में हुआ करते थे तो कहीं पे पास में बातों में कहीं थोड़ी भी ऊंच नीच हो गई तो संभाल लिया करते थे, अब वो दोनों अकेले रहते हैं, ऐसे में अगर कोई एक गर्म मिजाज हो और एक कोई ठंडा हो तो बात कभी बन जाती है लेकिन कभी कभी बिगड़ भी जाती है।
1: इसलिए दोनों को शादी से पहले थोड़ी बातचीत करके एक दूसरे के स्वभाव को जान ले कि किस तरह से इन्हें कैसे पसंद है, उन्हें कैसे पसंद है, किस तरह से यानी जीवन साथी की जो अपेक्षाएं हैं वे फोन पर बात करके उन्हें पता चल जाता है कि लड़की क्या चाहती है कि कैसा हो उसका पति और लड़का भी क्या चाहता है कि कैसा हो। तो ये अगर बातें अगर थोड़ी सी सुलझ जाए ना तो जिंदगी बहुत अच्छी सुंदर हो सकती है। एक हमारी सखी ने लिखा है कि आज के आधुनिक जमाने में युवाओं की आपसी सहमति को शादी का सबसे प्रमुख और अनिवार्य आधार माना जाता है। कानून और सामाजिक बदलाव के अनुसार जब दो वयस्क आपस में शादी करना चाहते हैं तो उनकी सहमति सर्वोपरि होती है। भारतीय कानून के अनुसार बालिग हो जाने पर युवाओं को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। यदि दोनों वयस्क अपनी मर्जी से विवाह करते हैं तो उनकी सहमति ही कानूनी रूप से मान्य है। हमारे समाज में विवाह दो व्यक्तियों के साथ साथ दो परिवारों का भी मिलन माना जाता है, इसलिए लोग कहते हैं कि बच्चों को शादी का फैसला अपनी सहमति से जरूर लेना चाहिए क्योंकि माता पिता के अनुभव और आशीर्वाद से रिश्ता अधिक मजबूत और सुरक्षित बनता है। माता पिता उसे परिवार से भी देख पाक रखकर इस तरह शादी का सहमति दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, पर दबाव नहीं बच्चों पर। असहमति वाले दबाव वाले शादियों का नतीजा अच्छा नहीं दिख रहा। माता पिता अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते पर कभी कभी अपने इंसानी फितरत के चलते अपने ईगो के चलते कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं और बच्चों पर डालते हैं जिसका परिणाम किसी एक जो है नहीं दो परिवारों कई परिवारों को भुगतना पड़ सकता है। यानी इस मामले में बहुत सोच समझ कर हमें निर्णय लेना चाहिए।
0: जी अच्छा एक और संदेश आया है सोनाली, ये कहती है कि मेरी एक सखी है उनकी बेटी की अभी हाल ही में शादी हुई है और उस शादी में हम सब ने बहुत आनंद लिया था, सब ने बहुत भरपूर आशीर्वाद युगल जोड़े को दिया था, लेकिन अब ये शादी में कहीं कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं क्योंकि बेटी जो है वो डॉक्टर है और अब जहां वो ससुराल में गई है तो वहां ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो क्लिनिक छोड़कर घर का काम करे। घर शादी और इस रिश्ते को निभाने के लिए वो बच्ची वैसा कर भी रही है लेकिन फिर भी समझदारी ज्यादा बड़ों में होनी चाहिए ऐसा हमारी सखी को लगता है। वो कहती है कि बच्चों पर भरोसा ही इस रिश्ते को आगे ले जाया जा सकता था। अब जब कारण सुन रहे हैं कि ससुराल वाले खुशी नहीं है, वो डॉक्टर है, घर में काम भी कर रही है, सब कुछ अपना जो करियर है उसको साइड में रखे हुए है, लेकिन मन में उन लोगों के फिर भी असंतोष रहता है, तो ऐसे में उन्हें ये लग रहा है कि

0: थोड़ा सा हमें जान पड़ताल, थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी, थोड़ा सा और समझ लेना चाहिए था, उसके बाद ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए था।
1: ये तो बात ऐसी होती है ना दीपा जी कि ये सब बातें कहने की है, पर ऐसा होता है कि अभी हमने पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने में हमने इतने वर्ष गवाए हैं, इतने सारे वर्ष हमने अपनी जिंदगी की उस पढ़ाई के लिए समर्पित किए हैं और उस पढ़ाई से ही हमारा घर चलने वाला है ना, पैसा मिलने वाला है, तो फिर क्यों ना करें नौकरी। नौकरी करना बहुत अच्छी बात है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक उम्र के बाद यानी 40-45 के बाद में अगर घर के मुखिया इस दुनिया को छोड़ के चले गए, यानी जीवन साथी नहीं रहे, तो उस वक्त जो महिला आती है ना उसके ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आ सकती है कि मेरे पास पढ़ाई है पर अनुभव नहीं है, क्योंकि बिना अनुभव के उस उम्र में कोई नौकरी नहीं देता है।
0: बिल्कुल। और आज के जमाने में जहां इतनी तेज भागती दौड़ती जिंदगी चल रही है और हर जगह कंपटीशन इतना है, दोनों का काम करना
1: बहुत जरूरी
0: आवश्यक हो गया है। आपकी छोटी मोटी खुशियां, आपकी छोटी मोटी इच्छाएं भी, हम महिलाएं जो होती हैं, सारी महिलाओं के बारे में बात हो रही है कि हम आत्मनिर्भर होते हैं अपने पढ़ाई अपने शिक्षा की वजह से, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जो चाहे वो एक लड़की ले सकती है,
1: अपनी इच्छा पूरी कर सकती है,
0: अपनी इच्छा पूरी कर सकती है, ना सिर्फ अपनी वो परिवार की भी इच्छा
1: पूरी कर सकती है।
0: और वो खुशी वो आनंद सिर्फ उस बच्ची को या उस महिला को नहीं होता,
1: पूरे परिवार
0: को होता है।
1: तो इसमें क्या होता है, दोनों खुश रहते हैं कि वो बाहर गई काम के लिए तो पति ने भी थोड़ा सा घर के काम में हाथ बटाया, उन्होंने भी बाहर से गए अच्छे से पैसे कमा कर भी आ गए, पूरा घर खुशहाल रहेगा। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी सी एक दूसरे की तरफ समझेंगे, हम एक दूसरे से जुड़ेंगे तो ये रिश्ता और भी खूबसूरत होगा।
0: बिल्कुल।
1: और अब गाना सुन ले
0: तो सफर और खूबसूरत हो जाएगा।
1: सुनते हैं।

0: आसमां तो झूम रहा है अभी, है ना।
1: आसमान भी झूम रहा है और गीत सुन के मन भी प्रसन्न हो रहा है।
0: मन प्रसन्न हो रहा है पर नींद तो नहीं आ रही दीपा।
1: अभी कैसे आ सकती है? अभी तो हमारी सखियां साथ में है भाई।
0: और पर नींद ऐसी है ना कि जब नहीं आना चाहिए तब आती है और जब आना चाहिए तब नहीं आती। बहुत बार ऐसा होता,
1: होता तो है,
0: है ना। हाँ। पर नींद का ना सीधा सीधा संबंध हमारी मानसिक अवस्था पर भी होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि रात के समय सोशल मीडिया पे किसी से बहस हो गई या किसी से फोन पर बहस हो गई तो हमारी पूरी रात खराब हो जाती है।
1: उसके
0: तो
1: बारे में
0: सोचते रहते हैं कि अरे ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा, मैंने तो ये कभी नहीं चाहता हूँ, फिर ये क्यों बोल दिया, इस तरह से होता है बहुत बार।
1: इसीलिए सोनाली, एक मानसिक स्वास्थ्य और हमारे अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी और गहरी नींद बहुत आवश्यक है। और फिर अगर आप रात को चैन की नींद ना सोएंगे तो अगला दिन आपके जो है आपके काम में उसका असर दिखेगा, आप जो भोजन बना रही हैं उसमें भी असर दिखेगा, या फिर आप चिड़चिड़े होंगे या आप बिना किसी कारण के घर में नाराजगी आपकी दिखाई देगी।
0: और ऐसा है ना, जो चेहरा होता है ना वो हमारा हमारे स्वास्थ्य का दर्पण होता है कि हमारी नींद नहीं हुई तो हम सामने वाला बराबर पहचान लेगा कि आपकी आंखों में सूजन दिखाई दे रही है, आप ठीक से नींद नहीं ली है, आप हमेशा की तरह फ्रेश नहीं दिख रही है, आप थोड़ी चिड़चिड़ी नजर आ रही है, तो शायद आपकी नींद नहीं हुई है। और पूरा गुस्सा फिर वो बच्चों पर निकल सकता है, पतिदेव पर निकल सकता है, पतिदेव का गुस्सा पत्नियों पर निकल सकता है।
1: ऐसा अक्सर हो ही जाता है
0: ना,
1: जब बहुत काम में प्रेशर में होते हैं हम, काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है या कुछ ऐसा घर में कोई त्योहार या शादी ब्याह का माहौल भी आता है ना, बहुत सारे काम होते हैं घर में और हम बिना छोटी सी बात पे ही, बात छोटी सी होती है और एकदम से हम नाराज हो जाते हैं या बोल पड़ते हैं कि क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो। वो इसलिए क्योंकि रात को, रोज रात को देर तक काम कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, इस तरह की कभी 2-3 दिन तक भी अगर इस तरह की रूटीन हो जाती है तो देखिए आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव दिखने लग जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि अच्छी नींद किसी दवा से नहीं बल्कि अच्छी दिनचर्या और शांत मन से आती है। ध्यान साधना, नियमित समय पर सोना, संतुलित भोजन, हल्का व्यायाम और तनाव कम रखने की आदतें नींद को गहरी और सुकून भरी बताती है। वही बहुत सारे साथियों ने कहा है कि स्क्रीन जो है, ये हमारा मोबाइल फोन है, इसको सोने से 1-2 घंटे पहले दूर रख दीजिए।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से जो निकलने वाली ब्लू लाइट है वो हमारे दिमाग में मेलाटोनिन जो वो हार्मोन जो कि नींद लाने वाला होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है, तो इसका स्तर कम हो जाता है और उसी की वजह से नींद आने में दिक्कत होने लगती है और हमारा दिमाग एकदम अलर्ट रहता है, एकदम सतर्क हो जाता है। तब तक वो जो सोने की अवस्था आनी चाहिए वो पूरी अच्छे से आ नहीं पाती।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि नींद पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी नींद से जागकर सुबह मजाक में सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी से ये गाकर सुनाता हूँ, सारी सारी रात तेरी याद सताए, नींद ना आए मुझे चैन ना आए। और धर्म पत्नी तुरंत कहती, अजी छोड़िए, आप तो घोड़े बेचकर सोए थे, कोई उठाकर ले जाता आपको मालूम नहीं पड़ता। दोनों इस बात पर हंस लेते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि दोनों इस बात पर हंसते हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होता ना, एक उम्र के बाद में लोग हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना ही भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल, और अगर आपकी ये हंसी बनी रहे और नींद अच्छे से आए, ये भी जरूरी है कि उसके लिए आप अपने खान पान की आदतों का भी ध्यान रखें, जैसे कि कैफीन से बचना बहुत जरूरी है दोपहर के बाद या शाम को, देर शाम को। कभी घर हम देर से आते हैं तो कहते हैं ना थोड़ी सी पहले चाय पी लेते हैं, वो चाय तो आप पी सकते हैं, कॉफी चाय जो भी आपको पसंद है वो पी सकते हैं, लेकिन उसका असर शरीर में कई घंटों तक रहता है। और बहुत जरूरी है कि हम हल्का डिनर खाएं रात के समय, रात का खाना बहुत भारी नहीं होना चाहिए, बहुत मसालेदार नहीं होना चाहिए, और उससे ज्यादा जरूरी सोने और खाने के बीच में कम से कम 2-3 घंटे का अंतर जरूर होना चाहिए।
0: एक साथी ने लिखा, अच्छी नींद के लिए मेडिटेशन करो, रात को जल्दी और हल्का खाना खाओ और मोबाइल दूर रखो, कमरे में अंधेरा हो, शांति हो, ठंडक हो, बेड आरामदायक हो तो नींद बढ़िया आती है। और जब गर्मियों का मौसम है ना, जैसे बहुत चिलचिलाती गर्मी थी तब है ना, एक नहा ले सोने से पहले, नहा के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने, और जब हम जिस चादर पे सोते हैं बिस्तर में, वो चादर एकदम सूती नरम मुलायम चादर हो, ऐसे डार्क कलर के पर्दे हो तो नींद जल्दी से आ जाती है।
1: और आपने जो करें ना कि चादर नरम मुलायम हो, इसी तरह से आपका बिस्तर भी जो गादी होती है वो

0: और तकिया आरामदायक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कहीं पे अगर रुई की है तो वो कहीं कहीं उसकी गठाने पड़ जाती हैं, उस तरह की नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल इस तरह हो कि शरीर को पूरी तरह से
1: आराम
0: सपोर्ट दे और आराम दे।
1: और अब गाना सुन ले।
0: चलिए।

0: हमारी एक सखी ये कहती है कि एक और जरूरी बात है कि सोने का एक समय बना लेना चाहिए। तो मैं भी समय पर अपने सारे काम निपटा लेती हूँ और बिस्तर पर आ जाती हूँ। उसके बाद कोई टीवी नहीं, कोई फोन नहीं, शांत होकर के आंखें बंद कर लेती हूँ। वो ये सलाह दे रही है कि आप भी इस नियम को 21 दिन करके देखिए और फिर देखिए कितनी अच्छी बढ़िया नींद आपको भी आएगी।
1: तो श्रोताओं के आज इतने सारे हमने सुंदर सुंदर कमेंट्स पढ़े, सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद। आज सखियों के साथ, श्रोताओं के साथ बहुत आनंद आया और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

कुछ बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं, कुछ बात है इस मिट्टी में कि दुश्मन लाख चाहे पर देश झुकता नहीं, हजार साजिशों से भी देशवासी टूटता नहीं। कुछ बात है भारत की मिट्टी में कि इसका सिपाही, इसका रक्षक, वीर सैनिक शौर्य, निष्ठा, साहस, वीरता और बलिदान से कभी पीछे हटता नहीं। स्वागत है आपका देश की सीमाओं से लेकर देश के भीतर और आसमान की ऊंचाइयों से समंदर की गहराइयों तक, देश की रक्षा में सदैव तत्पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड हमारे स्पेशल प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। और आज संदेश टू सोल्जर्स मैं शाहिद आपके साथ और हमारे बहुत ही स्पेशल मेहमान होंगे हमारे साथ, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजे गए और उसके अलावा भी कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारे मेहमान से। नंबर है हमारा दिल्ली का कोड 011 और उसके बाद 2342 1080 पर। साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर के माध्यम से डाउनलोड करके दुनिया भर में आप हमें लाइव सुन सकते हैं। तो मिट्टी को सलाम है देश की, हमारे सैनिकों की तरफ से और हमारी ओर से भी। शाहिद आपके साथ संदेश टू सोल्जर्स में।

0: 106 नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है आपका. आपके साथ है शाहिद और आज के हमारे खास मेहमान हैं इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर.
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका. जितने भी श्रोतागण हैं सशस्त्र सीमा बल के तरफ से मैं कुमार ऋतुराज सबको जय हिंद.
0: जय हिंद सर. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए. बहुत बहुत धन्यवाद. हम आपको अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के अलावा आपने अदम्य साहस वीरता और समर्पण के लिए कई दूसरे अवार्ड से भी लगातार सम्मानित किए जाते रहे हैं. श्री इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल के जांबाज और अत्यंत निपुण सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैं. 72 बटालियन एसएसबी के साथ रिमार्केबल शानदार 14 साल से भी ज्यादा की सर्विस प्रदान कर चुके हैं. खास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस को सक्सेसफुली लीड कर खतरनाक माओइस्ट आतंकियों को और उनके कई मिशंस को नाकाम किया है इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज ने. सर अपना ये एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कीजिए हमारे लिसनर्स के साथ कि कैसा था ये एक्सपीरियंस आपने अपने 14 साल के करियर में खास इस तरीके के एंटी नक्सल ऑपरेशंस में कामयाबी के साथ उनको लीड किया और कामयाबी के साथ उनको पूरा किया.
1: ये सफर तो काफी मेरा शानदार है लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं कि इसमें टीम वर्क होता है. ऑफिसर से लेके जितने आपके सबऑर्डिनेट है जितने भी कार्मिक हैं सबको इसमें मेहनत करना पड़ता. कहीं ना कहीं सबका योगदान इसमें था. भले मेडल हमारे सीने पर लगा हुआ है लेकिन जो हमारे ऑफिसर हैं हमारे साथ जितने काम करने वाले सहपाठी हैं सबका महत्वपूर्ण योगदान रहता है. जी
0: तो सर जैसा आपने बताया कि ये एक टीम वर्क होता है लेकिन सर आपने इन सब से हट करके अपनी पहचान जो बनाई एक टैक्टिकल लीडरशिप काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और मैदान जंग में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी आप जाने गए हैं इसीलिए आपके वो ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहे. तो उनके बारे में बताइए.
1: जी ऑपरेशन इसीलिए सक्सेसफुल रहा कि हम जब 32 बटालियन सशस्त्र सीमा बल मुजफ्फरपुर बेला में जब पोस्टेड थे तो हमारे कमांडेंट श्री दीपक सर थे और सुमित जोशी सर डीआईजी थे जो अभी आईजी हैं और आईपीएस संजय सर थे वो पटना फ्रंटियर में थे. उनका इन लोग का बहुत सहयोग रहा हमारे ऊपर. हमारे काम को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे. हमेशा किसी भी ऑपरेशन से पहले शुरुआत से ही डिस्कस होता था. हर एक पॉइंट पर डिस्कस होता था कि कम से कम हम लोग का कैजुअल्टी हो और दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्षति कर सकें. तो इसीलिए ही ऑपरेशन हमारा अभी तक सक्सेसफुल रहा जो भी ऑपरेशन हुआ.
0: जी यहां पर हम अपने लिसनर्स को बता दें कि सशस्त्र सीमा बल इंडिया की

0: सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो इस बात के लिए जिम्मेदारी लेती है कि वो इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर की सुरक्षा रक्षा कर सके। सर मैं ठीक बता रहा हूँ?
1: जी बिल्कुल ठीक, बहुत बता
0: जी। तो हम सर आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आपकी सर्विसेज के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण और एक की करियर माइलस्टोन भी रहा, जुलाई 2020 का वाल्मीकि नगर एनकाउंटर, और इस ऑपरेशन के दौरान जब खतरनाक गोलीबारी चल रही थी तब आपकी कलाई में भी एक गोली लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद आपने पीछे हटने से इनकार कर दिया और अपने जवानों के साथ डटे भी रहे, उन्हें लीड भी करते रहे। और हम ये जानना चाहेंगे कि फिर क्या हुआ उस ऑपरेशन का अंजाम, क्या वो मंजर, वो सिचुएशन हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर कर सकेंगे?
1: ये वाल्मीकि नगर रिजर्व फॉरेस्ट काफी टफ लोकेशन है। इस ऑपरेशन के लिए हम लोग पहले भी प्रयास कर चुके थे 2-3 बार, लेकिन असफलता ही हाथ लगा था। लेकिन मेहनत बोला जाता है, करने से सफलता तो एक दिन आता ही आता है। तो इसमें 4 खूंखार जो नक्सली थे, एक तो पीलूट ब्यूरो के थे, उनके साथ जबरदस्त मुठभेड़ हुआ। उस मुठभेड़ के दौरान मेरे राइट हैंड पर बुलेट इंजरी भी हुआ, उधर से भी बहुत जबरदस्त फायरिंग हुआ। ये इतना डेन फॉरेस्ट था कि वहाँ GPS वगैरह भी काम नहीं कर सकता था, वहाँ दिन में पहुँचना बहुत मुश्किल है। और उस सिचुएशन में हम लोग वहाँ तक पहुँचे, उसमें बहुत टफ ऑपरेशन, काफ़ी देर तक गोलीबारी चली, इसका परिणाम हुआ कि 4 नक्सली उसमें
0: जी
1: मारे गए।
0: और सर उसमें बताया जाता है कि वो काफी मतलब ड्रेडेड किस्म के जो नक्सली थे वो बहुत खतरनाक वाले नक्सली थे, तो क्या वो ऑपरेशन आपने जब प्लान किया उसको तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब कि इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है, आपके जवानों को आपको जैसे कि गोली भी लगी और भी कुछ हानि हो सकती थी, तो आपने उसकी तैयारी की थी?
1: जी उसकी तैयारी बहुत लंबा तैयारी रहा, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी तैयारी रही। जब तक हम लोग पिन पॉइंट पर पहुंचे, मतलब पिन पॉइंट पर हम लोग पहुंचे नहीं, तब तक वो हम लोग अंजाम उसको नहीं दिए।
0: तो सर कितना लंबा चला ये ऑपरेशन?
1: तैयारी तो ऑपरेशन का मतलब 2 साल हम लोग इस ऑपरेशन का तैयारी किए, तब जाके हम लोग को सफलता हासिल हुआ इसमें। जी जी जी।
0: और जब आपने ये मिशन शुरू किया, जब आप उन आतंकियों के पीछे गए, तो उसमें फिर कहां से शुरू हुआ, फिर कितना समय लगा उसको पूरा करने में, और किस तरीके की आपकी स्ट्रैटेजी रही और कैसे आपने कामयाबी हासिल की?
1: एक्चुअली हमारे में क्या है कि हमारे सशस्त्र सीमा बल जो है उसमें कोई रैंक का कोई गैप नहीं है उसमें।
0: अच्छा।
1: उसमें हम लोग आराम से अपने DIG महोदय, IG महोदय से भी आराम से, हम लोग कमांडेंट महोदय से आराम से किसी भी छोटे बात से डिस्कस कर सकते हैं
0: जी।
1: और छोटा छोटा बात जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसी का परिणाम है कि हम लोग का कैजुअलिटी कम से कम होता है और हमारा ऑपरेशन 100% नहीं तो 99% हमारा सक्सेस होता है।
0: जी
1: जी।
0: तो आपने जब इस मिशन के लिए, आपको ये तो अंदाजा होगा कि ये कितना खतरनाक मिशन है, तो आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया इसकी कामयाबी के लिए और उन आतंकियों से आजादी के लिए, मतलब उन आतंकियों को ढेर करने के लिए पूरी तरीके से आपने तैयारी कर ली।
1: आपको बताना चाहते हैं अगर उस इलाके में ये ऑपरेशन नहीं होता तो सुरक्षा बल के लिए बहुत घातक परिणाम भविष्य में होने वाला था, क्योंकि हमारे वाल्मीकि नगर में हमारे भी बटालियन, वहाँ 2 बटालियन कार्यरत हैं, हमारे कार्मिक उसी रूट से आना जाना करते हैं और
0: अच्छा।
1: फॉरेस्ट के भी जो कर्मचारी हैं कार्मिक है, वो भी जाते हैं, स्टेट पुलिस के STF भी जाती रहती थी उधर, कभी भी कुछ भी हो सकता था उधर अगर ये नहीं होता ऑपरेशन तो। इस ऑपरेशन के बाद उधर से नक्सल का पूरा जड़ ही वहां से खत्म हो गया इस ऑपरेशन के बाद, उनकी कमर टूट गई।
0: क्या बात है सर जी। तो यानी कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, एक सक्सेसफुल एंटी नक्सल मिशन था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फिर बाद में फायदा हुआ पूरी फोर्स को भी और उस एरिया को भी, जैसे कि आपने बताया कि उनकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और आतंकवाद भी बढ़ रहा था।
1: बिल्कुल, उन लोग का वहाँ ट्रेनिंग कैंप भी चल रहा था,
0: घर
1: से रिक्रूट करते थे, नौजवान युवक को भड़काते थे, वहाँ ट्रेनिंग करवाते थे, देश के विरुद्ध अगर कोई किसी क्राइम में फंस गया, कोई पुलिस के कार्य से अगर वो खुश नहीं है तो उसको भला फुसला के वहाँ बुलाते थे और देश के विरुद्ध गतिविधियों में उसको लगाते थे और उससे ट्रेनिंग करवाते थे, फिर सुरक्षा बल के खिलाफ ही उसको यूज करते थे।
0: तो इंस्पेक्टर ऋतुराज जी, आप ये बताइए कि उसी ऑपरेशन के दौरान आपके हाथ में गोली जब लगी तो फिर वो तो फिर एक बहुत ही सिचुएशन ही बदल गई, वहां पर आप घायल हो गए, तो फिर भी आपने लेकिन मिशन अपना जारी रखा, कंटिन्यू रखा, तो वो कैसे पॉसिबल कर पाया आप घायल अवस्था में भी?
1: एक्चुअली जब इस टाइप का ऑपरेशन होता है तो उसमें अगर गोली बुलेट इंजरी भी होता है तो उसमें पता नहीं चलता है, और उसमें आदमी उस जोश और जुनून में कुछ भी हद तक कर मिटने के लिए तैयार रहते हैं उसमें।

0: और जैसे कि आपने बताया कि मिशन ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा, तो आपको लगता है कि आपके कंसिस्टेंट रहने पर, आपके बिल्कुल डटे रहने की वजह से ही जो साथ में आपके जवान थे वो भी डटे रहे और इसको कामयाब करके ही वापस लौटे?
1: इसमें हमारे

0: कि ये जो सिचुएशन होती है जो एक जवान फेस करता है, एक सोल्जर जो फेस करता है, हमें यहाँ स्टूडियो में बैठ करके, अपने घर में बैठ करके, वो अंदाजा उसकी इंटेंसिटी का नहीं हो पाता है, तो उसको आप किस तरीके से बयान करेंगे कि जैसे हमने फिल्मों में तो कुछ भी देख लिया है, कोई भी बैटल सीन, कोई भी वॉर सीन या कोई भी इस तरह के एनकाउंटर सीन, लेकिन जब वो आपके सामने हो रहा होता है तो क्या मतलब वो सिचुएशन होती है आपके दिमाग में, आपके दिल पर क्या चल रहा होता है?
1: बस यही सिचुएशन होता है कि किस तरह उन लोगों को हम लोग परास्त करें, कितना से जल्दी जल्दी उनका जो इनकाउंटर चल रहा है उनको कितने से जल्दी
0: खात्मा करें। जी, लेकिन सर मैं ये जानना चाह रहा था कि वो जो डर वाली सिचुएशन जो होती है वो भी तो कहीं ना कहीं रहती होगी ना, क्योंकि एक तो ये कि मिशन तो है लेकिन एक इंसान के अंदर वो डर जो होता है, तो वो फिर कैसे आप उसको हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं?
1: एक्चुअली हमारे टीम में जितने भी हमारे टीम सेट टीम हमारा था
0: जी,
1: उसमें जितने भी कार्मिक थे, डेडिकेटेड कार्मिक थे, डरने का कोई सवाल नहीं था। गोलियों को बौछार आते भी रहेगा तो वो खड़ा होकर गोली चलाने वाले सारे कार्मिक इसमें थे।
0: क्या
1: नाम का इसमें कोई चीज ही नहीं था।
0: जी
1: जी,
0: तो सर यही हमारे सोल्जर की, हमारे जवानों की पहचान है कि वो जिसको बोलते ना कि वो डर से आगे निकल करके वो जीत हासिल करके ही दम लेते हैं। तो सर आपको जो स्पेशल रिकॉग्निशन भी मिले हैं और आपको जो एक बहुत ही प्रेस्टीजियस जो मेडल है उससे भी नवाजा गया, उस इसी ऑपरेशन के बाद ही उससे नवाजा गया आपको, जो पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसा प्रेस्टीजियस अवार्ड आपको दो बार दिया गया है, इसके बारे में बताइए।
1: जी, एक तो वाल्मीकि नगर के लिए मुझे गैलेंट्री अवार्ड मिला, गैलेंट्री अवार्ड मिला। उसके बाद फिर एक और बिहार में लखीसराय में इनकाउंटर हुआ था जिसमें दो नक्सली मारे गए थे।
0: अच्छा।
1: उसमें भी भारी मात्रा में गोली और हथियार बरामद हुए थे, तो उसके लिए भी हमको गैलेंट्री मिला। तो फर्स्ट बार गैलेंट्री मिला है।
0: जी जी, और दो बार आपको मिला है,
1: दो बार गैलेंट्री।
0: और उसके अलावा भी बहुत सारे आपको और भी मेडल्स मिले हुए हैं, जैसे कि आप इस वक्त जिस तरीके की अपनी बहुत शानदार यूनिफॉर्म में मौजूद हैं, तो वो मेडल भी मैं एक दो चार देख पा रहा हूं, और शायद जगह कम है इसलिए जो आपके मेडल्स, आपके जो अवार्ड हैं वो ज्यादा हैं।
1: आपको तो बताया ही कि मेडल भरे मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन काम तो पूरा टीम वर्क का ही होता है।
0: एग्जैक्टली, लेकिन वही है कि लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है, ये भी तो मानना पड़ेगा। तो हमारे साथ हैं हमारे आज के खास मेहमान संदेश टू सोल्जर में इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, जिनको दो बार पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड के अलावा कई और भी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और देश के दुश्मनों के खिलाफ जंग करने में अपनी वीरता और साहस से पीछे नहीं हटे और मिशन को कामयाबी के साथ पूरा किया, डेडिकेशन के साथ। हमारे साथ बने रहेंगे हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज, सशस्त्र सीमा बल से। आप सुन रहे हैं शाहिद को 102.6 देश का नंबर 1 रेडियो रेनबो पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं शाहिद के साथ और हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से। सर स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और जैसे हमने ये गाना भी सुना कि हमारे जो वीर सैनिक हैं उन्हीं के हाथ में है देश की सीमाओं की रक्षा और देश के भीतर की भी सुरक्षा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम एनकाउंटर की बात कर रहे थे सर, जिस तरीके से आपने बताया तो लग रहा है कि जैसे आपने इसको इतनी मतलब विद ईज आपने इसको किया, इतने आराम से और इतनी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ किया, तो जाहिर है इसके लिए तैयारी भी बहुत लंबी चली होगी। तो वहां आप पहुंचे कैसे, और ये इतना बड़ा ऑपरेशन था तो तैयारी भी आपने पहले से ही की होगी, और जाहिर है इससे पहले भी कहीं ना कहीं आपने ऐसी कोई मिशन तो किया होगा, या हम ये पूछें कि आपने अपना पहला एनकाउंटर कब और कैसे किया, कैसे आप उसको याद करते हैं?
1: आपको हम बताना चाहेंगे कि 2019 में लोकसभा इलेक्शन था, आपको याद होगा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मुजफ्फरपुर में, उसमें उनका वो वहाँ

0: प्रोग्राम था, उसी समय नक्सली लोग छत्तीसगढ़ से कुछ प्लान बना के आए हुए थे और कुछ आईडी ब्लास्ट वगैरह का कुछ प्लानिंग उनका चल रहा था। तो सोर्स के द्वारा हमको खबर मिला, उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया। और जैसे जैसे लीड मिलते गया, और लीड मिलने के बाद फिर हम लोग का इनकाउंटर 2019 में मुजफ्फरपुर में हुआ
1: जी।
0: 50 केस का वांटेड, आपको बताना चाहेंगे,
1: 50
0: केस का वांटेड नक्सली को हम लोगों ने उनके टीम के साथ उनको घेरा, और एसटीएफ और हमारी टीम,
1: अच्छा,
0: उसमें मैं एसएसबी से मैं लीड कर रहा था,
1: ओके,
0: और एसटीएफ से भी लीड कर रहे थे, उधर से भी एक इंस्पेक्टर थे, तो दोनों की टीम मिलकर टेक्निकल और सोर्स के माध्यम से पिन पॉइंट लोकेशन मिला और हम लोगों ने इनकाउंटर शुरू किया। उसमें 50 केस के वांटेड, फिर से बताना चाहता हूँ
1: जी,
0: उनको हम लोगों ने मार के वहां इनकाउंटर में वो ढेर हो गए। उसके बाद उसमें 4 गिरफ्तारी भी हुआ था उसमें,
1: अच्छा,
0: बहुत सारे नक्सली पर्चे वगैरह बरामद हुए थे उसमें। जी
1: जी, तो ये जो आप बता रहे हैं कि ये जो इनकाउंटर था, ये आपका पहला इनकाउंटर था?
0: ये हाँ, मेरा ये पहला इनकाउंटर था।
1: और वो आपने बताया कि वो 50 केसेस में वांटेड था जिसको आपने मार गिराया।
0: हमने नहीं, हमारी टीम और
1: जी,
0: हाँ, सब
1: एसएसबी की जी। टीम जिसको आप लीड कर रहे थे और एसटीएफ की टीम ने मिलकर के,
0: कुछ कोई ऐसा नहीं होता है कि वो कमांडर ही किसी को मारता है, पूरी टीम का वर्क होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने
0: टीम वर्क है
1: जी। तो जो ऑपरेशन का आपने जैसे जिक्र किया, तो इसकी तैयारी आपने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी?
0: हाँ, एक्चुअली जैसे ही मेरा नक्सल में जो टेन्योर मेरा स्टार्ट हुआ, जो पोस्टिंग मेरा हुआ, उसी समय से मन में तो भावनाएं, हर एक जो भी वर्दीधारी है सबके मन में भावनाएं एक रहती है कि पूरे लाइफ के दौरान कभी ना कभी उनको लाइव गोली चलाने का मौका मिले, इनकाउंटर करने का मौका मिले। सबका सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, लेकिन
1: उनको
0: ये सौभाग्य एसएसबी की तरफ से प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं सदा ऋणी हूँ एसएसबी का।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: और सर, हम जैसे अब थोड़ा सा हम पीछे की तरफ पलट करके जाएं, आपके हम शुरुआत की बात करते हैं अगर, तो आपने जो फोर्स ज्वाइन की, तो कहां से आपको प्रेरणा मिली, कैसे आपने शुरुआत करी? क्योंकि आपने पटना बिहार से बीए ऑनर्स किया था हिस्ट्री में, 2011 में आपने एसएसबी ज्वाइन कर लिया एज इंस्पेक्टर, फिर प्रमोट होते चले गए आप, तो शुरुआत कैसे हुई, कहां से इंस्पिरेशन मिली, कहां से आपको प्रेरणा मिली, कैसे ये जोश जज्बा आया?
0: एक्चुअली जब स्कूल टाइम में थे तो वर्दी पहनने का बहुत शौक था।
1: अच्छा।
0: जी जी जी हाँ।
1: तो ये जो जोश था, ये बचपन से ही था आपके मन में कि देश सेवा करनी है वर्दी पहन करके?
0: जी जी, वर्दी पहनने का बचपन से ही शौक था। उसके बाद फॉर्म आया, उसके बाद फॉर्म फिलअप किए
1: जी,
0: फिर
1: तो परिवार में या कहीं पर भी कोई बैकग्राउंड कहीं से कोई आर्मी का या किसी सैनिक से नहीं था बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड?
0: बैकग्राउंड ऐसा कोई सैनिक का बैकग्राउंड नहीं था, परिवार में मैं फर्स्ट ही हूँ जो मैंने एसएसबी ज्वाइन किया, फोर्स
1: अच्छा,
0: में ज्वाइन किया। जी
1: जी, तो आपने स्कूलिंग के जमाने से ही ये अपना मन बना लिया था कि वर्दी पहननी है?
0: हाँ बिल्कुल, स्कूल के समय से ही सोचे थे कि वर्दी पहनना है और देश के लिए कुछ करना है।
1: तो फिर आपने जब शुरुआत करी, टेस्ट दिया, उसमें आप पास हुए, तो कैसे शुरुआत हुई?
0: हाँ, टेस्ट पास हुई, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग सुरनाबाड़ी में स्टार्ट हो गया। उसके बाद ट्रेनिंग के आफ्टर ट्रेनिंग के बाद फिर मेरा आसाम में पोस्टिंग हुआ।
1: अच्छा।
0: वहाँ भी एनडीएफ के खिलाफ काम हम लोग किए, जो मेरी टीम थी उसके साथ।
1: अच्छा।
0: हाँ, वहाँ फिर एनडीएफ के कैडर भी वहाँ हम पकड़े थे, वहाँ असम में। उसके बाद बहुत सारा मेरा
1: तो सर आपकी जो जी, एक तो एसएसबी का इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर का सर रहता है ना मैनेजमेंट?
0: हाँ हाँ
1: जी, इंडो भूटान। तो आपका जो खास था वो इंडो नेपाल बॉर्डर का था?
0: इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर, फर्स्ट मेरा ज्वाइनिंग तो भूटान बॉर्डर पर हुआ था। उस समय
1: अच्छा।
0: असम जल रही थी एनडीएबी का उससे,
1: अच्छा,
0: तो उसमें एनडीएबी पर भी हम लोग काफी काम किए थे, हमारे बटालियन ने एसएसबी बहुत अच्छा काम किए थे उसमें। उसमें एनडीएबी कैडर भी उसमें हम लोग पकड़े थे, एमुनेशन वगैरह हथियार वगैरह भी पकड़ाया था, बहुत सारे सीजर हुए थे, नार्कोटिक्स का भी बहुत सारा सीजर किए थे उस समय। जी
1: अच्छा।
0: हाँ,
1: तो फिर ये आपके जो शुरुआत हुई, आपने एज सब इंस्पेक्टर शुरुआत करी थी, फिर उसके बाद आपको प्रमोट करके इंस्पेक्टर 2017 में बनाया गया, जीडी। जीडी मतलब जनरल ड्यूटी?
0: जनरल ड्यूटी जी, जीडी मतलब जनरल ड्यूटी।
1: तो ये जाहिर है, ये जो आपको पिकअप मिला, प्रमोशन मिला, तो आपकी कार्यक्षमता पर, आपके जो भी जिस तरीके के आपने जो परफॉर्मेंस दी, जो ड्यूटी आपने परफॉर्म करी, उसकी बिना पर ही मिला, तो वो क्या क्या चीजें थी?
0: एक तो आपका सर्विस सही रहना चाहिए
1: जी।
0: हाँ, और उसके बाद प्रमोशन का समय होता है, 4 साल का 5 साल का ये होता है प्रमोशन, इतने साल में आना है, उसके बाद प्रमोशन मेरा हुआ जी।
1: तो आपने सर शुरुआत करी, आपने जैसे बताया कि असम में आपने सीटीसी सोलोनबाड़ी से आपने शुरुआत करी थी, यहाँ से शुरुआत करी थी आपने अपनी सर्विस की?
0: सोलोनबाड़ी में बेसिक ट्रेनिंग मेरा हुआ।

0: अच्छा बेसिक ट्रेनिंग,
1: हाँ, उसके बाद फिर मेरा वहीं असम में ही पोस्टिंग हो गया।
0: तो 23 बटालियन असम में आपने शुरुआत, अच्छा
1: थर्ड बटालियन लालपुर में मेरा वहां से शुरुआत हुआ जी।
0: तो उसके बाद भी आप सर बटालियन में मतलब चेंज रहा, लेकिन आप रहे असम में ही?
1: हाँ असम में रहे, फिर इंस्पेक्टर के बनने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग असम में ही हो गई, 31st बटालियन गोशाल जी जी।
0: अच्छा जी, फिर उसके बाद आप 32 बटालियन बिहार में गए और उसके बाद फिर 42 बटालियन यूपी में भी आप रहे?
1: हाँ 32 बटालियन, उसके बाद वहीं से मेरा ट्रांसफर 32 बटालियन हुआ जो असम में ही थी। तो बटालियन का पहले रोटेशन होता था।
0: अच्छा,
1: तो वो बटालियन 32 बटालियन रोटेट होके चली गई मुजफ्फरपुर, और वहाँ 27 बटालियन थी वो रोटेट होके आ गई।
0: अच्छा,
1: असम में आ गई होली में जी।
0: ओके, तो सर अभी आप फिलहाल 72 बटालियन सिक्किम में पोस्टेड हैं?
1: हाँ 72 बटालियन सिक्किम युक्सम में मेरी पोस्टिंग हुई है।
0: अच्छा एक चीज सर हम यहाँ जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के आपकी पोस्टिंग रही जगह जगह अलग अलग, तो वो सब मिशंस भी आप उसी तरह के ही रहे जहां पर सामने दुश्मन का सामना करना पड़ता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉर्डर के पीछे रहकर के सिर्फ सिक्योर करना है,
1: जहां जो भी देश विरोधी कार्य हो रहा है उसमें मेरा कोशिश रहता है कि खत्म तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको कम करने का मेरा 100% कोशिश रहता है।
0: जैसे आपने बताया कि वो जो वांटेड एक था अपराधी था जो माओइस्ट था नक्सल, उसको आपने मार गिराया 50 केसेस में, 50 तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था।
1: हाँ उस समय तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये 50 केस का, उसके पीछे एसटीएफ वगैरह भी लगी हुई थी
0: जी
1: जी। हाँ लेकिन
0: तो ये जो आपका पूरा ये जो सर्विस रिकॉर्ड रहा सर, इसमें आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, किस तरीके के उतार चढ़ाव रहे, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप आज भी याद करते हैं?
1: वो जो वाल्मीकि नगर का जो इनकाउंटर हुआ सबसे बेस्ट इनकाउंटर रहा, वो उस चीज को हम याद
0: अच्छा
1: करते हैं।
0: तो ये सर जुलाई 2020 में हुआ था
1: जी
0: जी, तो इसको आप सबसे ज्यादा याद रखते हैं
1: जी, क्योंकि उसे बहुत मेहनत करना पड़ा, टीम वर्क ऐसा था कि हर चीज पर हम लोग डिस्कस करते हैं, हर छोटे चीज से हर बड़े चीज में
0: जी
1: जी जी जी।
0: तो सर इसके बाद फिर आपने कुछ बदलाव महसूस करा कि आपके जो कार्यशैली है, आपका काम करने का तरीका है या आपके ऑपरेशंस का है, और उसमें आपने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, उनको और बेहतर किया और इम्प्रूव किया इस मिशन के बाद से?
1: जी जी, मेन तो अब सोर्स पर सारा चीज डिपेंड करता है, आपका जो सूचना देने वाला। आज भी के मेरा जो मानना है आज के समय में, कितना भी टेक्नोलॉजी कुछ भी आ जाए, लेकिन ह्यूमन इंट, जो ह्यूमन इंट से बड़ा कोई इंट नहीं है।
0: यानी कि जो भी हमारे जो सोर्सेस हमें,
1: हाँ, इन्फॉर्मेशन जो देते हैं, टेक्निकल जो लॉगर वगैरह वो तो दूसरा चीज हो जाता है
0: जी जी,
1: उस पर उतना विश्वास नहीं, लेकिन जो ह्यूमन इंट जो होता है जो, वो आज के भी समय में सबसे बेस्ट है, उसका कोई तोड़ ना हुआ है ना होगा, क्योंकि वाल्मीकि नगर वहां जहां था वहां ना कोई टेक्निकल गजट पहुंचना संभव था, ना कुछ पहुंचना, ना आदमी पहुंचना कुछ संभव था, लेकिन जो ह्यूमन इंट है वही मतलब काम किया।
0: सर हम एक चीज यहां जानना चाहेंगे अपने लिसनर्स के लिए भी कि अगर कोई एसएसबी ज्वाइन करना चाहे सशस्त्र सीमा बल, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, क्या प्रोसीजर होता है, और स्टेप बाय स्टेप अगर आप हमें बता सके तो?
1: आप अगर सब इंस्पेक्टर में बहाल होना है तो ग्रेजुएशन करके उसके बाद फॉर्म निकलता है एसएससी के थ्रू, तो उसमें आप भरिए।
0: अच्छा, तो वो कोई उसकी वेबसाइट होती है या किस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन उसकी आती है?
1: आजकल तो ऑनलाइन भी आ जाता है, उसका फॉर्म मार्केट में फॉर्म आता है, आप फॉर्म फिलअप करिए, उसके बाद आप
0: अप्लाई कर सकते हैं।
1: अप्लाई कर सकते हैं, अगर उसमें जो मापदंड है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं
0: जी, तो ग्रेजुएशन कम से कम इसका क्राइटेरिया है।
1: हाँ ग्रेजुएशन क्राइटेरिया
0: जी। सर हमारे पास, हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं और कुछ लोगों ने हमें मैसेज किया, हम आपको पढ़ करके बताते हैं। जय हिंद रिस्पेक्टेड ऋतुराज सर एंड आरजे साहिद सर, आई वुड बी ग्रेटफुल टू ऋतुराज सर और हमारे सभी ऑल आवर बिलवड इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन विद फियरलेसली एंड डेडिकेटेडली, सो आई पे माई ग्रेटिट्यूड एंड ऑफ कोर्स हार्ट फेल्ट ओबिसियंस टू देम माई सेल्फ। शंकर लोधे फ्रॉम ककरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली से, जय हिंद जय भारत माता की जय वंदे मातरम, आई होप माई मैसेज विल फॉरवर्ड टू रिस्पेक्टेड सर। यस ऑफ कोर्स, आपका मैसेज हमने इंस्पेक्टर ऋतुराज जी को सुना दिया है, तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस मैसेज के जवाब में? ये बहुत आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपको आपको ग्रीट भी कर रहे हैं आपके मिशंस के लिए भी, और आपको बहुत धन्यवाद कर रहे हैं देश सेवा के लिए
1: जी। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वर्दी नहीं पहने वो देश की सेवा नहीं कर सकते, जो वर्दी नहीं भी पहने वो भी देश की सेवा करते हैं। अगर आपके आसपास या कहीं भी कुछ भी कोई भी देश विरोधी सूचना अगर आता है तो नजदीकी पुलिस को या जो भी बल के कार्मिक है उनको आप बताइए और देश की सेवा आप करिए।
0: क्या बात है सर, बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात कही कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहन करके ही आप सिर्फ देश की सेवा नहीं करते हैं, आप वर्दी पहने बगैर भी अलर्ट रह करके, अवेयर रह करके भी, इन्फॉर्मेशन दे करके भी अपने देश की सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं,
1: तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा।
0: बिल्कुल ठीक है आपने, तभी हमारा देश जाहिर है।

0: हमारी जनता और हमारी जो फोर्सेस हैं वो मिलकर के ही इस देश को बेहतर और सुरक्षित बना सकती हैं। एक और मैसेज है सर, सनातन कुमार हैं ये जैतपुर नई दिल्ली से, जय हिंद कह रहे हैं आपको।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये एक मैसेज आया है फ्रॉम ओल्ड लखनऊ अंबरगंज से, प्लीज सॉन्ग शीशे की उम्र पायल की मूवी। ये तो कुछ सॉन्ग की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपको भी जय हिंद बोलते हैं ये।
1: जय हिंद, हिंद का जय तभी होगा जब हम लोग सारे मिलकर काम करें, तभी देश का तरक्की होगा, तभी हमारा देश भी सुरक्षित रहेगा।
0: बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारा देश तभी सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ेगा जब हम सब मिलकर के एक साथ अपने देश की सेवा में तत्पर रहें। सर, आपने अपनी फॉर्मल एजुकेशन के बाद जब SSB ज्वाइन किया, उसके बाद भी आपकी जो सीखने की जो लगन है वो जारी रही, उसके बारे में हमारे लिसनर्स को बताइए, हमारे श्रोताओं को, आपने क्या क्या कोर्सेज उसके बाद भी किए?
1: उसके बाद मैंने CIW कोर्स किया गोल्डम से, उसके बाद फिर INT का कोर्स किया, इंफॉर्मेशन कैसे गैदरिंग किया जाता है, कैसे किया जाता है।
0: ओके, मतलब अपनी फोर्स से ही आपने रिलेटेड चीजें,
1: फोर्स से ही मैंने की। जी।
0: आपने काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर कभी कोर्स किया है सर? हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: एक्चुअली ये हमारा कोर्स गोल्डम में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वही ये कोर्स होता है हमारा ये।
0: अच्छा,
1: कैसे कैसे नक्सल से, कैसे आतंकवादी से लड़ना, ये
0: तो सर ये जो फॉर्मल ट्रेनिंग
1: सिखाया जाता है
0: जी, जैसे SSB में जाने के लिए जो ट्रेनिंग होती है उसके अलावा ये भी वैसे ही कुछ ट्रेनिंग होती है और ज्यादा हार्श और ज्यादा टफ होती है?
1: बेसिक ट्रेनिंग में जैसे आप घर में एक होता है ना, माँ बाप आपको चलना सिखाते हैं, कैसे चलना है, कैसे खाना है, नहीं
0: अच्छा
1: खाना। और बेसिक ट्रेनिंग में वहाँ आपके गार्जियन हो जाते हैं, वो पूरा जितने दिन का ट्रेनिंग होता है आपको कैसे चलना है, कैसे किससे बात करना है, क्या कैसे खाना है, कितना किससे बात करना अपने सीनियर पदाधिकारी से, नीचे से, वो बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है।
0: अच्छा,
1: चलने से लेके हर चीज। और
0: अच्छा,
1: उसके बाद जो कोर्सेस होते हैं ना, उसको आपको टेक्निक सिखाया जाता है कि आपको कैसे दुश्मन से लड़ना है, नक्सल
0: अच्छा,
1: से कैसे लड़ना है,
0: यानी कि पूरा
1: कैसे लड़ना है, उसमें टैक्टिक्स सिखाया जाता है। जी,
0: पूरा टैक्टिक्स। तो ये जैसे इसमें लिखा है कि हमने पढ़ा काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर,
1: जी
0: तो ये तो बड़ा टफ होता होगा, आपकी जो ट्रेनिंग थी उससे भी ज्यादा टफ लगता है कि इसको पढ़ करके?
1: ये काफी टफ ट्रेनिंग होता है इसमें। जी,
0: जंगल तो आपने जी, तो जंगल में ही रहना होता है, उसी के एनवायरमेंट में अपने आपको ढालना होता है,
1: जंगल में रहना होता है, 1 लीटर पानी है उसमें आपको 72 घंटा गुजारना है।
0: अच्छा,
1: ब्रश भी करना है, उसमें खाना भी बनाना है, उसके बाद आपके कैंप पर अटैक भी हो गया और फिर दुश्मन से भी आपको लड़ना है।
0: तो एक लीटर पानी में,
1: 1 लीटर पानी में,
0: और वो भी 72 घंटे,
1: 72 घंटे इस टाइप के ड्रिल, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम बनाए रहते हैं डे टू डे, उसमें आपको एकदम
0: अच्छा। तो कितने दिन की ट्रेनिंग होती है सर?
1: ये ट्रेनिंग करीब 1 महीने का होता है।
0: 1 महीना?
1: जी।
0: तो आपको क्या लगता है, मतलब और भी ऑफिसर्स होते होंगे जो ट्रेनिंग लेते होंगे, तो सब सर्वाइवल कैसे पॉसिबल हो पाता होगा, या कैसे आप इसको पूरा करते हैं इतनी टफ ट्रेनिंग को, क्या तरीका होता है?
1: कुछ नहीं, टीम वर्क है, टीम में लगे रहना है, साथ में हो जाता है सारा चीज। मन में इच्छा शक्ति होती है तो कुछ भी हो सकता है।
0: तो इच्छा शक्ति के साथ साथ सर वो आपकी वो जो एक फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ वो सब भी कॉन्ट्रीब्यूट करती है उसके अंदर, उन सबका भी योगदान रहता है?
1: ट्रेनिंग में जाने से ही फिजिकल स्ट्रेंथ वो जो इंस्ट्रक्टर लोग होते हैं वो बढ़ा देते हैं।
0: अच्छा, यानी कि वो आपको पूरी तरीके से जोश से हमेशा भरे रखते हैं।
1: हाँ,
0: लेकिन सर इसको थोड़ा सा हमें और बताएं कि अगर हमारा लिसनर ये सुन रहा है, वो बड़ा मुझे भी हैरानी होती है कि आपने कहा ना सिर्फ 24 घंटे बल्कि 72 घंटे, तो ये बहुत बड़ा पीरियड हो गया। और आप

0: पहले से नहीं बताते हैं?
1: नहीं, खाना बना रहे हैं, आप पर कैंप अटैक हो गया।
0: ओके हाँ, जैसे ड्रिल ड्रिल
1: ड्रिल ड्रिल हाँ, अच्छा ये सब प्रोग्राम पहले से बना हुआ रहता है जी।
0: तो ये तो बहुत टफ एक तरह से ट्रेनिंग हुई, और जाहिर है तभी आप असल में दुश्मन का मुकाबला कर पाते इतनी जीदारी के साथ।
1: मेरा कहना है ट्रेनिंग हमेशा टफ होना चाहिए, क्योंकि कब कब कौन सा सिचुएशन कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी उस अनुसार अगर आप टफ ट्रेनिंग नहीं कर पाइएगा तो

0: टीम वर्क के जैसा टीम के रूप
1: जी
0: में उनको ढाला जाता है।
1: सर, अगर मान लीजिए कोई अगर मतलब कमजोर पड़ रहा है, बीमार पड़ गया बाई चांस, मान लीजिए वो तो कंट्रोल नहीं उसका, तो फिर कैसे आप फिर उसको अपने साथ रखते हैं, मैनेज करते हैं, उसको पिकअप करते हैं?
0: एक्चुअली फर्स्ट एड बॉक्स भी हमारे साथ जाता है, जहां भी कुछ भी ऑपरेशन वगैरह होता है या कुछ भी पेट्रोलिंग वगैरह भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं। जी हाँ, और जब भी हम लोग जाते हैं तो बड़ी पेयर में ही मूव करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम लोग रुकते हैं।
1: जी
0: ऑपरेशन काफी बड़ा होता है तो फिर हम लोग बेस कैंप बना के रखते हैं नीचे, तो उस बेस कैंप में फिर कुछ कार्मिक को पहले से डिटेल करके रखते हैं, अगर इस टाइप से अगर कुछ
1: जी
0: होता है तो वही कार्मिक उसको लेके बेस कैंप में चले जाएंगे।
1: जी आपके आपके सर कोर्सेज तो और भी बहुत सारे हैं, आपने बड़े ही जोश वाले और बहुत ही हिम्मत वाले कोर्सेज किए हैं। रॉक क्लाइंबिंग आपने किया है, इंटेलिजेंस का भी आपने कोर्स किया है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस का आपने किया है, और FICN वर्कशॉप भी आपने की है।
0: जी जी जी जी
1: तो ये FICN वर्कशॉप क्या होती है?
0: वो फेक करेंसी डिटेक्ट कैसे करना है, कैसे बॉर्डर
1: अच्छा
0: करना है, जी उसके
1: अच्छा
0: उसके उसके बारे में।
1: यानी कि वॉर फ्रंट के अलावा आपने जो है बैकएंड वाली चीजें जिनसे हम टेक्निकली भी अपने आप को मजबूत बना सके वो भी आपने किया हुआ है।
0: क्योंकि बॉर्डर पर तो हर एक तरह का चैलेंज आता है ना,
1: जी
0: उसके
1: जी
0: वो उसमें एक्सपर्ट होने के लिए ट्रेनिंग कोर्स करना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: जी
1: सर, ये जो अब जैसा हम बात कर रहे थे जंगल वॉरफेयर का, आपने जिस तरीके से ट्रेनिंग लिया, तो क्या वो बहुत खतरनाक होता है या आपको मजा भी आया, मतलब एडवेंचर भी था क्या वो?
0: एक्चुअली अगर उसको खतरनाक लीजिएगा तो
1: जी
0: खतरनाक हो, एडवेंचर लीजिएगा तो मजा आएगा।
1: तो आपको कैसा लगा, आपने कैसे उसको किया?
0: मैंने तो अभी तक जितना ट्रेनिंग हुआ सब इंजॉय ही किए। जी
1: सर, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं आप को मैं पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि किसका मैसेज आपके लिए आ सकता है स्पेशली? मैं आपको बता देता हूं,
0: जी
1: राजवीर का यहां पर मैसेज आया है और ये बताते हैं कि कुमार ऋतुराज का मैं भतीजा हूं, प्लीज राज सर को मेरा जय हिंद और फॉरवर्ड करें मैसेज। तो अगर वो सुन रहे हैं तो उनको बता दूं कि आपका मैसेज हमने कुमार ऋतुराज को, इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज को पढ़ करके सुना दिया। सर आपका कोई रिएक्शन?
0: जय हिंद बेटा, बढ़िया से पढ़ो, मन से पढ़ो और देश के काम आओ।
1: बहुत खूब सर, बहुत बहुत बहुत खूब। एक और मैसेज आया है, नमस्ते सर जी, मेरा नाम रोशनी रावत, गांव बंगाना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं, जय हिंद।
0: आपको भी जय हिंद।
1: और भी मैसेज आया है सर, ये है मिस्टर अनमोल अंबावने फ्रॉम थाईलैंड से, सर ये मैसेज कर रहे हैं आपके लिए,
0: जय हिंद आपको भी।
1: आपकी सर हम और भी अचीवमेंट के बारे में आगे हम करेंगे बात, हमारे साथ हैं इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से, और इनकी इतनी एडवेंचरस और इतनी जोश से भरी हुई कहानी हम यहां पर सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, आकाशवाणी रेनबो पर, शाहिर आपके साथ।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स और शाहिद आपके साथ। आप हमें सुन रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर पूरे देश में, 102.6 पर दिल्ली एनसीआर में, मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी दुनिया में हमें आपसे रूबरू जो है न्यूज ऑन एआईआर। आज के संदेश टू सोल्जर के हमारे खास अतिथि इंस्पेक्टर ऋतुराज सशस्त्र सीमा बल से, और हम सुन रहे हैं उनकी जोश भरी कहानियां। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो। सर, क्या कह रहे हैं आपका इस बारे में, जो आपको एक टाइटल दे दिया गया है और इस पर आपको कई सारे गैलेंट्री मेडल्स भी दिए जा चुके हैं।
1: मैं बार बार कहता हूं कि ये सारा टीम वर्क होता है
0: जी।
1: पहले जो गैलेंट्री मेरे सीने पर लगा हुआ है, लेकिन इसमें जितने भी मेरे साथ सबऑर्डिनेट काम किए, जो हमारे सीनियर ऑफिसर जिनके साथ हम काम किए, उन सब का अहम इसमें योगदान है
0: जी।
1: सिर्फ सीना मेरा है, इसमें योगदान सबका है।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही और ये बहुत ही अपने आप में इंस्पायर करने वाली बात है, बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि आप अकेले ही उसको जो है नहीं लेना चाहते, उसकी तारीफ आप अकेले नहीं सुनना चाहते, आप सबके साथ उसको शेयर करते हैं, उस मेडल को भी, अपने अवार्ड को भी, अपनी उस गैलेंट्री को भी। हम बता दें आपको कि पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2 बार दिया जा चुका है, उसके अलावा फर्स्ट बार टू दी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री भी आपको नवाजा जा चुका है। उसके अलावा पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक फॉर कमेंडेबल सर्विस इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में भी, ये भी आपको दिया जा चुका है।
1: हाँ जी, ये आंतरिक सुरक्षा पदक है ये
0: सर। ये किस तरह से होता है ये?

0: इसको हम कैसे अगर डिफरेंशिएट करें गैलेंट्री मेडल से?
1: एक्चुअली ये जो नक्सल में अच्छे काम करते हैं या जम्मू कश्मीर में जो आंतरिक सुरक्षा
0: अच्छा।
1: में जो काम जिनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है
0: जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनमें सर्विस के लिए
1: अच्छे काम करते हैं उनका नाम रिकमेंड किया जाता है बटालियन के द्वारा। उसके बाद फोर्स हेडक्वार्टर में आता है, फिर उनका जो जिनका काम अच्छा रहता है उनका सिलेक्शन होता है, उसके बाद फिर ये मिलता है।
0: अच्छा, और उसके अलावा सर डायरेक्टर जनरल का गोल्डन डिस्क, उसमें वन स्टार और टू स्टार वेरिएंट भी शामिल है, वो भी आपको मिला है, और उसके अलावा डीजे सिल्वर डिस्क भी आपको प्रदान की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे, ये क्या होता है?
1: जी ये वही बताए, काम जिनका अच्छा रहता है जिनका ऑपरेशनल अचीवमेंट अच्छा रहता है।
0: तो सर आपके बैक टू बैक इतने अच्छे और इतने अचीवमेंट रहे हैं कि आपको बैक टू बैक इस तरीके के गैलेंट्री मेडल्स से भी नवाजा गया है, प्रदान किए गए हैं आपको, तो कैसा महसूस होता है जब ये मिलते हैं और कैसा महसूस हो रहा है अब आपको?
1: जी ऐसा होता है, कभी ये सोच के नहीं कि हमको गैलेंट्री मेडल चाहिए या हमको डीजी डिस्क चाहिए, हम अपना जो मेरा काम है वो अपना हम काम करते रहते हैं
0: जी।
1: टीम के साथ मिलके हमेशा सोचते हैं कुछ देश हित में कुछ अच्छा करें, जिसमें हमारे जो सशस्त्र सीमा बल का है वो नाम हमेशा रोशन
0: रहे। क्या बात है सर, बहुत बहुत खूब। आगे बढ़ेंगे हम इंस्पेक्टर ऋतुराज, लेकिन कुछ मैसेजेस हैं जिनको पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। जय हिंद कुमार साहब, मेरा नाम संदीप कश्यप है, पालम दिल्ली से ये मैसेज कर रहे हैं सर आपके लिए। आज की जनरेशन को कैसे मोटिवेट किया जाए देश सेवा के लिए, आपसे अनुरोध है कि कृपया बताएं। बताइए सर।
1: जय हिंद आपको भी। देश हमारा तभी सुरक्षित रहेगा जब सब लोग मिलकर हम लोग काम करेंगे। कोई भी अगर आपके आस पास या कहीं भी कुछ भी देश विरोधी तत्व या कोई देश लगे आपको कि ये देश हित में नहीं अच्छा है या अच्छे लोग नहीं है, तो उनको तुरंत आप नजदीकी पुलिस स्टेशन या जो भी फोर्स वहां काम कर रही है उसको आप बताएं, तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। सब हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करें, या वर्दी पहने हुए हैं या जो वर्दी नहीं भी पहने हुए, देश सबका है, देश तभी सुरक्षित रहेगा जब सब हम लोग मिलकर काम करेंगे।
0: क्या बात है सर, बहुत खूब। और सर एक और बहुत ही स्पेशल विशेष मैसेज है सर आपके लिए, मैं अभी अगर नाम ना बताऊं तो शायद आप पहचान लेंगे, या मैं बता देता हूं। ऋतुराज सर जय हिंद, फीलिंग प्राउड टू लिसन यू, विश यू अ टन ऑफ गुड एनर्जीज, इंस्पेक्टर बरखा निरंकारी सशस्त्र सीमा बल से।
1: जय हिंद आपको भी।
0: ये खास मैसेज सर आपके लिए आया है जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त। इसके अलावा संदेश टू सोल्जर शो बेहद खूबसूरत शो है, जय हिंद वंदे मातरम, यश शिंदे हैं ये मुंबई से सर, ये भी मैसेज कर रहे हैं। और इसके अलावा सर जय हिंद, ऋतुराज जी को भी जय हिंद, आप लोगों की बदौलत हम देशवासी सुकून से जीते हैं, हमें गर्व है। लेकिन कुछ शीश पर बैठे हुए इच्छा शक्ति की कमी से बॉर्डर के अलावा आंतरिक सुरक्षा पर आपके विचारों को अपने विचारों को व्यक्त करें, ये कृष्ण साहू हैं रायपुर से छत्तीसगढ़।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है, जय हिंद भारत माता की जय, मोनू सेठ खालिसपुर अमेठी से सर ये आपको मैसेज कर रहे हैं, सलाम है आपके जज्बे को, जय हिंद कह रहे हैं सर ये आपसे।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये मैसेज है, मेरा भतीजा भी आपके एसएसबी में है और भारत माता की सेवा कर रहा है, मुझे बेहद गर्व है। ये है सर सुशील कुमार नई दिल्ली से।
1: जय हिंद आपको भी।
0: और ये एक और मैसेज है सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड वन से जय हिंद कह रहे हैं आपको।
1: जय हिंद आपको भी।
0: सर ये सारे जोशीले मैसेज जो हैं, इनकी लग रहा है इन मैसेज को पढ़कर कि वो दिल से और बहुत ही जज्बे के साथ आपको भेजे गए हैं, तो इस पर आप कुछ अपनी तरफ से भी कुछ बताएं, और ये भी बताएं कि एसएसबी के लिए जैसे कुछ लोगों ने पूछा तो एक बार और उनको बता देंगे क्या तरीका है, कैसे जा सकते हैं, और जो आपने महसूस किया इन मैसेज के जरिए वो भी उन तक पहुंचाएं अपने दिल की बात।
1: आप अगर कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हैं तो मैट्रिक इंटर करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और अगर आप सब इंस्पेक्टर में भर्ती होना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद, और असिस्टेंट कमांडेंट में भी अगर भर्ती होना चाहते हैं तो यूपीएससी के थ्रू फॉर्म आता है, तो उसमें भी आप डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती हो सकते हैं
0: जी। और इसके अलावा सर हमें ये भी आप बताइए, क्योंकि अब हमारे पास समय भी कम बचा है और मैसेज भी लगातार अब आ ही रहे हैं, तो मैं मैसेज बाद में पढ़ूंगा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि सर जिस तरीके से आपकी सर्विस ये रही है और जिस तरीके से आपने डेडिकेशन के साथ अपनी सर्विस को पूरी तरीके से पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं आप कर रहे हैं, तो आप हमारे जो यूथ है, हमारा जो यंग जनरेशन है, उसको कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से हम उसको भी, जो अगर नहीं है उस तरीके की सोच रखता है, तो कैसे उसको मोटिवेट करें?

0: देश सबका है, हमारा जितना है सबका देश है, उसमें सबका सहयोग चाहिए। आजकल युवा थोड़ा नशे के तरफ मोटिवेट हो रहे हैं, उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, जंक फूड की तरफ कम ध्यान दीजिए, अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य ही आपका धन है, स्वास्थ्य अगर आप सही रखेंगे तभी आपका सोच अच्छा रहेगा, और जब सोच और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक है देश हमारा अच्छा रहेगा। जी
1: बिल्कुल सर, एक मैसेज है, जय हिंद ऋतुराज सर एंड नमस्ते आरजे सर, मैं अपने सारे फौजी भाइयों को दिल से सैल्यूट करती हूं, उनकी उनकी सभी उनकी शक्ति वीरता के साथ देश की सेवा करने के लिए हमेशा उनका आभारी रहूंगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अंजलि लोड फ्रॉम गुमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड से ये सर मैसेज किया है इन्होंने।
0: जय हिंद आपको भी।

0: तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में आप हमारे साथ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर ऋतुराज, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और उनकी वीरता, उनके समर्पण, उनके साहस, अदम्य साहस के लिए और उनके जज्बे के लिए बलिदान के हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं उनके इस जज्बे के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए।
1: सशस्त्र सीमा बल की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सर जाते जाते हम एक बहुत ही जोशीला गाना, जैसे कि आपने कहा कि ये जोश और ये जज्बा बहुत जरूरी है अपने देश के लिए, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
0: आप सुन रहे थे संदेश टू सोल्जर्स, आज के हमारे खास मेहमान इंस्पेक्टर कुमार ऋतुराज SSB से, और शायद अब आपसे यहां से लेगा विदा, आ गई है श्वेता लेकर के सिप लाइट्स। आप सुनते रहे हैं रेनबो दिल से दिल तक।
2: तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जा रहा था FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के

थारी मारी पसंद कार्यक्रम सुननी है सारे बण भैया ने। आजाद भाई की राम राम। थारी मारी पसंद कार्यक्रम में किसे कहानी गीत रागनी हम आपके लिए ले क्या करें। गर्मिया का टेम है और वे इस टेम पे लोग धान की रोपाई कपास की नड़ाई और अड़ाई का काम करने लाग रहे हैं। बरसात का भी टेम है हम तो यही गुहार करेंगे है दाता मारे पतरस और टेम का बरस क्योंकि पानी के बिना सब सुनना है। मारा भी फर्ज बने कि पानी को हम बचा कर रखें। जल है तो कल है जल ही जीवन है। पानी को बढ़ा नहीं जा सकता पानी को बचा जा सके है। बरसात के मौसम में पानी को बर्बाद ना होने दें अपने डोले नाके मजबूत रखे जा ताकि किले का पानी किले में रह जा बाढ़ जैसी स्थिति ना बने। ये योजनाएं हमने ज्यादा बरसात से पहला कर लेनी है ताकि पानी जब खेत की खेत में रहोगा तो बाढ़ जैसी समस्याओं का निदान हो सकेगा। और वही बात थारी मारी पसंद की किस्से की बात हर रागनी के साथ किस्से का मजबून बता दिया करें। प्रस्तुति आजाद सिंह प्रस्तुतकर्ता श्री पवन कुमार। ये कार्यक्रम आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सके हैं। हरियाणवी लोक संगीत की बहार आकाशवाणी एसआर कार्यक्रम लोक रंग हर रोज सवेरे 7:10 पे। खेती बागवानी और किसानी का कार्यक्रम किसान वाणी और खेती किसाना सीती कार्यक्रम हर रोज शाम 7:00। मारे गांव हर रोज शाम 7:30। किस्से की बात हर रागनी के साथ कार्यक्रम थारी मारी पसंद हर वीरवार को शाम 5:00। मारी हरियाणवी लोक संस्कृति का कार्यक्रम लोक मंच हर मंगलवार को रात 8:00। रागनी एक किस्से की कार्यक्रम मारी पसंद हर एतवार को शाम 7:00। हरियाणवी सांग का आनंद आप ले सके हैं हर दूसरे एतवार ने शाम 7:00। ये सभी कार्यक्रम आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सके हैं। कार्यक्रम की पहली रागनी किसा फूल सिंह नौटंकी माते। बात उस टीम की जब उस फूल सिंह ने नौटंकी के लिए बहुत बड़ी आर बनाया। उस आर ने लेके वह मालन नौटंकी के पास पहुंच गई। जब उस नौटंकी ने वो आर देखा और पूछा साची बताए मालन यू आर किसने बनाया। डरती डरती वह मालन कहन लगी यू आर तो मेरे भाणजे की बहू ने बनाया। वह नौटंकी कहन लगी उस भाणजे की बहू ने तावली मेरे द्वारा बुला के लिया। जब वह नौटंकी उल्टी आके उस फूल सिंह ते कहन लगी आए भाई तने तो मैं मरवा दी इब तू जनाने कपड़े पहन और भाणजे की बहू बन जा। फूल सिंह कहन लगा अरे मालन इब या कार करनी पड़ेगी। वह मालन फूल सिंह ने कहन लगी भाई जनाना बाणा पहन में कोई दोष को ना। वह मालन उस फूल सिंह को क्या समझाती है उस मौके की बात राजवीर कमास खेड़िया और साथियों की आवाज में।

कार्यक्रम की अगली पेशकश आजाद सिंह खांडाखेड़ी और साथियों की आवाज में बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। समाज में बेटी बहू की कदर बड़ी जरूरी, समानता का दर्जा बहुत जरूरी। दुबात की सेठ भी माड़ी, बेटा बेटी एक समान, जब बे होगा देश महान।

कार्यक्रम की अगली रागनी किस्सा चंद किरण माते मदनपुर के राजा मदन सेन कंचनपुर के राजा नारायण सिंह की कुंवारी बेटी चंद किरण के फोटो ने देख के अपनी अकल खराब कर ले है और वो चंद किरण के फोटो की खटक में चंद किरण की खोज खबर में चाल पड़ा। एक बुढ़िया ते चंद किरण का अता पता पूछा। वह बुढ़िया बोली, भाई जड़े में आरना गेरू न्यू समझ लिए ओड़े चंद किरण का मेल है। वह बुढ़िया आरना गेर के आगे सी लिकट जा है। जब राजा मदन सेन ने उस चंद किरण का मेल देखा चकरा गया। उस मौके की बात बाली शर्मा और साथियों की आवाज में।

ਬੋਲ ਕੇ ਕਾ ਛੋਲੀ ਬੋਲ ਕੂ

कार्यक्रम की अगली रागिनी की सा पद्मावत। बात उस टाइम की जब वो सहेलियां पद्मावत ने जुलाउन लाग गई और जुलाते जुलाते जोटा फिर गया। पद्मावत कहने लगी, आए बेबे तमने जुला।

0: खेती बाड़ी बागवानी पशुधन और किसानी का कार्यक्रम खेती किसाना सेती और किसानवाणी कार्यक्रम हम आपके लिए रोज शाम ने 7 बजे लेके आ कर रहे हैं। शिक्षा संस्कृति स्वास्थ्य और संस्कार का कार्यक्रम हमारे गांव हर रोज शाम को 7:30 बजे किस्से की बात हर रागनी के साथ कार्यक्रम थारी मारी पसंद हर वीरवार ने शाम ने 5 बजे रागनी एक किस्से की हर एतवार ने शाम 7 बजे मारी लोक संस्कृति का कार्यक्रम हरियाणवी लोक मंच हर मंगलवार को रात 8 बजे हरियाणवी सांग का आनंद आप ले सके हैं दूसरे एतवार ने शाम 7 बजे आकाशवाणी एसआर के प्रसारण आप न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सके हैं। इसके अलावा गूगल पे लिखें 102.3 एफएम एसआर लाइव स्ट्रीम में भी आप आकाशवाणी एसआर के प्रसारण साफ और स्पष्ट आवाज में सुन सके हैं। कार्यक्रम की अगली रागनी की साख कृष्ण जन्म माते मौका उस टेम का जब वो देवकी अपने भाई कंस ते दया की भीख मांगन लाग रही कहन लगी देख भाई मेरे गर्भ ते जो संतान पैदा होगी मैं तेरा वाला कर दूंगी आरे भाई त्री बाण की बारात तेरे बाल ना गारी तेरा बनोइया वासुदेव पहुंच रहा कुछ तो सोच कौन के वो देवकी अपने भाई कंस को क्या समझाती है उस मौके की बात मास्टर सतबीर भैंसवालिया और साथियों की आवाज में
1: मचन्या मारे टेक बिगड़ जा ने

चेरी चचेरी बहन मानती कान समझ के नाता।

0: बात उस टाइम की किस्सा पिंगला बर्तरी माते। जब वो दरोगा रानी पिंगला के महल में वारी आया तो पिंगला उसको बहुत उलाने मीने देने लाग गई। रानी पिंगला की नीत खराब थी। वह पिंगला उस दरोगा को क्या कहती है उस मौके की बात पासी नैयर और साथियों की आवाज में।
1: ओ गहनी दे

किसी कुसी मने ओ मत ना समझे मैं अकल बंद घनी सियाणी दक्के

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश बैल की आत्मकथा। सारी उम्र हल चलाया, खेत कमाया, बूढ़ा हो गया, गुमैन पे बंध रहा है, डर लग गए है। कदे थोड़े बहुत पेशा के लालच में जमींदार तने बेच नहीं दे वो बल्द, वो बैल, वो गऊ का जाया। अपने उस किसान ने के है उस मौके की बात राकेश कलोया और साथियों की आवाज में।

ये थी कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, बैल की आत्मकथा। हमारे कार्यक्रम आपने किसे लाग रहे हैं, इस बारे में ठोस ठीक प्रतिक्रियाएं जरूर लिखा करें। इस पते पे कार्यक्रम थारी मारी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी एसआर पिन 125001। हमारा प्रयास रहे आपके लिए नए पुराने गीत रागनी किसे कहानी लेके आवे, खुद भी इन गीतों को सुने, आने वाली पीढ़ी को समझावे, अपने रागनी गीत गायकी के इतिहास को समझावे, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने गौरवमयी गीत संगीत के इतिहास को जान के अपने आप को धनाढ्य महसूस करें। ई गरा चालन काटे मोरा है। इसी के साथ है आज का थारी मारी पसंद कार्यक्रम समाप्त करने के अपने भाई आजाद दुवन ने दी अनुमति। सारे बाण भैया ने राम राम।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आप

0: वो जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बदलो बदलो आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने

अभी आप सुन रहे थे आज़ाद भाई के साथ कार्यक्रम थारी म्हारी पसंद। FM एंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने आज नई दिल्ली में वार्ता के दौरान कई क्षेत्रों में आपसी संबंध मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। नई दिल्ली में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने यह स्वीकार किया कि ये विश्वास का रिश्ता है और बातचीत में ये विश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आज की बातचीत में ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। विदेश सचिव ने कहा कि वार्षिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कई निर्णयों को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष हैं और आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता के एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है।
1: भारत जापान संबंध वाकई बहुत स्पेशल है। हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की सफलता के कई उज्जवल उदाहरण है। अभी अभी हमने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी के नए प्लांट का उद्घाटन किया। आज पूरे विश्व में सुजुकी की 2/3 कार्स भारत में बनती हैं और 100 से अधिक देशों को एक्सपोर्ट होने जा रही है।
0: प्रधानमंत्री

0: कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में समझौते किए हैं। ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक जगत इस समय आपूर्ति श्रृंखला अड़चनों, व्यापार अनिश्चितता और वैश्विक मांग में गिरावट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आज आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। नई दिल्ली में श्री पुरी ने बताया कि अगले 6 से 12 महीनों में देश की रिफाइनिंग क्षमता को 30 करोड़ मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जाएगा। त्रिपुरा के अगरतला में आज राज्य स्तरीय विकसित भारत जी राम जी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर त्रिपुरा के श्रम मंत्री टिंकू रॉय ने कहा कि नई योजना प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। योजना के अंतर्गत दैनिक मजदूरी 256 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर चंदा घोटाला मामले में आरोपी लवकुश मिश्रा से जुड़ी एक निर्माणाधीन संपत्ति पर नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण के सचिव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि भवन निर्माण नियमों के संदिग्ध उल्लंघन के कारण ये नोटिस जारी किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता ग्रैंड आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि समारोह में उच्च स्तरीय उपस्थित दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 मैच में आज रात इंगलवुड में स्पेन का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा, वहीं टोरंटो में पुर्तगाल का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। कल सुबह वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और अल्जीरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। इन समाचारों का अनुप्रसारण किया जा रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, आपको बता दें हमारे केंद्र से आज शेष रहे और कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। प्रभु वंदना का कार्यक्रम भक्ति संगीत आप सुन सकेंगे आज सायं 6:20 पर। कार्यक्रम युवा उमंग आप सुनेंगे सायं 6:30 पर। और आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे सोशल मीडिया रील्स की लत से कैसे बचें। कार्यक्रम किसान वाणी आप सुन सकेंगे सायं 7:00। और आज इस कार्यक्रम में होगा फोन इन प्रोग्राम, जिसका विषय रहेगा खरीफ फसलों में सूत्रकृमि प्रबंधन। और किसान भाइयों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित होंगे डॉक्टर सरदूल सिंह मान। साय 7:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम महारे गांव का। कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने आप सुन सकेंगे रात्रि 8:00। और राष्ट्रीय हिंदी समाचारों का समय रहेगा रात्रि 8:45 पर।

रात्रि 9 बजकर 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के प्रसारण, और रात्रि 10 बजे सुनिएगा हमारे केंद्र से कार्यक्रम ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आज रात 10 बजकर 30 मिनट से आप सुन सकेंगे आईसीसी महिला T20 विश्व कप के अंतर्गत इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच क्रिकेट मैच का लंदन के द ओवल क्रिकेट ग्राउंड से सीधा प्रसारण। अब प्रसारण कल के लिए, कल प्रातः 7 बजकर 5 मिनट पर सुनेंगे हमारे केंद्र से कार्यक्रम लोकरंग। कार्यक्रम सुप्रभात का समय रहेगा प्रातः 7 बजकर 40 मिनट पर, और प्रातः 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्ते हिसार। कार्यक्रम हेलो हिसार आप सुन सकेंगे कल साई 5 बजे। भक्ति संगीत का समय रहेगा कल साई 6 बजकर 20 मिनट पर, और कार्यक्रम युवा उमंग आप सुनेंगे कल साई 6 बजकर 30 मिनट पर। कल साय 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम खेती किसाना सेती। कार्यक्रम महरे गांव का समय रहेगा साय 7 बजकर 30 मिनट पर, और कल रात्रि 8 बजे आप सुन सकेंगे पंजाबी गीत, और कल रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे। FM बैंड 102.3 MHz पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 6 बजकर 10 मिनट होने को है। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिनका रिले हम करेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: थाना उपमंडल के गांव धरोदी से जिले में विकसित भारत जी राम जी योजना का शुभारंभ किया गया। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने राजनीतिक दलों से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के मुताबिक अपने बूथ लेवल एजेंटों की बूथ लेवल अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करने का आह्वान किया। हरियाणा पुलिस के मादक पदार्थ रोधी प्रकोष्ठ ने एक कार से 53 किलो 240 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया और हरियाणा में मॉनसून का आगमन, अधिकांश जिलों में रुक रुक कर हल्की बारिश जारी, मॉनसून के पूरे हरियाणा में पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 देश में रोजगार सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविकों को मजबूत करने और गांवों के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज तिरुपति जिले के एक गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब मजदूर बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार मिले।
1: मनरेगा में केवल 100 दिन रोजगार मिलता था, विकसित भारत जी राम जी योजना में पूरे 125 दिन मजदूर को रोजगार मिलेगा। और रोजगार देने की बात प्रधानमंत्री ऐसे नहीं कह रहे हैं, पहले साल ही विकसित भारत जी राम जी योजना में केंद्र ने जो अपना पैसा

0: वह है 95,600 करोड़ रुपया और राज्यों का 40% शेयर मिलेगा तो एक साल में ही खर्च होंगे 1,51,282 करोड़ रुपया।
1: जींद के अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप कुमार ने आज नरवाना उपमंडल के गांव धरोदी में अन्य अधिकारियों कर्मचारियों तथा स्थानीय श्रमिकों के साथ तालाब से मिट्टी खुदाई व उठान के कार्य में शामिल होकर वीबी जी राम जी योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जिला जींद में धरोदी गांव से इस योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना ग्रामीण श्रमिकों के लिए वरदान साबित होगी। इस योजना के लागू होने से श्रमिकों के रोजगार आजीविका एवं आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार आएगा और साथ ही ग्रामीण विकास को और गति मिलेगी। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि सरकार द्वारा पहले से संचालित मनरेगा योजना को संशोधित कर श्रमिकों के हितों को और अधिक प्राथमिकता दी गई है। योजना के अंतर्गत अब ग्रामीण श्रमिकों को 100 दिन की बजाय 125 दिन सालाना रोजगार की गारंटी होगी। योजना के दायरे को और बढ़ाया गया है। इसमें तालाब, नहर, माइनर, राजबाहा, वाटरवर्क्स, स्कूल, शमशान घाट, जल प्रबंधन, पौधारोपण, खेतों के रास्तों में रख रखाव, सफाई व सुदृढ़ीकरण जैसे अनेक गतिविधियों को शामिल किया गया है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने सभी राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से आह्वान किया है कि वे भारत निर्वाचन आयोग के आदेश अनुसार राज्य में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के मुताबिक अपने बूथ लेवल एजेंटों की बूथ लेवल अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करें। श्री ए श्रीनिवास आज चंडीगढ़ में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक कर रहे थे। राजनीतिक दलों से इन बैठकों की तिथि व समय की जानकारी चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों को अग्रिम रूप से सूचित करने और बैठकों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया। मतदाता सूचियों का यह विशेष गहन पुनरीक्षण 14 जुलाई तक जारी रहेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 22 सितंबर को होना निर्धारित हुआ है। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में गणना फॉर्म वापिस नहीं मिले हैं वहां बूथ स्तर के अधिकारी पड़ोस के निवासियों से पूछताछ कर अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट जैसे संभावित कारणों की पहचान कर सकते हैं और उसी के अनुसार रिकॉर्ड दर्ज कर सकते हैं। बीएलओ को निर्देश दिया गया है कि वे जानकारी एकत्र करने के लिए ऐसे प्रत्येक घर का कम से कम 3 बार दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं है उनकी बूथवार सूची पंचायत भवनों, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों और ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारियों के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी ताकि जनता की इन सूचियों तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही नाम शामिल न होने के संभावित कारण भी प्रदर्शित किए जाएंगे। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि यदि घर घर सर्वेक्षण के दौरान कोई मतदाता मौजूद नहीं है तो परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य फॉर्म पर हस्ताक्षर करके उसे बीएलओ को सौंप सकता है। जींद जिले के उचाना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री ने कहा है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के मासिक मानदेय में वृद्धि से राज्य के करीब 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को लाभ होगा। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार द्वारा 2 दिन पहले ही ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के मासिक मानदेय में 2100 रुपए की वृद्धि की गई है। श्री देवेंद्र अत्री ने कहा कि भाजपा सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
2: कि हमारी सरकार जो वादा करती है वो पूरा करती है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दौरान भी

0: बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हिसार पुलिस के मादक पदार्थ रोधी प्रकोष्ठ ने एक कार से 53 किलो 240 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। तस्करी में इस्तेमाल कार को भी जब्त कर लिया गया है। हिसार के पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने बताया कि मादक पदार्थ रोधी प्रकोष्ठ की टीम ने गश्त के दौरान एक सूचना मिलने पर रायपुर चौक के निकट नाकाबंदी की। पुलिस टीम को देखकर कार में सवार तीनों युवक वाहन को मौके पर छोड़कर खेतों की ओर भाग गए। तलाशी के दौरान कार से तीन प्लास्टिक के कट्टों में रखा 53 किलो 240 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ। बरामद डोडा पोस्त एवं तस्करी में इस्तेमाल कार को नियमानुसार कब्जे में लेकर सील किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कार राजस्थान के करौली जिले में पंजीकृत पाई गई। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। हरियाणा पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि हरियाणा पुलिस नशा तस्करों के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा में मॉनसून का आगमन हो गया है। कल रात से प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खीचड़ ने कहा कि मॉनसून के पूरे हरियाणा तक पहुंचने में अभी समय लगेगा।
1: हरियाणा में ज्यादातर क्षेत्रों में कल देर रात्रि के बाद में बारिश शुरू हुई है और अपने हिसार में भी 10.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है जो सुबह 8 बजे तक। उसके बाद में कुछ एक स्थानों पर बारिश है। आज भी दक्षिण हरियाणा में और उत्तरी हरियाणा में कुछ एक स्थानों पर बारिश हो रही है, तो ये लगातार अभी चलेगी। कल और दो दिन तो थोड़ा कम है, परंतु 4 जुलाई के बाद में 7 जुलाई तक अच्छी बारिश की संभावना। मानसून 8 जुलाई तक एक्टिव रहेगा और 8 जुलाई तक कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है, परंतु ज्यादातर स्थानों पर कहीं हल्की और कहीं मध्यम बारिश।
0: उन्होंने कहा कि पश्चिमी जिलों हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी में थोड़ी कम बारिश हो सकती है। दक्षिण हरियाणा में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि फसलों के लिए यह बारिश लाभदायक है। धान की रोपाई में इस बारिश से फायदा होगा। बाजरा और अन्य फसलों की भी अब बिजाई हो सकेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सीनियर सेकेंडरी की कंपार्टमेंट आंशिक अंक सुधार और अतिरिक्त विषय की एक दिवसीय परीक्षा एवं सेकेंडरी और की कंपार्टमेंट आंशिक अंक सुधार एवं अतिरिक्त विषय की जुलाई 2026 की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आज जारी कर दिए हैं। बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ एवं सचिव मुनीश शर्मा ने बताया कि प्रवेश पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर लाइव कर दिए गए हैं। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से पिछला अनुक्रमांक, नाम, पिता का नाम, माता का नाम भरते हुए डाउनलोड कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा, विकसित भारत जी राम जी मिशन गांव के विकास में तेजी लाएगा। जींद के नरवाना उपमंडल के गांव धरोदी से जिले में विकसित भारत जी राम जी योजना का शुभारंभ किया गया। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने राजनीतिक दलों से मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के मुताबिक अपने बूथ लेवल एजेंटों की बूथ लेवल अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करने का आह्वान किया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले किए जा रहे थे। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम भक्ति संगीत।

अभी आप सुन रहे थे प्रभु वंदना का कार्यक्रम भक्ति संगीत FM बैंड 102.3 MHz पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 6:30 हुए हैं। अब युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम युवा उमंग। और आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो विषय रहेंगे वो हैं सोशल मीडिया, रील्स की लत से कैसे बचें और सुर्खियों में SIR। और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी मनीषा सूर्यवंशी।

कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय है स्क्रीन एडिक्शन, खासकर रील्स एडिक्शन के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद गुरु जंगलेश्वर यूनिवर्सिटी के छात्र इस विषय में क्या सोचते हैं, साथ ही कुछ गाने और आखिर में हाल ही में सुर्खियों में चल रहे SIR अभियान के बारे में भी हम बात करेंगे। श्रोताओं, जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हमारी सुबह की पहली किरण वही है और रात अंधेरे रोशनी वही है, जो पल पल हमारा हाथ थामे रहता है, जो हर वक्त साथ रहता है। सूचना का संसार यही है, शिक्षा का भंडार यही है, मनोरंजन की फुहार यही है और अपनों से संबंध का आधार भी यही है। जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं हमारे मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया के बारे में। श्रोताओं, हम में से अधिकतर लोग इस बात से सहमत रहेंगे कि आजकल सुबह आंख खुलते ही हमारा हाथ मानो अपने आप ही फोन को ढूंढता है और आदतन ही हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि अब सुबह की अखबार और चाय की जगह मोबाइल फोन्स ने ले ली है? सुबह की पहली किरण अब खुले आसमान में सूरज की रोशनी नहीं बल्कि मोबाइल फोन्स की छोटी सी स्क्रीन है। सुबह पानी पीने से पहले, ब्रश करने से पहले और बिस्तर से निकलने से पहले जिस कार्य को हम अहमियत देने लगे हैं वो है सोशल मीडिया। आज के इस कार्यक्रम में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम स्क्रीन एडिक्शन, खास करके सोशल मीडिया पर रील्स एडिक्शन के शिकार बनते जा रहे हैं, जानेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है और इस दलदल से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी इस वार्तालाप में आपके और मेरे साथ जुड़ने वाले हैं गुरु जंगलेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुछ छात्र, जो अपने किस्से हमारे साथ साझा करेंगे कि किस प्रकार वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन एडिक्शन आज किस हद तक हम पर हावी हो गया है और इस लत से बचने के लिए इन छात्रों के क्या उपाय हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज मोबाइल फोन्स हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि एक बेहतरीन साधन है और सूचना, शिक्षा, मनोरंजन के साथ साथ संबंध के लिए, संवाद के लिए हर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इससे पहले कि हम स्क्रीन एडिक्शन की बात करें, श्रोताओं, हमारा ये समझना जरूरी है कि आज दुनिया में ज्यादा से ज्यादा काम स्क्रीन्स पर हो रही हैं और इस रफ्तार भरी जिंदगी में हमें साथ चलना होगा और साथ चलने के लिए जुड़े रहना जरूरी है। इसलिए हमें जो जोड़े रखता है इस मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया, आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, ध्यान कीजिए कि सरकार द्वारा जरूरी सूचनाएं अब सीधे मोबाइल फोन्स में आती है। फोन्स के जरिए दुनिया भर की खबरों को हम चुटकियों में जान सकते हैं। आज बच्चों के स्कूल के नोटिफिकेशंस के लिए, पढ़ाई में ऑनलाइन क्लासेस और कोचिंग के लिए, दूर बैठे अपनों से बात करने के लिए, अपने बिजनेस को कम से कम पैसों में वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए और ऑफिस की ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए भी हमें मोबाइल की जरूरत पड़ती है। लेकिन श्रोताओं, आपने ध्यान दिया होगा कि इन सब में से कोई भी स्क्रीन एडिक्शन का कारण नहीं है। स्क्रीन एडिक्शन है सुबह उठते ही बिना सोचे फोन उठाना, रात में अनिद्रा रहकर आंखें भारी होने तक रील्स देखना, ऑफिस में मीटिंग के बीच में म्यूट पर रील्स देखना, क्लास में छुपकर फोन में जाकर रील्स देखना, बाथरूम में रील्स देखते देखते लंबे समय तक रहना, साथ ही गाड़ी चलाते हुए भी रील्स देखना, ये सब है स्क्रीन एडिक्शन। आज घरों में अक्सर एक ही दृश्य देखने को मिलता है, एक ही कमरे में पूरा परिवार बैठा होता है लेकिन आपस में बातचीत के बदले हर व्यक्ति अपनी अपनी स्क्रीन में गुम होता है। श्रोताओं, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ कि आपने सोचा हो कि बस एक और रील, ये आखिरी रील, और ये सोचते सोचते जब हम ध्यान देते हैं तब तक आधा एक घंटा बीत चुका होता है। साथियों, यही है एडिक्शन यानी नशा। नशे की परिभाषा है एक ऐसी आदत जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। आज सोशल मीडिया एक साधन के रूप में इतना हावी हो गया है कि अब ये हमारे लिए एक बाधक बन बैठा है। विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ वार्ता से पहले सुनते हैं एक गाना।

0: प्रिय श्रोताओं, आइए हम विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों से सोशल मीडिया के बारे में चर्चा करते हैं।
1: मेरा नाम काव्या है, मैं विभिन्न डिपार्टमेंट से हूँ और मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हूँ। और सोशल मीडिया जैसे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है आज की जनरेशन के लिए। और जैसे कि हमें पता चलता है कि क्या चल रहा है आसपास का एनवायरमेंट कैसा है, और अपने फ्रेंड सर्कल से भी कॉन्टेक्ट इजिली हो जाता है, मतलब जो बहुत दूर दूर तक भी है।
2: बिल्कुल। क्या आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी हम सोशल मीडिया का कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं?
1: हाँ, ऐसे लगता है, लेकिन जब एग्जाम्स पास आते हैं तो थोड़ा उसको कंट्रोल भी करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको थोड़ा आइडिया देती हूँ, ऐप अनइंस्टॉल कर दो, मतलब कुछ भी, तो मतलब ऐसे करो कि आपका पढ़ाई में भी मन लगे और आपके डिस्ट्रेक्शंस भी कम हो।
3: मेरा नाम भाविका है, मैं गुरुजन विश्व यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं बीए मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। हाँ, मुझे सोशल मीडिया पसंद आया, मतलब मैं उसको एंजॉयमेंट के लिए भी करती हूँ, मैं स्टडी बेसिस पे भी करती हूँ उसका यूज। अभी तो मैंने ये मीडिया

0: मास कम्युनिकेशन ज्वाइन किया है, ये मेरे सिलेबस का ही है पार्ट, मतलब मीडिया मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं उसमें से अपनी स्टडीज की भी मटेरियल लेती हूँ, बट समटाइम्स मैं इसको एंजॉयमेंट के लिए भी लेती हूँ, और मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उनसे बातें करने के लिए इसका यूज कर लेती हूँ, कुछ अपडेट्स के लिए यूज कर लेती हूँ। और
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्या आपको ऐसा लगता है कि जहाँ सोशल मीडिया को आप पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं और अब आपका आपकी सिलेबस का भी हिस्सा है वो, वही कहीं ना कहीं लगता है कि ज्यादा इस्तेमाल हम कर रहे हैं कि रील्स एडिक्शन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं?
0: अगर मैं सोशल मीडिया पे रील्स देखने लग जाती हूँ, स्क्रॉलिंग चलती रहती है, होता है कि एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, वो थोड़ा टाइमलेस भी हो जाता है, बट वही है थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए यूज कर लेते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और क्या कहना चाहेंगी अपने बाकी युवा साथियों को कि हम किस प्रकार से इस लत से बच सकते हैं?
0: धीरे धीरे बनेगी, वो एकदम से नहीं हो पाता, लेकिन अगर जैसे मैं तो मेरा उससे बताती हूँ, मैं जब एग्जाम टाइम आ जाते हैं तो ऐप अनइंस्टॉल कर देती हूँ और फिर अपने पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान देती हूँ, फिर ना ही ऐप होगा ना ही यूज होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच भाविका।
0: थैंक यू।
2: हाय, मेरा नाम आयुष राज है, मैं सिविल डिपार्टमेंट में पढ़ रहा हूँ और गुरु जामनेश्वर यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और सिविल थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। सोशल मीडिया का यूज हम सब एक अच्छे पैमाने पे कर रहे हैं, उसका यूज हम सब स्पेशली पढ़ाई के लिए करते हैं, बहुत जगह हम सबका यूथ है तो बहुत जगह यूज हो रहा है, लेकिन उसका डिफॉल्ट भी हमारे लाइफ में हो रहा है, क्योंकि घर में बैठे बैठे फोन चलाते हैं तो आपस का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, दोस्तों में आपस की बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है। इससे एक नजरिए में देखे तो ये बहुत बेनिफिशियल है, एक नजरिए में देखे तो हमारे जो इंटरनल बॉन्डिंग है वो काफी कमजोर होती जा रही है, तो सोशल मीडिया हम पे अच्छा बुरा दोनों फर्क पड़ता है, यह सिक्का का दो पहलू है। सोशल मीडिया से परहेज करना इस टाइम बहुत जरूरी हो गया है और इसके लिए हम बहुत सारे दोस्तों में बातचीत हुई तो एक माइंडफुल नाम का ऐप हमारे बीच चर्चा में आया, इसका यूज हम खुद से किए हैं और सेल्फ ऑब्जर्वेशन से हम बता सकते हैं ये बहुत ही यूजफुल है। इसके मेनली दो बेनिफिट हैं कि इसका यूज करने से सबसे पहले किसी भी ऐप को आप सोशल मीडिया ऐप को ओपन करिएगा तो 20 सेकंड का टाइम लेता है, जिसमें आपको एक अच्छा खासा टाइम मिलेगा कि आप इस ऐप को यूज करना चाहते हैं कि नहीं, आप यूज कर रहे हैं उसको जो टच किए हैं आप जानबूझ के किए हैं या फॉलो में हो गया है, जैसे सुबह सुबह हम सब जगते हैं तो हम सबकी आदत सी हो गई है कि आंख ठीक से खुलती नहीं, हाथ में फोन लेके इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं, तो एज ए एग्जाम्पल हम जब इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो 20 सेकंड का टाइम हम सबको मिलता है और ऐप को स्टार्ट करने के बाद हमसे टाइम मांगा जाता है कि आप कितने टाइम के लिए इस ऐप का यूज करिएगा और हम सब उसमें टाइम लिमिट कर देते हैं, उस लिमिट तक हम उस ऐप का यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम उस ऐप का यूज नहीं कर सकते। माइंडफुल ऐप का ये बेनिफिट है और ये हम सबको बहुत हेल्पिंग हुआ
3: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
4: मेरा नाम पुष्कर कुमार है, मैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ, गुरु जामनेश्वर यूनिवर्सिटी। हाँ, मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हूँ और इस वजह से करता हूँ कि जो भी हमको पसंद होता है उसमें आते रहता है फीड में, तो उसको देखते देखते कैसा एल्गोरिथम बन जाता है कि हम उसमें मिल जाते हैं।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
4: एक तरीका से और बार बार वही यूज करते रहते हैं, इसके वजह से बहुत टाइम टेकिंग भी हो जाता है, हर एक चीज में डिस्टर्बेंस आ जाता है।
3: हाँ।
4: यही सब है, तो इसके इसको सोल्यूशन हम लोग कभी कभी इंस्टाग्राम को डिलीट कर देते हैं, चाहे जो भी यूज करता है सोशल मीडिया है उसको डिलीट कर देते हैं, कभी कभी आईडी डिलीट कर देते हैं।
0: हाँ जी, मेरा नाम रंजीत है, मैं मास कम्युनिकेशन गुरु जामनेश्वर यूनिवर्सिटी से हूँ। मैं सच बताऊं तो मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल भर भर के करती हूँ और मुझे लगता है गलत भी है कहीं ना कहीं, पर ये एक एल्गोरिथम बन गया जो मुझे मतलब कि लगता है मुझे ये पसंद है वही चीजें मेरे आगे आ रही है। देखा जाए तो ये एक डिजिटल मार्केटिंग की तरह है जो हमें अंदर डुबोता ही जा रहा है सबके लिए,
1: कहीं ना कहीं थोड़ा नामुमकिन हूँ क्योंकि एक ऐसी अदृश्य सी ये हमारी ओर डोर है जो हमें खींचती चली जा रही है, तो इसको पहचानना जरूरी है आपके हिसाब से। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हम उपाय कर सकते हैं कि थोड़ी सी दूरी इसे बनाए रखें?
0: मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपना जहाँ पे इंटरेस्ट हो हमें फोन के अलावा, सोशल मीडिया के अलावा, हमारा जो रील से बाहर निकलने के लिए मेरे को लगता है जहाँ तक कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हमें कुछ करना चाहिए, जैसे कुकिंग हो गई, हमें मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, सुबह फोन तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए।
5: मेरा नाम दित्तू है और मैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जीजू हिसार से हूँ। सोशल मीडिया हमारे जीवन में एक मोटिव सा हो गया कि हाँ रील देखनी है, ये करना है, कंटेंट भी मिलता है, नया ट्रेंड होता है जो रील में आते हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं, दुनियादारी क्या चल रही है, क्या कर रहे हैं लोग, लेकिन हम ना उसके अंदर बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे एक रील देख ली हम दूसरी देखेंगे उसके अंदर ही चले, हमें टाइम का पता ही ना चलता क्या हो रहा है यार, इतना टाइम हो गया मैं रील देख रही हूँ।
1: क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया जो है हम कहीं ना कहीं स्क्रीन एडिक्शन की ओर बढ़ रहे हैं और रील्स एडिक्शन की ओर बढ़ रहे हैं? आप क्योंकि मास कम्युनिकेशन की ही छात्रा है तो ऐसे में आप ऐसे क्या उपाय करती है कि सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बनाए रखें?
5: हमें इसकी आदत पड़ गई है लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए हम

0: जैसे कि मैं तो ऐसे करती हूँ कि मैं बाहर निकल जाती हूँ या घर परिवार में घर वाले तो होते ही है तो उनके साथ बातें मारती हूँ, तो मेरे को याद ना रहता फोन। एक मन में रहता कुकिंग का, मैं जबरदस्त कुकिंग करती हूँ, मेरा फिर कहीं भी दिमाग नहीं जाता भाई फोन देखना, ये होता है मैं कुकिंग में मस्त रहती हूँ, इस वजह से मैंने ये स्क्रीन टाइम से दूरी बनाई रखी है।
1: तो इसका मतलब आप ये कहना चाहती है कि हम अगर सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहे तो अपनी कौशल कलाओं को भी हम निखार रहे हैं, जैसे कि आपको कुकिंग पसंद है तो आपको उसमें और खुशी मिलती है, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जब हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आंखों पर भी दबाव पड़ता है। तो बिल्कुल पढ़ाई से हटकर फिर से सोशल मीडिया पे ही जाना मनोरंजन के लिए शायद बेहतर उपाय नहीं है।
0: जैसे कि मेरे घर में भी है बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे भतीजे, वो भी सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल करते हैं, रील देखते रहते हैं, लेकिन उससे ना उनकी आंखों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है,
1: क्योंकि
0: छोटे छोटी उम्र में उनके चश्मे लग जाते हैं।
1: वही बच्चे बड़े बुजुर्ग कोई भी ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया से वो अपरिचित है, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है या इस दलदल में नहीं फंस रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
0: थैंक यू।
2: सुनते हैं एक गाना।

प्रिय श्रोताओं, आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सभी हिसार वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। इस समय हिसार विधानसभा क्षेत्र में SIR अभियान जारी है। जी हां साथियों, भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश से यह अभियान पूरे 24 साल बाद फिर से शुरू हुआ है। इसका नाम है मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी SIR। SIR का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन ये जितनी बड़ी उपलब्धि है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी। जिम्मेदारी है कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में भी हर नागरिक की आवाज को अधिकार मिले, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की नींव है उस देश के नागरिक। और जब चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो, तभी एक मजबूत लोकतंत्र खड़ा होता है। साथियों, अगर आप पूछें कि भारत जो विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, ऐसे देश में हम चुनावी पारदर्शिता को कैसे बनाए रखते हैं, तो इसका जवाब है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, जिसमें भारत की पूरी मतदाता सूची यानी पूरी वोटर लिस्ट को विशेष रूप से घर घर जाकर अपडेट किया जाता है, यानी गहन पुनरीक्षण किया जाता है, ताकि भारत के हर मतदाता को अपना अधिकार मिले और चुनावी प्रक्रिया में कोई भी त्रुटि, किसी भी प्रकार की अशुद्धि या गलती ना हो। श्रोताओं, भारत में पिछली बार SIR 2002 से 2004 में हुआ था। इस बार के SIR अभियान की बात करें तो ये अब तक 3 फेज में रोल आउट हुआ है। पहला चरण था बिहार में, जो कि जून 2025 में आरंभ हुआ। दूसरे चरण में 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए। इस साल SIR का तीसरा चरण यानी फेज 3 शुरू हुआ है, जो लागू होता है 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों पर, और इनमें हरियाणा भी शामिल है। श्रोताओं, हिसार की SDM और निर्वाचन अधिकारी ज्योति मित्तल जी ने बताया कि सभी बूथ लेवल ऑफिसर, जो कि हमारे नजदीकी बूथ हैं, उस स्तर पर जो भी अधिकारी नियुक्त हैं, जिन्हें BLO कहा जाता है, उन सभी का प्रशिक्षण पूरा हुआ। ट्रेनिंग के बाद उन्होंने 15 जून से घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन शुरू किया। साथियों, सत्यापन कार्य कल तक यानी हिसार में 1 जुलाई 2026 तक निर्धारित था। पिछले 15 दिनों में BLO ऑफिसर्स ने हिसार विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म्स का वितरण एवं संग्रह किया, और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कार्य था त्रुटियों का शुद्धिकरण। दोस्तों, वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण प्रक्रिया में ये मुख्य बिंदु कुछ मुख्य बिंदु शामिल होते हैं। पहला, मृतकों के नाम को हटाना, फिर डबल वोटर एंट्रीज को रोकना, और साथ ही जो लंबे समय से स्थानांतरित मतदाता हैं, उनकी जानकारी को अपडेट करना। साथ ही हम नए मतदाताओं को भी जोड़ते हैं। नए मतदाताओं की बात करें तो मुख्यतः इसमें नवयुवा शामिल हैं, क्योंकि नए भारत के नवयुवा ये समझते हैं कि 18 वर्ष की आयु से मतदान हमारा अधिकार भी है और देश के प्रति हमारा दायित्व भी। आकाश

वाणी के युवा उमंग कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि भारत के युवा जागरूक बने और अपनी कलम से एक नया भारत लिखें। इस दिशा में सबसे बेहतर कदम है मतदान करना, इसलिए सभी नवयुवा अपना एपिक वोटर आईडी कार्ड आज ही बनाएं। दोस्तों, इस समय हिसार विधानसभा क्षेत्र में 1.5 लाख से ऊपर पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से 97,000 से ज्यादा पुरुष, 88,000 से ज्यादा महिलाएं और 5 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। एसडीएम ज्योति मित्तल जी ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए हिसार विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। अभी यहां 162 मतदान केंद्र हैं, इनमें 24 नए मतदान केंद्रों को जोड़ा जा रहा है। इसके बाद कुल संख्या बढ़कर 186 हो जाएगी। नए मतदान केंद्र उन इलाकों में बनाए जा रहे हैं जहां एक केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता हैं। श्रोताओं, आइए हिसार में एसआईआर की कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को ध्यान में रखें। आज से 2 हफ्ते में यानी 14 जुलाई तक मतदान केंद्रों के पुनर्गठन का कार्य किया जाएगा। दोस्तों, 15 जून से 14 जुलाई तक जो तैयार की गई सूची है, इसको एक हफ्ते बाद यानी 21 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। प्रारूप सूची प्रकाशित होने के बाद एक महीने तक यानी 21 जुलाई से 20 अगस्त तक मतदाता अपने दावे और साथ ही जो भी आपत्तियां हैं उन्हें दर्ज करा सकते हैं। फिर अगले एक महीने में 18 सितंबर तक हमारी शिकायतों का हल किया जाएगा। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की ये प्रक्रिया जो है बहुत लंबी है और आसान नहीं है, लेकिन ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। वोटर लिस्ट के इस बड़े शुद्धिकरण अभियान पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर साझा करें। साथ ही सोशल मीडिया से आप कैसे दूरी बनाए रखते हैं और उसको सिर्फ एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी राय दे सकते हैं फोन नंबर 9729253272 पर। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ ही हमारी ईमेल आईडी radiohisar@gmail.com पर हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा उमंग। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 7 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम, जिसका विषय रहेगा खरीफ फसलों में सूत्रकृमि प्रबंधन, और विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सरदूल सिंह मान।

0: चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से।
1: जी
0: और अपना फोन नंबर होगा 0162-297-827।
1: और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता पवन कुमार और तकनीकी सहयोग दे रहे हैं रविश कुमार। और
0: तो नूर भाई
1: जी,
0: डॉक्टर साहब अपने स्टूडियो में पहुंच चुके हैं।
1: डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद नूर भाई व सुनीता बहन।
0: तो डॉक्टर साहब, आज का जैसे अपना विषय है कि जो खरीफ की फसलें अभी अपने चल रही है,
2: हाँ जी,
0: इसमें जो सूत्रकर्मी है,
2: हाँ जी, हाँ,
0: इनका प्रबंधन बाण भाइयों ने कैसे करना है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे ये पूछना चाहूंगे कि भाई ये सूत्रकर्मी क्या होते हैं,
2: हाँ,
0: जिसकी कि किस तरीके से अपने जो बाण भाई है वो पहचान कर पावे कि ये सूत्रकर्मी है, इनका कैसे मतलब पता चला अपन।
2: ऐसा है सुनीता बहन, ये सूत्रकर्मी जो हैं, नेमाटोड्स भी बोलते हैं इनको
0: जी,
2: ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव का मतलब साइज में, आकार में बहुत छोटे सांपनुमा कीड़े होते हैं
0: जी,
2: जिनकी साइज की अगर हम बात करें तो 0.2 से 2 मिलीमीटर इनका साइज होता है। इतना छोटा साइज होने के कारण हमारे जो किसान भाई हैं
0: जी,
2: वो इनको आसानी से देख नहीं पाते, तो इनको केवल हम सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख पाते हैं। इस कारण ये जो हैं किसान के छिपे हुए दुश्मन कहलाते हैं। सूत्रकर्मी जो है ज्यादातर 90% जो इनकी संख्या रहती है वो जमीन में रहती है
0: जी,
2: और जमीन में भी उसी गहराई में रहती है जहां तक हमारी फसलों की जड़ें जाती हैं, यानी कि 15 से 20 सेंटीमीटर की जो डेप्थ है, जो गहराई है, उसी में ये जो है विद्यमान होते हैं।
0: मतलब जो अपने पौधे हैं उनकी जड़ों में ही रहते हैं।
2: हाँ जी, जड़ों को ज्यादा नुकसान करते हैं मिट्टी में रहने के कारण
0: जी,
2: पौधे की जड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं
0: जी,
2: और उससे जो पौधा है वो धीरे धीरे पीड़ापन आके उसके पत्तों का साइज छोटा हो जाता है और वो धीरे धीरे मर जाता है, क्योंकि ये जो है इनको हम ओब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब किसान भाइयों से ये है, ये जिंदा चीज पे सर्वाइव करते हैं। अगर पौधा जिंदा है तो नेमाटोड्स भी जिंदा रहेगा।
1: हेलो डॉक्टर साहब, फोन ले ले वहाँ किसान भाई का। हेलो
3: हेलो जी, राम राम।
1: राम राम भाई, नाम बताओ और गांव भाई।
3: राय सिंह पूनिया रावस कला जी।
1: हाँ जी राय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में और सवाल पूछो डॉक्टर साहब से।
3: मैं ला रखी है जी घर खातर पेठे की बेल ला रखी है जी
1: जी,
3: तो उसमें वो ट्यूबवेल का पानी ला दिया मैंने और उसका फूल सारा गंदा हो जी, नीचे जड़ में उसमें फंगस ही आया है
1: जी।
2: ऐसा है राय सिंह जी, जो आपने पेठे की बेल लगा रखी है उसमें जड़ों में आपने एक फफूंद नाशक डालना पड़ेगा।
3: हाँ जी,
2: फफूंद नाशक का मतलब ऊपर से पीड़ा होके सूख रही है ना वो।
3: हाँ जी,
2: और दूसरा आप उसकी थोड़ी ही जड़ें निकाल के देख लेना, अगर उसमें गांठे तो नहीं बनी हुई। देखिए आपने कभी
3: गांठ कौन बन रही जी?
2: हाँ, तो वो निमेटोड से नहीं है, वो आपका फंगस से उसमें जो समस्या आई हुई है, तो उसके लिए आप हमारा एक फंजीसाइड विश्वविद्यालय के द्वारा सिफारिश है, कार्बेंडेजिम बेविस्टिन के नाम से आता है।
3: हाँ जी,
2: 2 ग्राम दवाई पाउडर फॉर्म में आता है ये, और 1 लीटर पानी में घोल बना के, यानी कि मान लिया आप 10 ग्राम दवाई ले रहे हो तो 5 लीटर में घोल बना के उसकी जड़ों के आसपास डाल दो, और उसमें ड्रेंचिंग बोलते हैं उसको, जड़ों में जानी चाहिए दवाई आपकी, तो वो जो पीड़ा पन आपका ठीक हो जाएगा। राय सिंह जी,
3: मैं जी वो नीम का पानी और तम्बाकू धतूरा और वो तो गेड़ू जी उसमें,
2: वो तो ठीक है, चलो वो डालते, वो नीम वाली चीजें तो सारी अच्छी बात है डाल रहे हो, लेकिन ये एक फंजीसाइड भी आपने उसमें डालना पड़ेगा। ये अच्छा, फंजीसाइड इतने नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो सब्जी हम तो खाने के लिए लगा रखी है, तो फंजीसाइड इतना ज्यादा, ये सिफारिश शुदा है, ये मात्रा इतनी रखना, उससे ज्यादा मत डालना। 2 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के उसकी जड़ों में डाल दो, थोड़ी खुदाई करके, वो जो घोल है दवाई का वो जड़ों में जाना चाहिए हमारा, तो आपका पीड़ापन ठीक हो जाएगा।
3: ठीक है जी,
2: ठीक है जी,
1: धन्यवाद राय सिंह जी, और आपने अपने जो सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो सूत्रकर्मी डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि भी बहुत छोटे जीव होते हैं,
2: हाँ,
1: और जो दूसरे पौधों पे निर्भर करते हैं, पैरासाइट होते हैं, तो डॉक्टर साहब, हेलो हेलो,
3: इसने आवाज तो कौन करी, दवाई का नाम तो कौन बेरा पटिया।
1: हेलो,
3: हाँ जी,
2: कार्बेंडेजिम बेविस्टिन के नाम से आती है कार्बेंडेजिम।
1: ठीक है भाई, डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि भाई इनका प्रसार कैसे होता है डॉक्टर साहब, ट्रांसफर कैसे होते हैं, कि भाई सूत्रकर्मी मान लो हमारी एक खेत में कहीं पे सूत्रकर्मी नहीं है
2: जी,
4: और

0: उस जमीन पर किस प्रकार सूत्रकर्मियों का एक आक्रमण होता है या इन्फेक्शन हुआ है?
1: ये नूर भाई ऐसा है, जैसे मैंने बताया सूत्रकर्मी जो है
0: जी
1: ज़्यादातर हमारी ज़मीन में पाए जाते हैं। वैसे तो ये हर जगह समुंदर में, झीलों में,
0: जी
1: आपके पानी में,
0: जी
1: सिवाय सिवाय हवा को छोड़ के
0: जी
1: सभी जगह विद्यमान रहते हैं,
0: जी
1: लेकिन संख्या इनकी अलग अलग रहती है।
0: जी
1: तो इनका प्रसार पानी के द्वारा हो जाता है। जैसे पीछे कहीं समस्या है तो नहर का पानी जैसे आता हमारा,
0: जी
1: या बारिश का पानी कई बार आता है बह के दूसरी जगह से, एक खेत से दूसरे खेत में।
0: जी
1: और जैसे गर्मियों में, अब मई जून या जून जुलाई का महीनों में जब आंधियां चलती हैं, तो
0: जी
1: जो मिट्टी में जो संख्या रहती है वो उड़ के मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है।
0: जी
1: इसके अलावा जो हमारे इम्प्लीमेंट होते हैं, कृषि मशीनरी, हैरो है, कल्टीवेटर है, ट्रैक्टर है, जिसे जुताई करते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब फोन ले लो। हेलो,
2: हेलो।
0: हाँ, नाम और गांव बताओ भाई।
2: हाँ जी, रुद्रदास से रविंद्र सिंह लांबा बोल रहा हूँ जी।
0: हाँ रविंदर जी, सवाल पूछो।
2: घर के लिए भिंडी बो रखी है जी, बिल्कुल पीली होगी जी।
0: हाँ जी,
1: ऐसा है रविंद्र जी, कब लगाई थी आपने
2: हाँ
1: भिंडी?
2: जी,
1: लगाई कब थी? लगाई कब थी आपने?
2: हेलो
1: हाँ जी,
0: भाई, रेडियो के पास है तो थोड़ा दुरहट्टा कर लो, आपकी आवाज डॉक्टर साहब को सुन रही है। आप नहीं सुन पा रहे क्या हमारी आवाज?
2: अब आ रही है जी। हाँ
0: हाँ तो पूछो डॉक्टर साहब से सवाल। ठीक
1: रविंद्र जी, ये लगाई कब थी आपने
2: जी, घर के
1: भिंडी?
2: लिए भिंडी लगा रखी है जी, 15-20 पौधे,
1: ठीक है जी। तो उसमें
2: पीले हो
1: आपने
2: गए जी बिल्कुल। हाँ
1: पीड़े तो हो गए, मैं ये पूछ रहा हूँ कितने दिन पहले लगाए थे?
2: जी,
1: कितने दिन पहले लगाए थे? कितने दिन पहले लगाए थे आपने ये?
2: पहले के लगाए हुए हैं जी, एक
1: घर में लगा रखे हैं, खेत में?
2: महीना हो गया जी।
1: मेरे रविंद्र जी, मैं ये कह रहा हूं, आप इनकी जड़ें देखो एक बार निकाल के, जड़ों में गांठे तो नहीं बन रही? रेतीली जमीन है क्या आपकी?
2: ठीक है जी, धन्यवाद
1: हेलो।
0: डॉक्टर साहब, ये
2: जी।
0: लुदास जो शाहपुर गांव है सर, ये सिंचाई का एरिया है जी, अपने यूनिवर्सिटी के लगता है, तो जमीन भी ठीक ठाक है, सिंचित जमीन है डॉक्टर साहब। मैं किसान भाई को क्या सलाह दे सके हैं?
1: इसमें ये जो नेमाटोड सूत्रकर्मी जैसे आपने विषय रखा आज का,
0: जी
1: इनकी तो
0: जी
1: ये रेतीली जमीन में ज्यादा नुकसान करता है।
0: जी
1: जो हमारी पक्की जमीनें हैं या जो कले सोयल हैं, उसमें ये नुकसान कम करता है, क्योंकि वहां सांस कम ले पाता है ये।
0: जी
1: और रेतीली जमीन जो भी हमारा, जैसे साउथ वेस्ट हरियाणा है हमारा, सरसा से शुरू हो जाओ, सरसा, फतेहाबाद, हिसार,
0: जी
1: भिवानी, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, ये
0: जी
1: जो सारा एरिया हमारा।
0: जी डॉक्टर साहब, हेलो।
2: हेलो। राम राम जी। राम
0: हाँ राम राम, राम सिंह जी, बहुत
2: सिंह जी, गांव भूतर कला से।
0: राम राम भाई, राम सिंह बहुत
2: नूर
0: बढ़िया,
2: भाई जी नमस्कार है, क्या
0: नमस्कार राम सिंह भाई, फोन करने के लिए धन्यवाद।
2: विषय है आज?
0: आज है खरीफ फसलों में सूत्रकर्मियों की समस्या के समाधान के लिए डॉक्टर साहब आ रहे हैं विशेष तौर पे।
2: धरना धुनने के बारे में कुछ बताओगे जी? हमारे
0: हाँ,
2: बारिश होगी बढ़िया।
0: धान में भी सूत्रकर्मी की समस्या हो सके है राम सिंह भाई, आप सवाल पूछ सके हैं।
2: ऐसे है भाई नूर भाई जी,
0: जी
2: बारिश चंगी होगी और
0: जी
2: हम धान लगाएंगे सारे।
0: हाँ, तो डॉक्टर साहब की बात ध्यान से
2: कोई
0: सुनो।
2: बताओ। डॉक्टर साहब से नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी,
1: हाँ जी,
2: बोलो।
1: मैं ये पूछ रहा हूँ, धान लगाओगे अच्छी बात है, जमीन में रेतीली तो नहीं आपकी?
2: चिकनी जमीन है जी।
1: पक्की जमीन है, तो फिर जो आज का विषय है ना, निमाटोड सूत्रकर्मी जो होता है,
2: ना सूत्रकर्मी हमारे नहीं आता
1: हाँ,
2: जी।
1: वो समस्या आपके नहीं मिलेगी, अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो धान
2: डॉक्टर साहब
1: की।
2: जी ऐसे है,
1: हाँ जी,
2: हमारे बढ़िया जमीन है
1: चलो,
2: और
1: बड़ी
2: बढ़िया बारिश होगी,
1: बड़ी अच्छी बात है जी। तो धान की रोपाई करो फिर आप, टाइम आ गया बिल्कुल सही।
2: सारी 2 दिन में सारी रिपाई कर देना जी।
1: ना ना, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया जी।
2: और कोई दवाई जरूर के बारे में बताओ, घास घूस की दवाई कौन सी डालनी है?
1: घास की दवाई का विषय अलग है जी, विशेषज्ञ
0: राम
1: है।
0: सिंह जी, आप जैसे आज विषय है नीमाटोड्स का, सूत्रकर्मियों का,
2: हाँ
0: अब उस विषय पे डॉक्टर साहब से जानकारी ले सको हो। बाकी आप धान लगाओ, उसकी जो
2: हाँ
0: रोपाई का समय है अभी, तो आगे कोई भी समस्या होगी तो जरूर आपको जानकारी
2: हाँ
0: देंगे।
2: जी नूर भाई,
0: धन्यवाद फोन करने के लिए।
2: ऐसे करो जी, हमें ऐसे बताओ, कर दे सारी चालू कर दे,
1: हाँ रोपाई आप शुरू कर सकते हो, बिल्कुल सही टाइम है।

0: दवाई छिड़ो कर दिया।
1: हाँ कर सकते हो, कर सकते हो जी, करो,
0: कर सकते हो।
1: हाँ जी,
0: दवाई कौन सी डालना जी बाद में?
1: दवाई विशेषज्ञ अलग आएगा जी, दवाई का विशेषज्ञ है।
2: राम सिंह
0: नहीं, आप बताओ कौन सी डालना। डॉक्टर साहब जी आपका क्या नाम?
2: राम सिंह जी, आज जो विषय है आप उस विषय के ऊपर ही अपने सवाल पूछ सके हैं, तो दवाइयों का कोई विषय नहीं है आज। आज जड़ों में जो कीट सूत्रकर्मी का आक्रमण हो जाता उस पे आप बातचीत या सवाल पूछ सके हैं। हेलो,
3: हेलो, नमस्कार।
2: हाँ नमस्कार भाई, नाम और गांव बताओ भाई।
3: नाम राजेंद्र,
2: राजेंद्र कहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये थोड़ा हा आप
3: जानते हो गई बात करें।
2: हाँ बिल्कुल, चलो भाई ये चीज तो देखो, आप श्रोता हो, हम तो देखो फोन आपका बिल्कुल आमंत्रित करते हैं। चलो आप भी अपना सवाल पूछिए। हेलो, तो शायद फोन कट गया डॉक्टर साहब भाई का। तो इसमें डॉक्टर साहब प्रसार की बात कर रहे थे कि भाई प्रसार किस प्रकार से सूत्रकर्मियों का एक जगह से दूसरी जगह पे हो जावा है।
1: हाँ जी, मैंने दो तीन चीजें बताई।
0: हेलो,
2: हाँ जी,
0: नमस्कार सर।
2: नमस्कार भाई, नाम और गांव?
0: राजकुमार बोलो जी, बारी वास से।
2: हाँ राजकुमार जी,
0: जी ग्वार में टिंडे बेल लगाई थी जी, गंदन लाए जी फूल।
2: हाँ जी,
0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, नमस्कार
0: जी। ग्वार बीज रखा जी, उसमें टिंडिया बीज लगाए थे जी, वो फूल गिर जाए जी।
1: उसमें फूल गिर जाते हैं?
0: हाँ जी।
1: तो उसमें आप कोई फंजीसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा जी आपको।
0: हाँ जी,
1: कोई फंजीसाइड का स्प्रे किया है?
0: हाँ जी।
1: कौन सी दवाई डाली थी
0: जी? आपकी आवाज साफ को नहीं आ रही सर।
1: दवाई का कौन सी का प्रयोग किया था आपने?
0: सप्रे कौन करा सर?
1: एक बार
0: गुआर उसकी सर, उसमें गुआर में टिंड की लगाई थी।
1: ठीक है, आपकी जमीन रेतीली है क्या?
0: नहीं जी, माटी जमीन है सर।
1: अच्छा ठीक है, जमीन है।
0: हाँ जी,
1: तो आज का विषय तो जो हमारा ना सूत्रकर्मी निमेटोड्स का है, उसके बारे में कोई अगर आपका सवाल है तो वो बताओ। बाकी हमारे दूसरे दिन अलग विशेषज्ञ आएंगे सब्जियों के, वो आपको बताएंगे फिर।
2: धन्यवाद कुमार जी। सभी किसान भाइयों से एक अपील है भाई, जो आज का विषय है उसके ऊपर ही अपने सवाल पूछें। आज सूत्रकर्मी प्रबंधन विषय पे डॉक्टर साहब आए हुए हैं, जो अपने पौधों की जड़ों में गांठें बन जाती हैं या जो सूत्रकर्मियों की समस्या हो जावे है, उस विषय पे किसान भाई सवाल पूछें। विषय से हटके सवाल पूछेंगे तो डॉक्टर साहब भी थोड़ी समस्या आ सके। हेलो, डॉक्टर साहब ये जो अपनी खरीफ फसलें हैं, इनमें सूत्रकर्मियों से कौन कौन सी फसलें प्रभावित हो सके हैं, खासकर जो अभी फिलहाल अगर बात करा।
1: हाँ नूर भाई, इसमें जो हमारी जो फसलें हैं, जैसे हमारा धान है, उसमें दो सूत्रकर्मी आते हैं अपने हरियाणा में
2: जी।
1: और दूसरी हमारी जैसे कपास की फसल है, उसमें भी एक सूत्रकर्मी की समस्या है
2: जी।
1: इसके अलावा हमारी मूंग की फसल है, उसमें भी सूत्रकर्मी की समस्या देखने को मिलती है।
2: हेलो डॉक्टर साहब, शायद कनेक्ट नहीं हो पाया। तो हाँ जी डॉक्टर साहब,
1: तो मैंने जैसे खरीफ की मुख्य जो फसल हमारी धान और कपास है
2: जी,
1: और जहाँ थोड़ी जमीनें रेतीली हैं वहाँ इन दोनों फसलों में, मूंग में भी जो है निमेटोड्स की सूत्रकर्मी की समस्या देखने को मिलती है।
2: हेलो हेलो
0: हेलो,
2: हाँ जी, नाम और गांव बताओ भाई।
0: नाम मोलू पनियार जी।
2: हाँ मोलू राम जी, सवाल पूछो।
0: डॉक्टर साहब, एक तो ये बिना काम की जो खब्बी कमला रे नूर भाई, यान का कैद जो नहीं बैठे काट दे फोन की। हाँ। में मतलब कोनी खाम खा का टेल हो रहा का और खराब करना लाग रही।
2: बिल्कुल बिल्कुल मोलूराम जी, ये आपका सुझाव ले भी लिया है आगे से, जो भी बिल्कुल इनका ध्यान रखेंगे भाई। देखो पता नहीं चलता भाई सवाल है, क्योंकि ये लाइव
0: राम सिंह का चल रहा है जी, वो मी बरस गया, मारा न्यू हो गया, फलान हो गया, एक दो टिकट लाए जी।
2: चलो चलो, इसका विशेष ध्यान रखेंगे मोलू राम भाई। आप अपना सवाल पूछो आगे से। इस पे थोड़ा
0: लियो था नूर भाई
2: जी।
0: डॉक्टर साहब, गुआरी बिजाई मान्य करांगे, उसमें से बताओ कि बाद में जो पीड़ापन हो जाए, हर फंगस आ जाए, फंगस का कारण है उसके ये वो।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें आप बीज उपचार करके बिजाई करना ग्वार की।
0: आवाज को नहीं आंदा, रेडियो लो लागू
2: रेडियो के लो।

0: लागो भाई, थोड़ा आप अपना सवाल पूछो और अपनी बात फोन के माध्यम से ही सुनो। आप
1: उन तो कौन लग रही
2: आप है
1: भाई?
2: ना, ज्वार का बीज उपचार
1: आओ।

0: ये बिजाई करना, फिर 30 दिन बाद स्प्रे करना।
1: और मुंगम है जी,
0: मुंग में क्या प्रॉब्लम आती है बताओ?
1: मुंगम भी क्या हो जी, पीड़ापन का हो की खड़िया हो गया है, बाद में फली लग गया, कौन छोटी छोटी फली रह गया, वह भी पीड़ी हो गया।
0: उसकी एक्चुअली में वैरायटी थोड़ी अच्छी, हमारे दो तीन पहले जो विशेषज्ञ आए थे, कुछ वैरायटी ऐसी हैं जिसमें पीड़ापन नहीं आता, जैसे MH 421 है, एक MH 1142 है, वो किस्में है जो ना वो लगाया करो आप। जो कुछ पुरानी किस्में है ना उसमें पीड़ापन जो वायरस होता है वो समस्या ज्यादा आती है।
1: लगाई तो ये थी जी, पिछली बार भी ये थी है।
0: 421 हाँ, 1142 ये लेना, ये बिजाई करना, इसमें पीड़ापन रोग की समस्या ना के बराबर है, बहुत ही कम आती है।
1: हाँ जी
0: हाँ जी।
1: और एक और डॉक्टर साहब,
0: हाँ जी,
1: बाजरी में सिट्टी काटे पाथ है, उसमें एक लारवा था हो गया, सुंडी हो गया, सिट्टी पकड़ कर लो अलग है नहीं, काटी सिट्टी हो है
0: वो, तो देखो जी अलग विशेषज्ञ आएगा आपका कि एंटोमोलॉजिस्ट, उस दिन आप सवाल करना, मेरा विषय थोड़ा दूसरा है।
1: ठीक है
0: ठीक है जी,
1: सॉरी।
2: हाँ जी हाँ जी, मोलू राम जी धन्यवाद फोन करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, जो सूत्रकृमि है इससे जो प्रभावित मान लो पौधे हैं या फसलें हैं, उनमें मुख्य तौर पे क्या क्या लक्षण दिखाई दे सके डॉक्टर साहब?
0: हाँ नूर भाई, ये ऐसा है जो लक्षण है ना
2: जी,
0: जो निमेटोड से आते हैं वो तो पूरे खेत में नहीं आते कहीं भी।
2: हेलो
3: हेलो, नमस्कार जी।
2: हाँ नमस्कार भाई, नाम और गांव बताओ भाई।
3: गांव चौधरी वासे राजू अग्रवाल।
2: हाँ राजू जी, स्वागत है आपका।
3: वो घर में एक तरबूज की बेल लग रही है जी,
2: जी
3: 4-5 लग भी गए, पता नहीं गर्मी से बिल्कुल टेढ़ी टेढ़ी होगी, नीम का पानी उबाल के उसका ठंडा करके छिड़काव करे, कुछ तो फर्क पड़ गया जी।
2: जी
0: उसमें राजू जी ऐसा है, उसकी थोड़ी जड़ें देखना आप, थोड़ी निकाल के, अगर जड़ों में गांठे बनी हैं तो निमेटोड हो सकता है, क्योंकि आपका जो इलाका है वो रेतीला इलाका है, थोड़ा जमीनें रेतीली हैं।
3: जड़ें
0: हाँ, घर में कोई बात नहीं, जड़ें उसकी देखना थोड़ी खुदाई करके, उसपे गांठे ना बनी हो, मोटी ना हो रही हो जड़ें, अगर उसमें निमेटोड की समस्या है तो जो आपने डाला ना नीम का पानी उबाल के ठंडा करके, वो दोबारा भी डाल सकते हो। अगर उसमें
3: जी, आपके टेलीफोन लाइन की काफी बार चैट चुका हूँ, श्रोता पूछता कुछ है, स्पीकर खोल के बात करनी पड़ती है,
0: ऐसा है जी, किसान भाई पूछ लेते हैं, कोई बात आगे से ध्यान रखेंगे। नूर जी बार बार कह तो रहे हैं,
2: देखो ऐसा भाई, ये लाइव कार्यक्रम है तो इसमें सवाल क्या पूछेगा किसान भाई, हमें कोई पूर्वानुमान नहीं होता, तो ये तो आप लोगों को ही ध्यान देने की आवश्यकता है।
3: आपके आपके स्टूडियो की लाइन बिल्कुल आवाज नहीं आती जी।
2: ओके ओके, बिल्कुल इसको दुरुस्त करने का
3: स्पीकर खोल के बात करनी पड़ती है जी।
2: जी जी, इसको भाई ध्यान देंगे हम, तकनीकी टीम है वो सुन रही है, हमारे साथ ही बैठे हैं, तो इस पे विशेष तौर पे आपका सुझाव हम
3: कहूंगा जी। आप कहेंगे ये विषय नहीं, किसान के लिए एक एक दिन की कीमत होती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, आप एक
3: बात करनी हो वो एक महीने बाद में बैठी, इतने फसल ही खराब हो जाएगी।
2: हाँ, चिंतित और जागरूक आप किसानों भाई, आपकी बिल्कुल सुझाव आपका है, बिल्कुल हमने नोट कर लिया है और इस पे हम अमल करने का प्रयास करेंगे बिल्कुल, और जो भी हमारी तरफ से प्रयास बरसक हो सकेगा उस पे पूरा हम काम करेंगे। धन्यवाद राजू जी फोन करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, इसमें हम लक्षणों की बात कर रहे थे।
0: हाँ नूर भाई, आप सूत्रकृमि के लक्षण की बात कर रहे थे, तो लक्षण मैं बता रहा था, जो निमेटोड की समस्या है वो कहीं कहीं आती है।
2: डॉक्टर साहब फोन और आ गया है। हेलो भाई। हेलो
1: हेलो।
2: हाँ जी भाई,
1: राम सिंह जी बोल रहे हूँ।
2: भाई राम सिंह जी, आप विषय के अंतर्गत ही बात करें, कोई अगर आपका कोई विषय पे सवाल है तो बात करें।
1: अच्छा जी।
2: हाँ जी हाँ जी,
1: ठीक है।
2: तो डॉक्टर साहब, किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है भाई, समय का बड़ा अभाव है और समय आपके लिए ही है, इसमें आप अनावश्यक प्रश्न या जो विषय से संबंधित नहीं है वो ना पूछें, ताकि डॉक्टर साहब भी मैक्सिमम आपके सवालों का जवाब दे सके।
1: हेलो
2: हेलो। हाँ जी
1: नमस्कार सर, नूर भाई मैं राजेश बोल रहा हूँ, तलुंडी वार्ड शबर से जिला हिसार।
2: हाँ राजेश भाई, सवाल पूछो डॉक्टर साहब से। जी
0: ऐसा है राजेश जी, उसमें नीचे खाद वगैरह डाली है, सारी देसी खाद, ये थोड़ी बहुत DAP
1: खाद वगैरह
0: ये आपने गोबर की खाद पुरानी डाली है?
1: हाँ।
0: और कितने साल का पौधा बताया आपने? 4 साल का।

0: हेलो, पौधा
1: कितने साल का पौधा भाई? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं।
0: होगा जी 5-3 साल के करीब होगी।
1: उसके नीचे से निराई गुड़ाई करो एक दो बार और थोड़ी देसी
0: यहाँ से
1: खाद।
0: लिया सर, सुहानी से है नजदीक,
1: चलो वो तो ठीक है,
0: पर नहीं देख खास बहुत छोटे से लग गए।
1: मैं ये कह रहा हूँ उसमें खाद थोड़ी, अब जैसे बारिश का टाइम आ जाए ना तो देसी खाद थोड़ी डाल लो उसमें और गुड़ाई करो उसकी चारों तरफ से।
0: अच्छा,
1: हाँ जी
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद भाई राजेश। तो डॉक्टर साहब क्या क्या लक्षण है पौधे पे हाँ,
0: उस?
1: मैंने ये आपको बताया नूर भाई, ये लक्षण जो हैं ये पैचेज में आते हैं, यानी कि खापरे खापरे में आपको निमेटोड की समस्या देखने को मिलती है किसान के, पूरे
0: जी
1: खेत में कभी नहीं आती है
0: जी
1: क्योंकि साइज बहुत छोटा होने के कारण की मूवमेंट भी स्लो होती है, बहुत ही स्लो होती है।
0: जी डॉक्टर साहब,
1: अगर इनकी चलने की बात करें तो 1 साल में 1 मीटर दूरी तय कर पाते हैं,
0: जी
1: इतना
0: डॉक्टर साहब,
1: छोटा साइज है।
0: जी
1: तो जो पैचेज में समस्या मिलेगी वो दूर से हम देखेंगे ना तो पौधे का ऊपर से पीड़ापन आ जाएगा, उसमें फुटाव कम होगा और जो है पत्ते धीरे धीरे पीले होकर गिरने लग जाएंगे,
0: जी
1: और सही पहचान जो सूत्रकर्म में की वो हम पौधे की जड़ से निकाल के तभी कर पाते हैं।
0: जी
1: अगर जड़ में गांठें हैं तो निमेटोड की समस्या, अगर जड़ें ठीक हैं
0: जी
1: तो फिर हमारा उसमें कोई पोषक तत्व की कमी हो सकती है या पानी में नमक की मात्रा की कमी की वजह से भी लक्षण आते हैं, क्योंकि इसके लक्षण पौधे के पोषक तत्वों की कमी के लक्षण से मिलते जुलते ही रहते हैं, बस
0: जी
1: जड़ों से इसमें कन्फर्म होंगे भाई अगर उसमें गांठें बनी हैं तो निमाटोड है, गांठें नहीं बनी तो कोई दूसरी समस्या है।
0: तो इसके लिए डॉक्टर साहब, अगर मान लो किसान भाई चाहता है कि भी उस समस्या को जांच करवानी है उसकी, मान लो पौधे के लिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा डॉक्टर साहब?
1: उसकी जांच जो करवानी है किसान भाई तो वो हमारा विश्वविद्यालय जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कृषि महाविद्यालय उसमें सूत्रकर्मी विज्ञान विभाग हमारा,
0: जी
1: उसमें किसान भाई को हम ये सलाह देते हैं जब भी सूत्रकर्मी की उसको समस्या लगे
0: जी
1: तो वो पौधे की जड़ और मिट्टी दोनों साथ लेके आए, जहाँ उसकी समस्या है, जहाँ पीड़ापन है या फसल कमजोर है
0: जी
1: या पौधा मान ले कोई बागवानी का पौधा है
0: जी
1: तो वो दोनों चीज़ हमारे पास लेके आए हमारे सूत्रकर्मी विज्ञान विभाग में, तो हम
0: जी
1: जांच करके उसको बता देंगे कौन सा सूत्रकर्मी है, उसकी संख्या कितनी है, और
0: जी
1: एक तरह के सूत्रकर्मी ही या दो तरह के, क्योंकि
0: डॉक्टर
1: मिट्टी
0: साहब
1: में। हाँ
0: फोन ले ले वहाँ।
1: जी
0: हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम और गांव
1: नमस्कार
0: बत
1: डॉक्टर साहब,
0: हाँ नमस्कार भाई, नाम और गांव बताओ भाई।
1: मेरा नाम जी संतोष है जी, और गांव बीड़ फार्मासी जी।
0: हाँ संतोष बहन है, सवाल पूछो डॉक्टर साहब से।
1: मैं जी पूछना चाहूँ, मेरा 3-3.5 साल का जी एक माल्टे का पेड़ लगाया था हमने,
0: जी
1: उसका जी कुछ भी को नहीं लागता।
0: डॉक्टर साहब,
1: ऐसा है जी, उसकी आप है ना जड़ें देखना, जड़ें ठीक हैं या जड़ों में कोई दिक्कत है उससे पता लगेगा जी अगर निमाटोड की समस्या है या नहीं है। जड़ें उसके
0: ये
1: उखाड़ के देखो, आप जड़ें ठीक हैं देखिए कभी। हेलो,
0: संतोष बहन है, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं जड़ कभी उखाड़ के आपने देखी है?
1: ना जी जड़ तो कौन देखी, बहुत टेढ़ा बढ़ाई हो रहे हैं। आप उसकी जड़ें चेक करना, जड़े में अगर वो जो नींबू जाते या सूत्रकर्मी है वो अलग होता है, उसमें जड़ों में क्या होता है जो स्वस्थ जड़ें होंगी वो भूरे रंग की होंगी, पतली होंगी आपकी, अगर थोड़ी सी बैंगनी रंग की जड़ें हैं और उसकी छाल ऊपर से उतर जाती है तो निमेटोड की समस्या हो सकती है। तो उसके लिए आपको दवाई या नीम की खड़ी हमारी सिफारिश है विश्वविद्यालय की,
0: तो उसमें क्या डालना जी फिर?
1: 117 ग्राम कार्बोफ्यूरान प्रति पौधा, उसमें फूल आने से पहले आपने नीचे डालनी पड़ेगी जड़ों में। अगर
0: उसकी
1: निमट
0: ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक बिल्कुल पत्ता में आ रहा है अपने, तो उसकी कटिंग करा के? अच्छा,
1: हाँ कटिंग तो कर दो थोड़ी, उसकी कटिंग तो कर दो, कटिंग करोगे तभी वो फल पे आएगा आपका पौधा, अभी तो वो सारा वेजिटेटिव फेज में ही चल रहा है। कटिंग तो कर दो, करनी चाहिए थी पहले भी कटिंग उसकी थोड़ी आपने,
0: कितने साल में फला है जी माल्टा का?
1: आ जाएगा 5 साल में, आ जाएगा 4-5 साल में आ जाता है।
0: 5 साल में आएगा?
1: हाँ
0: ठीक
1: जी
0: है डॉक्टर साहब, नमस्कार। हाँ,
1: ठीक है
0: नमस्कार संतोष बहन, फोन करने के लिए धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, ये निमाटोड्स की जो बात करी है, सबसे मुख्य समस्या ये है कि भाई इसकी जो प्रसार है या जो इसके आप जो संक्रमण है, इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय कर सकते हैं किसान भाई, ताकि ये समस्या किसान भाई की फसल में या उसके खेत में ना आवे?
1: हाँ, इसके लिए देखो मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूंगा, जहाँ भी रेतीली जमीनें हैं और
0: डॉक्टर
1: इस
0: साहब फोन और ले ले वहां डॉक्टर। हेलो हेलो, संपर्क नहीं
1: जहाँ
0: हो पा रहा डॉक्टर।
1: सूत्रकर्मी की जमीनें रेतीली होने के कारण इस तरह की अगर समस्या है किसी किसान भाई की, तो उनको जो 3-4 जो हमारी मुख्य बातें हैं,
0: जी
1: एक तो जैसे हमारे गर्मियों में मई जून के महीने में खेत खाली रहते हैं ना,
0: जी
1: उस समय किसान भाइयों को गहरी जुताई करनी चाहिए खेत की।
0: जी
1: गहरी जुताई का मतलब यहाँ

0: पे कहने से ये है, एमबी फ्लोर से
1: जी
0: नीचे 15 सेंटीमीटर मिट्टी ऊपर आए, ऊपर वाली नीचे जाए, ताकि जो इसके,
1: मिट्टी पलटने वाले हल
0: हाँ,
1: से
0: मिल्टी पलटने वाले हल से करें, बिल्कुल सही।
1: जी
0: उससे क्या होगा, इसके जो अंडे लार्वे हैं, जो
1: जी
0: ऊपर हमारा टेम्परेचर मई जून में 45-46 के आसपास रहता है, तो
1: जी
0: वो मर जाएंगे, आपकी इसकी संख्या जो है
1: जी
0: कम हो जाएगी। और गहरी जुताई का कहने का मतलब ये, गर्मियों में एक बार नॉर्थ साउथ, एक बार ईस्ट वेस्ट, दोनों
1: जी
0: डायरेक्शन में कर दें, तो आपका काफ़ी, न केवल नेमाटोड्स के लिए, दूसरे कीड़े बीमारी भी जो है
1: जी
0: कम होगी संख्या। दूसरा ये था
1: जी
0: फसल चक्र बदलाव,
1: जी
0: क्योंकि ये सूत्रकृमि भी जैसे कीड़े होते हैं वो फसल वाइज होते हैं, इसी तरह ये भी फसल वाइज होते हैं।
1: जी
0: कुछ एक नेमाटोड ऐसे भी होते हैं जो एक से ज़्यादा फसलों पे जाते हैं,
1: जी
0: तो फसल चक्र हमें बदल बदल कर लेना चाहिए। जैसे हमारे गेहूं में जो सूत्रकृमि लगता है,
1: जी
0: या धान में जो सूत्रकृमि लगता है, तो गेहूं वाला जो सूत्रकृमि है वो गेहूं, धान और जौ में लगता है,
1: जी डॉक्टर साहब
0: तो उस रबी सीजन में वो तीन फसलें छोड़ के रबी की कोई भी दूसरी फसल, आप चना ले सकते हैं,
1: जी
0: आप सरसों ले सकते हैं, आप
1: जी
0: दूसरी भी कोई फसल जो है बिजाई कर सकते हैं, तो आपको कोई दवा नहीं डालनी, फसल चक्कर से ही जो इसका आपका निदान हो जाएगा।
1: जी
0: तीसरा जो ये था हमारा सोलराइजेशन, सौर तापीकरण जिसे हम बोलते हैं, जो हमारा नर्सरी वाला एरिया होता है ना, चाहे आप धान की नर्सरी तैयार करते हैं
1: जी
0: या आप सब्जियों की नर्सरी तैयार करते हैं,
1: जी
0: उस एरिया को मई जून में अच्छी तरह गहरी जुताई करके,
1: जी
0: और फिर वो जो क्यारियां बना के उसको सफेद पॉलीथीन शीट 25 माइक्रोन की मोटाई की जो है उससे ढक के चारों तरफ एयर टाइट कर दे, और 25 दिन तक उसको बंद रखें।
1: अच्छा डॉक्टर
0: उससे
1: साहब
0: क्या होगा, जो अंदर का तापमान हमारा मई के महीने में, जून के महीने में 4500 वैसे ही है,
1: जी
0: और जो ऊपर वो हमने पॉलीथीन ढका, उससे 8 से 10 डिग्री तापमान और बढ़ जाएगा,
1: जी
0: तो 55-60 डिग्री तापमान होने से जो उसमें इसके जो अंडे लार्वे हैं
1: जी
0: वो संख्या लगभग ना के बराबर ही हो जाएगी। जब
1: जी
0: वो ढके उससे पहले पानी जरूर दें, क्योंकि जैसे हम पानी देंगे इसको नमी मिलेगी,
1: जी
0: तो जो एग्स हैं, जो अंडे, उससे एग्स से बाहर आएंगे जो लार्वे हैं, फिर वो
1: जी
0: वहाँ भूखे ही मर जाएंगे, कोई कोई फसल है नहीं,
1: जी
0: खाली जमीन है, और ऊपर से टेम्परेचर हमारा 55 के आसपास है, तो ये सौर तापीकरण करें।
1: जी
0: उसके बाद हमारा आता है कुछ इसमें रेजिस्टेंट वैरायटी हमारे विश्वविद्यालय ने निकाली है,
1: जी
0: जैसे सब्जियों की बात करें तो इसहार ललित एक टोमेटो की वैरायटी है,
1: जी
0: पूसा ज्वाला एक हमारी मिर्च की वैरायटी है,
1: जी
0: ऐसे गेहूं की एक राजस्थान से वैरायटी निकली, राज MR1।
1: जी
0: तो ये जो प्रतिरोधक किस्में हैं, ये निमेटोड की समस्या जहाँ है वहाँ ये पैदावार दे देती हैं, क्योंकि इनकी जड़ों में घुस नहीं पाते, तो वो भी लगा सकते हैं।
1: जी
0: ऐसे नरमा की भी दो, हमारी बीकानेरी नरमा है, एक K7 K8 के नाम से दो किस्में हैं, वो भी राजस्थान से निकली हैं, तो
1: जी
0: वो प्रतिरोधक किस्में जो है किसान भाई इसमें लगा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब चलते चलते हमारे भाइयों ने के खास संदेश देना चाहोगे?
0: ये मैं किसान भाइयों से यही निवेदन करूंगा, जहां भी जैसे आज की जो हमने चर्चा की है इसके बारे में, कहीं भी किसी कोई समस्या आए, तो वो अपना पौधा, उसके
1: जी
0: साथ उसकी जड़ें और मिट्टी लेके हमारे विभाग, सूत्रकृमि विज्ञान विभाग में आए, उनका स्वागत है, और
1: जी
0: हमारे से जांच करवा ले, उसके बाद ही कोई दवाई का प्रयोग करे, ताकि उसको एक तो दवाई का नुकसान ना हो, और
1: जी
0: दूसरा उसको ये पता लगे निमाटोड है या नहीं है, है तो कितना है
1: जी
0: और कितने प्रकार का है। भाई एक जमीन
1: जी
0: में 2 से 3 तरह के भी हो सकते हैं, एक तरह का भी हो सकता है और ना भी हो सकता है।
1: जी तो डॉक्टर साहब आपने हमारे बहन भाइयों तक इतनी ज्ञान लाभ की जानकारी दी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी।
1: और इसी के साथ है किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त होया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। थोड़े से अंतराल के बाद भाइयों ते मिलेंगे कार्यक्रम मारे गाँव गांव में। में

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम, जिसका विषय था खरीफ फसलों में सूत्रकृमि प्रबंधन। और किसान भाइयों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे डॉक्टर सरदूल सिंह मान। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम महरे गांव।

0: कार्यक्रम मारे काम में एक बार फिर सारे बन भैया का स्वागत कर है सुनीता बन
1: और नूर भाई।
0: और नूर भाई।
1: सुनीता बहन, आज तो राम ने चौखी बारिश की झड़ी लाई है।
0: हाँ, आज मतलब ठीक मौसम हो रहा है भाई।
1: हाँ, मौसम का भी बदलाव कराया है और किसान भाई मुंह बा के बाट देखण लाग रहे थे कि भाई फसल में देखो जीरी की धान की बिजाई करनी है, किसान भाइयों ने रोपाई करनी है, तो इसके लिए आज मौसम ठीक होया है और किसान भाइयों ने आस बंधी है कि भाई फसल भी ठीक ठाक होगी।
0: और इसके अलावा नूर भाई, जो अपने डांगर पशु है, पशु पक्षी है अपने, फिर अपा घर में भी
1: जी
0: मतलब सारे परेशान हो रहे थे इतनी गर्मी ने लेके,
1: हाँ
0: तो
1: बिल्कुल
0: थोड़ी सी राहत आज की बारिश तो अपने बण भाइयों ने मिली है।
1: बिल्कुल। और हमारे गांव कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे अनीमिया मुक्त भारत।
0: हाँ भाई।
1: एक भी हमारी जितनी भी ग्रामीण महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं,
0: हाँ
1: बच्चियां हैं, उनमें जो रक्त की या जो खून की कमी की जिस समस्या के कारण क्या क्या दिक्कतें आवे हैं और किस वजह से ये जो अनीमिया जो रोग है किस वजह से हो जावे है,
0: बिल्कुल भाई।
1: इस विषय पर विस्तार से हम बात करेंगे।
0: तो और भाई देखो,
1: जी
0: बात तो आपका विषय तो आज का बहुत बढ़िया है
1: जी
0: कि एनीमिया है जो खून की कमी, जिसने आप आम भाषा में कह दे वहां। और देख नूर भाई, हूँ अपने हरियाणा में होके ये बात जचदी भी को नहीं कि भाई देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना,
1: जी
0: उस जगह पे भी अगर अपने में खून की कमी हुआ है तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपनी लापरवाही भी नजर आवे है कि भाई आप फिर खान पीन में जो ठीक से कम्बिनेशन बनाना है कि के चीज अपन खानी चाहिए, किन किन चीजा का अपन खान ध्यान रखना चाहिए, के अपन खाने के बाद परहेज करने चाहिए,
1: जी
0: ये सारी चीजें भी इसके साथ में जुड़ी हुई है।
1: बिल्कुल। देखो आजकल अगर महिलाओं की बात करें तो 50% से भी ज्यादा महिलाओं में
0: बिल्कुल भाई
1: अनीमिया रोग आज हरियाणा में पाया जा रहा है।
0: 50 से 99 भाई, अगर 12 ग्राम से ऊपर देखा तो 70% के आसपास पहुंच जावा है ये आंकड़ा
1: लेकिन
0: अपना।
1: 10 की अगर मान के चाला,
0: हाँ,
1: 10 से भी ऊपर
0: बिल्कुल भाई।
1: तो 50 से के नेड़े हो जावे है।
0: हाँ
1: तो 70% की जो संख्या है बहुत काफी एक बड़ी एक प्रतिशत है कि भाई काफी जनसंख्या में इसका प्रकोप है। और इसकी एक विशेष कारण यही है कि भाई जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन या खून बनाने वाले जो तत्व है वो हमारे अंदर नहीं आ रहे या खान पान में शामिल नहीं है।
0: हाँ। और नूर भाई, भारत में 1970 में इस अभियान की शुरुआत की गई थी
1: जी
0: और वर्ष 2018 में ये कार्यक्रम एनीमिया मुक्त अभियान के रूप में शुरुआत होगी थी इसकी।
1: जी
0: तो ये नहीं है कि भाई ये आज की बात है, 1970 से इस अभियान की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब ये काफी लंबे समय से चल रहा है।
1: जी
0: और इसके अगर आप छोटे छोटे मतलब लक्षण बेरा पाड़ा कि भाई क्या लक्षण हो सके है, तो उसमें आप मोटे तौर पर देखेंगे कि नूर भाई, थकावट होना
1: जी,
0: सुस्ती होना, दिल की धड़कन तेज होना
1: जी,
0: और तो चिड़चिड़ापन भी हो जावे नूर भाई इससे, कि आपका व्यवहार में बार बार आपने चिड़चिड़ाट सी होना, गुस्सा आना
1: जी,
0: और जल्दी थकावट, पैरों में दर्द, पैरों में सूजन और चक्कर आना भाई।
1: कहने का मतलब जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में देखा या और भी जिस तरह के केस हैं,
0: हाँ,
1: तो उसमें हम देखेंगे कि भाई वो सारे दिन ना तो काम में दिल लग गए,
0: हाँ मतलब थोड़ा काम करे थकान होगी,
1: हाँ बिल्कुल,
0: सांस का टाइम नु लगन लग जाएगा कि जनो तेरे तो जनो ताप चढ़ेगा आज,
1: हाँ बिल्कुल,
0: है ना।
1: और उसका मुख्य कारण यही है कि भाई हमारे अंदर खून की कमी है।
0: हाँ।
1: साथ में दूसरे तत्वों की भी कमी हो सकता है, जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन डी होगी, तो हम साथ ही हमारी भाई बहन के कह रहे हैं कि भी इन चीजों के लिए दवा

0: गए
1: हाँ मतलब थोड़ा काम करे थकान हो गई।
0: हाँ बिल्कुल
1: सांस का टाइम नु लागन लग जाएगा कि जनो तेरे तो जनो ताप चढ़ेगा आज,
0: हाँ बिल्कुल
1: है ना।
0: और उसका मुख्य कारण यही है कि भाई हमारे अंदर खून की कमी है,
1: हाँ
0: साथ में दूसरे तत्वों की भी कमी हो सके है, जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन डी होगी। तो हम साथ ही हमारी भाई बहन कह रहे हैं कि भी इन चीजों के लिए दवा

छोक काट्छु अरे छोक काट्छु छोरी काल की र छोक काट्छु छोरी काल की यत मारी बक्रमते सर के ऊपर चला टेक दी अब बारी बक्र

0: अभी अपना एनीमिया हो रहा है,
1: जी
0: क्या क्या उसके लक्षण है, के उसके कारण है।
1: जी
0: अगर कारण की अपन और भाई बात करें इसमें, तो एक तो ये है कि भाई पेट में कीड़े होना
1: जी
0: और दूसरा पोषण की कमी होना,
1: जी
0: जिससे अपन मोटा मोटा कारणा का बेरा पट जाओगा।
1: जी
0: और इसके नुकसान बहुत है नूर भाई। अगर
1: जी
0: बच्चा, अच्छा एक बात और अपन बीच में करेंगे कि अभी तक अपन महिलाओं की बात करने लग रहे थे भाई, और सरकार का भी और सबका ये मानना था कि भाई खून की जो कमी होना है, एनीमिया जो है वो सिर्फ महिलाओं में होता है,
1: जी
0: मगर पिछले कुछ टाइम से देखने में आ रहा है कि महिलाओं में तो है ही है,
1: जी
0: इसके साथ में हमारे जो बच्चे हैं,
1: जी
0: और उसमें आप यहां से लेके शुरू कर लो, चाहे 6 महीना तक लेके, और महिलाएं तो किसी भी एज ग्रुप की है,
1: जी
0: और अगर लड़कियां में बात करा तो 19 साल तक के बच्चा में अगर ये देखने में आया है तो भी एनीमिया बड़े लेवल पर पाया गया है। मतलब बच्चे भी बहुत बड़ी संख्या में कुपोषित है भाई।
1: बिल्कुल। तो इसमें जो मुख्य जो कारण है कि भाई जो अनीमिया की हम बार बार बात कर रहे हैं, अनीमिया एक ऐसा पोषण से संबंधित रोग है जिसमें कि हमारी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं जिसको हम RBC कहते हैं, उसकी कमी हमारे शरीर में हो जावे है,
0: हाँ भाई,
1: जिसकी वजह से हमारे शरीर में पूरी ऑक्सीजन और जो पोषण है, जो हमारे पोषक तत्व हैं, वो पूरे शरीर में नहीं पहुंचन पाते। जिस तरह सुनीता बहन आपने फसल में जैसे आप पोषक तत्व देवा हाँ,
0: हाँ भाई, खाद डाल दिया
1: खाद
0: अपन।
1: डाल दिया या जो भी अपन यूरिया डालना हाँ या कोई भी, तो वो अगर फसल में नहीं मिलेगा तो फसल का उत्पादन कम होगा, फसल भी की जो वृद्धि है वो कम हो जाओगी।
0: बिल्कुल नूर भाई, इसमें अगर आप महिलाओं में देखा कि अगर अपनी कोई जो गर्भवती महिला है अगर वो एनीमिक है,
1: जी
0: तो उसमें बड़ी संख्या में कारण माना जावे है कि उसकी गर्भावस्था में माँ की, या मतलब जो गर्भवती महिला है उसकी मृत्यु होना,
1: जी
0: उसमें वो भी एक कारण है। फिर दूसरा उसका जो बच्चा भी पैदा होगा, कम वजन के बच्चे पैदा होना, समय से पहले पैदा होना,
1: जी
0: या फिर बच्चे की गर्भ में मृत्यु हो जाना भाई।
1: जी
0: और अगर बच्चा पैदा हो गया तो उसका शरीर वह और बुद्धि का जो विकास है
1: जी
0: उस वो कम होना, तो मतलब अगर कोई गर्भवती महिला है उस टाइम पर भी वो एनीमिक है,
1: जी
0: तो उसके बहुत सारे आगे चल के ना अपना नुकसान देखने में मिले हैं भाई।
1: तो इसका कहने का मतलब ये है कि भाई जितने भी जो अनीमिया के कारण दिखते जटिलताएं आवे हैं, उसकी वजह से गर्भवती महिलाओं को हाई रिस्क जोन में रखा जावे है
0: हाँ बिल्कुल
1: कि
0: भाई,
1: भाई इसकी जो भी प्रसव से जो एंटीनेटल केयर से लेके प्रसव होने तक की जो क्रियाएं हैं वो सारी की सारी हाई रिस्क जोन में आ जावे हैं।
0: बिल्कुल
1: और
0: नूर भाई,
1: बच
0: इसमें एक चीज और बताऊंगी कि भाई आप गर्भवती महिला होने के बाद उसको लेवांगे, ऐसा नहीं है कि भाई वो हाई रिस्क जोन में ले जाओगे। सरकार ने एक अच्छी पहल कर रखी है
1: जी
0: कि भाई 6 महीने तक तो बच्चा देखो माँ का दूध पीवे है, तब तक बच्चा बिल्कुल स्वस्थ मानते हैं आप, क्योंकि माँ के दूध में सारे पोषक तत्व तो उसके पूरे हो जावे हैं। 6 महीने के बाद से ही 5 साल तक बच्चे को जो अपनी आयरन की दवाई हुआ है, आयरन फोलिक एसिड, आयरन देवा हाँ जो,
1: जी
0: तो वो शुरू हो जावे हैं। फिर 5 साल तक, 9 साल तक जब बच्चा स्कूल में जावे है तो
1: जी
0: उसने पिंक गोली देनी शुरू कर दे हैं।
1: हाँ
0: फिर जब वो 10 से 19 साल तक का हो जावे है तो उसको ब्लू गोली देनी शुरू कर दे हफ्ते में एक बार।
1: तो ये तो सरकार के द्वारा भी अभियान विशेष तौर पे चलाए जा रहे हैं, अकबी स्कूल से लेके उनको 19 वर्ष तक की आयु जब तक नहीं हो जाती तो अलग अलग तरीके से या अलग अलग रंग की गोलियां उनको खिलाई जाती हैं
0: हाँ भाई,
1: और वीकली ये गोलियां खिलाई जावे हैं।
0: हाँ वीकली
1: हाँ
0: स्कूल में जाने जब शुरू हो जाए वह अपना बालक, 5 से 9 साल का है, तो उसको पिंक गोली देंगे सप्ताह में एक बार।
1: जी
0: फिर 10 से 19 साल तक का अपना बच्चा है जिसमें लड़के लड़कियां दोनों है, तो उसको एक ब्लू टेबलेट देंगे एक बार,
1: ओके
0: वो स्कूल में ही देंगे,
1: जी
0: मास्टर की निगरानी में देंगे। और 20 से 49 साल तक की
1: जी
0: जो महिलाएं हैं उनको फिर आयरन टेबलेट, अगर वो एनीमिक है तो।
1: तो ये जितने भी जो गोलियां हैं ये सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बिल्कुल मुफ्त दी जावे हैं, आयरन है, कैल्शियम है, तो काफी हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं, गर्भवती हैं, बालिकाएं हैं, तो मुख्य तौर से इनमें आयरन की, फोलिक एसिड की कमी पाई जावे है या कैल्शियम की कमी है, तो उसमें आपने दवाई या उनकी अन्य कोई चीजों की जरूरत

0: नूर भाई ये तो सुनी बन भैया ने रागनी रणबीर सिंह बडवासनी और साथिया की आवाज में, और आप बात करने लग रहे थे भाई एनीमिया पे
1: जी,
0: कि एनीमिया में क्यूकर बेरा पटे

0: नहीं पड़ती।
1: बिल्कुल भाई, इसके साथ में देखो गोली भी सरकार देवे है और साथ में सही खान पान पर भी ध्यान देवे है कि भाई आप अपना जो पोषण है, आप अपना खाना है उसमें भी सुधार करें,
0: जी
1: ताकि कम से कम ये जो आयरन वाली कमी है अपने एनीमिया है इससे तो बचा जा सके है।
0: और विश्व स्वास्थ्य संगठन की भी एक रिपोर्ट है, सिफारिश है कि जो 80% के करीब जो बीमारियों का कारण है वो हमारा खान पान है, आहार से जुड़ी हुई समस्याएं हैं।
1: बिल्कुल भाई,
0: तो इस बात का विशेष ध्यान हमारे जो जागरूक श्रोता हैं, भाई बहन हैं, वो ध्यान रखें कि भी बीमारी कोई अपने आप नहीं आती, उसका एक मुख्य कारण हुआ है
1: बिल्कुल भाई।
0: खान पान।
1: और अनूर भाई, अगर इसमें अपन ने बात करा कि भाई कि मैंने कई बार अपन ने मान लिया कि बालक तो न्यू हो जाया करे है,
0: जी
1: चाल दायरो है, इसका जो अपनी रिपोर्ट आई है उसमें ये भी आया है कि जो बच्चे हमारे एनीमिक होते हैं
0: जी
1: जिसमें खून की कमी पाई जावे है, उसका एक तो ये है कि भाई पढ़ाई में उसका ध्यान कम लगेगा,
0: जी
1: दूसरा वो कंसंट्रेशन जो चाहिए उसको वो नहीं कर पा रहा है,
0: जी
1: तीसरा वो हाइपर एक्टिव होते हैं, मतलब वो एक जगह टिक के बैठे हैं कौन गे वो बालक है।
0: ज्यादा मतलब उनको क्रियाशील या सक्रिय कह सकते हैं
1: हाँ, अपन
0: कि
1: जो आजकल नहीं कहते हैं भले एक एक बालक से नचाए रखे सारे दिन,
0: हाँ
1: इतनी अलबाद करे हैं बालक है।
0: बिल्कुल, मतलब उनकी एक चीज में उनका मन नहीं लगेगा, मतलब उनका दिमाग है अलग-अलग चीजों में भटकता रहेगा।
1: बिल्कुल। तो नूर भाई, इसलिए आप एक बात कहो हाँ कि भाई बच्चों की भी
0: जी
1: समय समय पे खून की जांच करवाते रहना चाहिए अपन, ये मानने की जरूरत को नहीं बोला ना देखियो सुतरा है, लंबा भी होने लग रहा है, इसकी हाइट भी बढ़ने लग रही है, इसका वजन भी बढ़ने लग रहा है, उसके बाद भी कई बार बच्चे एनिमिक पाए जावे भाई।
0: तो बच्चों का भी और शिशुओं का भी शुरू से ही एक BMI जो मानक है वो करवाते रहना चाहिए,
1: बिल्कुल।
0: बॉडी मास इंडेक्स जिसको बोलते हैं BMI, वो हमारी आंगनवाड़ी में भी किया जावे है और स्वास्थ्य केंद्रों में भी करवा सके हैं।
1: तो अगर नूर भाई बापा बात करा कि इसमें के उपाय कर सका हापा
0: जी
1: कि भाई एनीमिया खान पान से कम करा जाओ, भाई देखो गोली तो लेनी है जो अपने एनीमिक है, मगर इसके साथ में और के उपाय करा तो।
0: घरेलू उपाय क्या क्या उसके हैं, क्या क्या खाद्य पदार्थ है घर पे हम खास कहाँ, ताकि भाई अनीमिया से हमारे को मुक्ति मिल सके।
1: बिल्कुल भाई, तो
0: इसमें सुनीता
1: इसमें
0: बहन, सबसे पहले साबुत अनाज की बातें आवे है सामने, क्योंकि जितने भी हमारे अनाज हैं, चाहे वो मोटे अनाज जिसकी बात करा, तो उसमें साबुत अनाज का बड़ा महत्व है, जो छिलका जो हुआ है अनाज का,
1: बच्चों जो छिलका के साथ खाया जावे।
0: हाँ उसका एक विशेष महत्व है। अभी आप है ना, कई बार आपे जो छोलर है या जो छानस जिसने बोला हाँ, वो ज्यादा उतार दे वहां, हाँ अंदर उसमें सिर्फ क्या है कि भी अपना कार्बोहाइड्रेट्स बच जावा है, उसके अंदर जो फाइबर की मात्रा है या आयरन की मात्रा है वो निकाल दे वहां।
1: बिल्कुल भाई। और नूर भाई देखो, एक टाइम था अपना जब पहला ब्याह शादी हम देखा करते
0: जी
1: कि भाई जिसका ठीक ठीक ब्याह तो आया करता वो गेहूं उबाल के और मिट्टी गेहूं दिया कर दे,
0: जी
1: बाहना पे बांडा कर दे, सांझी पे भी बांडा कर दे, और फिर जब
0: हाँ
1: थोड़ा सा और प्रचलन बढ़ा तो बच्चने की बाकड़ी बांडन लग गए।
0: बिल्कुल, बहुत शाम में भिगोया करते और जैसे अगले दिन बनना होता तो वो बिल्कुल नरम हो जाया करती, थोड़ा सा
1: और
0: नमक
1: भाई
0: डाल
1: वो
0: के,
1: एक एक
0: हाँ
1: मुट्ठी खा लिया कर दे, सारे खड़े खड़े खा लिया कर दे अपना चाहिए है।
0: बिल्कुल, और इनका टेस्ट इतना बढ़िया होया करता।

0: और मिठी गेहूं दिया कर दे,
1: जी
0: बालना पे बांडा कर दे, सांझी पे भी बांडा कर दे, और फिर
1: हाँ
0: जब थोड़ा सा और प्रचलन बढ़ा तो बच्चों की बाकड़ी बांटने लग गए।
1: बिल्कुल, बहुत तेज शाम में भिगोया करते, और जैसे अगले दिन बनना होंदा तो वो बिल्कुल नरम हो जाया करती, थोड़ा सा नमक
0: और भाई
1: डाल
0: वो एक
1: के।
0: एक मुट्ठी खा लिया कर दे, सारे खड़े खड़े खा लिया कर दे अपना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल, और इनका टेस्ट इतना बढ़िया होया करता।

0: जुकर अंकुरित दाल है
1: जी
0: ये भी अपा सारी दाले मिला के जो भी घर में खाना पसंद करे कि बस सांझ ने भिगो के रख दे, सवेरे तक वो नरम हो जावे, थोड़ी अंकुरित हो जावे, तो वो खावे तो उसका भी बड़ा फायदा रहेगा।
1: बिल्कुल, अंकुरित होने से जो अनाज है उसके अंदर जो विटामिन्स हैं और मिनरल्स की जो मात्रा है वो बढ़ जावे है सुनीता बहन, क्योंकि उसके अंदर जो पानी सोखने के बाद उसकी जो प्रकृति है उस अनाज की या उस जो दाल है, जैसे चाहे वो चना है, मूंग है,
0: मोठ है, उड़द
1: मोठ है,
0: है,
1: उड़द है
0: बिल्कुल भाई।
1: या मक्का है, तो उसकी जो पोषकता है वो कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई उसको अंकुरित करके खाना चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल भाई।
1: ठीक है।
0: हरी पत्तेदार सब्जियां हैं भाई, गुड़ है, चना है, मूंगफली है,
1: जी
0: जो भी अपने मौसमी फल है
1: जी
0: उनका सेवन भी अगर समय समय पर कराया जाओ तो इसका भी काफी फायदा रहेगा भाई।
1: बिल्कुल, इसमें आपने बात करी जैसे गुड़ की बात करी, तो देसी गुड़ अगर खाया जावे तो हम मान लो कोई भी हमारे घर में पकवान बना है तो वो लोहे की कढ़ाई में अगर हम उसको बनाते हैं तो
0: खाना जब
1: उस
0: भी बनाओ तो
1: हाँ
0: लो की कढ़ाई में।
1: तो उससे भी हमारे आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, लो तत्व जिसको बोल रहा हाँ, तो खून की कमी अगर किसी भाई में है तो जो लोहे की कढ़ाई में जो भी हमारे खान पान है वो बनावे।
0: और इसके अलावा नूर भाई ये भी है कि कई बार आप जो कर हरी सब्जियां बनावा, हाँ पालक है, सरसों का साग है, चने का है, तो उसमें भी कई बार आप उसने उबाल के फिर निचोड़ के फिर तड़का लगा के उसने खावा, हाँ उसकी बजाय उसने उबाल के निचोड़न की जरूरत को नहीं।
1: वो जो निचोड़ा हाँ पे जितने भी अपने विटामिन्स हैं या पोषक तत्व हैं वो हम उसको बाहर निकाल दे वहां,
0: बिल्कुल।
1: उसको हम आटे में शामिल कर सका हाँ पे, आटा गूंथने में, या उसको पानी अगर उसकी मात्रा कम डाल सका हाँ, कई बार आप पानी उस सब्जी में डालते हैं तो पानी इतना डालना कि भाई वो उसको अपने आप उसको प्रयोग कर सका।
0: बिल्कुल। तो नूर भाई देखो बण भाई ने कहेंगे बहुत ज्ञान दे दिया आज, तो
1: जी
0: रोटी पानी खान लग रहे हैं,
1: तो
0: तो बण भैया
1: रोटियां का
0: ने
1: टाइम हो रहा है और भूख हमने भी लाग रही है भाई, इसी के साथ हमारे गांव कार्यक्रम समाप्त करने की नूर भाई ने
0: और सुनीता बण ने दे इजाजत, कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भैया ने
1: राम
0: राम राम।
1: राम।

अभी आपने सुना कार्यक्रम महरे गांव एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने।

कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने सुन रहे सभी साथियों को अनिल भल्ला का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, समय बदलता रहता है, साधन बदलते रहते हैं, लेकिन भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका हमेशा दिल से ही निकलता है। आपको याद होगा कि कभी चिट्ठियां हुआ करती थी और आप सभी श्रोता चिट्ठियों के माध्यम से हम तक अपनी फरमाइश, अपने दिल के जज्बात पहुंचाया करते थे। सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखे संदेश और गीतों की फरमाइश में एक अलग ही

खुशबू आती थी। और हम तक आते आते दोस्तों काफी समय भी लग जाता था, लेकिन आज उन चिट्ठियों का स्थान ले लिया है आधुनिक तकनीकी ने और व्हाट्सएप जैसे माध्यमों ने। अब कुछ शब्दों का एक संदेश इमोजी से डिजाइन किया हुआ मिनटों सेकंडों में पहुंचकर रिश्तों में मिठास घोल देता है। साथियों, किसी ने कहा है कि शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका अर्थ बहुत ज्यादा गहरा होता है। और जब शब्दों के साथ मिल जाते हैं कुछ सुर, तो वे सीधे दिल में उतर जाते हैं और एक अलग ही प्रकार का सुखद अनुभव प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये गीत संगीत फिल्मी तराने हमारे दिलो दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ते हैं। ये हमारी भावनाओं, यादों, खुशियों और जीवन के अनगिनत रंगों का समावेश होते हैं। कभी ये हमें बचपन की गलियों में ले जाते हैं, तो कभी किसी अपने की याद दिलाते हैं, तो कभी जीवन को नए उत्साह और ऊर्जा से भर देते हैं। इन्हीं भावनाओं और उत्साह को समर्पित है हमारा और आपका ये कार्यक्रम, जिसका नाम है व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। साथियों, आपको पता है ये कार्यक्रम आधारित होता है आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पर, और व्हाट्सएप करने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9792523279729253272। तो आइए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म बरसात के इस गीत के साथ। और इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, संगीतकार हैं नदीम श्रवण और गीतकार हैं समीर। पसंद किया है आप सभी श्रोताओं ने जिन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से इस गाने की फरमाइश हम तक भेजी है। आप हैं सबसे पहले मुंडीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, और ये हमारे श्रोता हैं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, यश परायण, शिवम प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा। और दादरी गेट भिवानी से आप हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और सभी इनके परिवार के सदस्यगण हमें संदेश भेज रहे हैं। और ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये संदेश इन्होंने भेजा है। और ये हमारे श्रोता रहेंगे जिन्होंने हमें इस गाने की फरमाइश भेजी है, मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीव्यम और सभी इनके परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। हमारे नियमित श्रोता हैं लोको कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, बरखा योगेंद्र कुमार चिंडालिया, नरेंद्र कुमार और सभी इनके परिवार के सदस्य। चरखी दादरी हरियाणा से नम्रता खुशबू खुशदीप का मैसेज हमें मिला है, और इसी के साथ ही हमें ये मैसेज मिला है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी का हमें संदेश मिला है। बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। ये मैसेज हमारे पास आया है छटिया पोखर डुमराव से फातिमा वली बेलदार, डब्लू वली, असमा वली, सोनम वली बेलदार, बिहार भवन दिल्ली से अकरम कुटरिया और उल्हा कुटरिया का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। नेहरू चौक पैठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती प्रसाद, सोनल बेबी सिया जाधव, जलाना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम, सुभाष और चंदन जाधव का मैसेज हमें मिला है। नूर महल महसोल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहां, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया, शाहिन नाज और नाजिया नूरी नाज का मैसेज हमें मिला है। और कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का मैसेज मिला है। दुर्गा कॉलोनी जिला हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू का मैसेज शामिल करते हैं कार्यक्रम में। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हंसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी और इनके पूरे परिवार के सदस्यगण।
और

बिहारी कॉलोनी महासमुंद से मोहम्मद याकूब आसमा कुरैशी, यूसुफ आसमा कुरैशी, जेल रोड मथुरा से सरफुद्दीन बेलदार, बेलदार कल्लू मल्लू और कालिया बेलदार का मैसेज हमें मिला है। मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से मंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक का मैसेज हमें मिला है। इसी के साथ ही हमें ये मैसेज प्राप्त हुआ है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबे पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश का मैसेज हमें मिला है। और हमारे अगले श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। मैसेज भेजने वाले हमारे साथी हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और परांजल राय का मैसेज हमें मिला है। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का मैसेज हमें मिला है। सुनते हैं इन सभी साथियों की ये पसंद।

साथियों, बरसात का मौसम अपने साथ एक अलग ही सुकून और ताजगी लेकर आता है। बीती रात भी रिमझिम बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया और ठीक उसी तरह जैसे ही कार्यक्रम शुरू होता है और आपके व्हाट्सएप मैसेजेस की जो बारिश होती है वो हमारे कार्यक्रम को भी खुशनुमा बना देती है। हमें मैसेज किया है गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सदाम और आदिब ने। और इसी के साथ ही हमें अगला मैसेज आया है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोर्ड के, श्रीमती नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के उत्तम जमधाड़े का मैसेज हमें मिला है। ये हमारे श्रोता रहेंगे गांव हिप्पर सोगा तहसील लोसा जिला लातूर से, उस्मान शेख फौजी, सायरा बानु शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख का मैसेज हमें मिला है। वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंघनकर, दिशांत कुमार और अर्पिता जी हमें मैसेज कर रहे हैं। हमारे श्रोता हैं गांव फरांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। और इसी के साथ ही हमें मैसेज मिला है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोदा छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामूरिया, राधिका और प्रभा देवी तामूरिया और मास्टर अल कबीर का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो हमें मैसेज कर रहे हैं। ये हमारे श्रोता हैं गांव लोहगढ़ ठकुरांवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह का मैसेज हमें मिला है। हमें अगले मैसेज भेजे हैं हमारे श्रोताओं ने मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और आराध्या सुरलकर का मैसेज हमें मिला है। गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल का मैसेज हमें मिला है। बबूरी बाजार चंदोली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराह जायसवाल और देवंती जायसवाल का मैसेज मिला है। और इनके साथ श्रोता हैं चकिया बाजार चंदोली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल का मैसेज हमें मिला है। हमारे श्रोता रहेंगे गांव जाखुद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजु श्रीवास्तव, दिवेंद्र भूषण संस्कृति पुरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप कमल का मैसेज हमें मिला है। ये हमारे श्रोता हैं बावड़ी गेट भिवानी से रोशनलाल पचेरवाल, उमेश पचेरवाल, योगेश पचेरवाल, कुलदीप, प्रेम खटक, धर्मवीर खटक, युवान पचेरवाल और उपेंद्र पचेरवाल का मैसेज हमें मिला है। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। और गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम सतोड़, रितु सिंह, हिमानी, शुभम और यश कुमार का मैसेज हमें मिला है।

दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला और दीपक और स्वाति, घमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल का मैसेज हमें मिला है।

जीनू मन्नू शिव सेठी करणपुरी स्माइल टुटेजा का मैसेज हमें मिला है। विनयमोहन खारवन मीनाक्षी प्लोमा व डॉक्टर ईशानी सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से मैसेज हमें कर रहे हैं। साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता का मैसेज हमें मिला है और इसी के साथ ही हमें ये मैसेज मिला है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक और बलबीर सिंह का मैसेज हमें मिला है और इसी के साथ ही हमें ये मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा कपिल चिंपा ईशान चिंपा और पूजा परिहार। सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में लगान फिल्म का गीत और इनके साथ आवाजें रहेंगी सुखविंदर सिंह शंकर महादेवन और शान की भी आवाजें उदित नारायण और अलका याग्निक के साथ रहेंगी और इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने संगीतबद्ध किया है AR रहमान ने।

उमड़ घुमड़ कर आए हैं काले मेघ आज, लेकर आए हैं खुशियों की का साज। बरसे तो हरियाली गुनगुनाए और मन भी सावन के गीत सुनाए। तो श्रोताओं, आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाते हैं, रोजा फिल्म से। एसपी बाला सुब्रमण्यम और के एस चित्रा की आवाजें रहेंगी। गीतकार हैं पीके मिश्रा और संगीतकार हैं एआर रहमान। पसंद है आप सभी की। हमारे श्रोता हैं जिला झारखंड से जमशेदपुर, झारखंड से सुपाही साही गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, दीपाली कुमारी और देवेन जी का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। और धनौरी तेलीवाला से लिखने वाले हमारे श्रोता हैं मैसेज, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू का मैसेज हमें मिला है। शेख चंद मामू, शेख फुरकान, शेख अदनान, शेख गुफरान और जकिया बाजी, ये हमें भोईवाड़ा पेठन से ये हमें संदेश भेज रहे हैं। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। इसी के साथ ही हमें अगला मैसेज भेजने वाले हमारे श्रोता हैं दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा का मैसेज हमें मिला है। हमारे अगले श्रोता रहेंगे जिन्होंने मैसेज किया है, ये हमारे श्रोता हैं गांव कलमंडी खुर्द, जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पवार, भानु प्रताप सिंह पवार और इनके समस्त परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ नायमा, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ का मैसेज हमें

मिला है। और इसी के साथ ही हमें अगला मैसेज भेजने वाले हमारे साथी हैं। जय जिनेंद्र, श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से, रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश और प्रीतेश संघई का मैसेज हमें मिला है। और ये हमारे श्रोता हैं गांव पांडु पिंडारा जिला जींद से, बादल सिंह गिल, श्रीमती कमलेश, टीनू, नीरू, प्रीति, मोनू, डॉक्टर अंकित गिल, डॉक्टर वानिका और इनके समस्त परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। मलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, पीएस नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायडे और आशीष मुरहेकर का मैसेज हमें मिला है। ये हमारे श्रोता रहेंगे छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से, मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, अफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा का मैसेज हमें मिला है। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार का मैसेज मिला है। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक और आर्यन वर्मा का मैसेज हमें मिला है। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत का मैसेज मिला है। और हमारे श्रोता हैं एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम, गुमला झारखंड से, और हमें मैसेज भेजा है गांव चौधरीवास से राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, प्रयाग प्रियांशी, रेखा और चरणदास का मैसेज हमें मिला है। और बागपत उत्तर प्रदेश से ममता ढींगिया, कुणाल ढींगिया। इसी के साथ ही हमें हमारे श्रोता हैं चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। सुनते हैं सभी साथ।

गुमला झारखंड से, और हमें मैसेज भेजा है गांव चौधरीवास से राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, प्रयाग प्रियांशी, रेखा और चरणदास का मैसेज हमें मिला है। और बागपत उत्तर प्रदेश से ममता ढींगिया, कुणाल ढींगिया। इसी के साथ ही हमें हमारे श्रोता हैं चौटाला हरियाणा से, दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। सुनते हैं सभी साथ।